0: அப்படின்னு நம்ம மேலே பழிய போடுற வேலையை மட்டும்தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சரும் சரி அமைச்சர்களும் சரி தொடர்ந்து அதை செஞ்சிட்ருக்கிறாங்க. அதனால தான் இன்றைக்கி ஒவ்வொரு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாக பார்த்து பார்த்து, அதுவும் அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எல்லாம் விலைக்கு வாங்குகிற வேலையில் இன்றைக்கி இந்த அரசு இறங்கியிருக்கு. இப்படி விலைக்கு வாங்கின காரணத்தினால தான் உங்களுக்கு தெரியும், ரெண்டு சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல், மதுராந்தகம் தாராபுரத்தில் இடைத்தேர்தல் நடக்க இருக்கு. இந்த ரீல்ஸ் கும்பலுக்கு ஓட்டு போட்ட கொஞ்ச நஞ்ச மக்களும் ஏண்டா இவங்களுக்கு ஓட்டு போட்டோன்னு இப்போ கவலையில் இறங்கியிருக்கிறாங்க. இந்த ஆட்சியாளர்கள் அடிக்கின்ற இந்த கூத்தையெல்லாம் செய்கின்ற இந்த அட்டு ஒழுங்கு எல்லாம் மக்களுக்கு நாம் தொடர்ந்து அம்பலப்படுத்த வேண்டும். அதற்கு சரியான ஒரு தண்டனையை வருகின்ற இடைத்தேர்தல் மூலமாக நாம் இந்த ஆட்சியாளர்களுக்கு அதை நம்ம தெரியப்படுத்த வேண்டும். ஆளுங்கட்சி எதிர்கட்சி எந்த
1: All right, in other news, former Vice President Hamid Ansari's remarks have triggered a political storm, with the BJP, the Congress and Muslim clerics offering sharply different responses. Mr. Ansari was speaking at the A.G. Noorani Memorial Lecture, where he also referred to what he described as emerging trends around cultural nationalism. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has hit back strongly, questioning the remarks and stressing that responsibility attached to a constitutional office. He's highlighted that. The RLD, meanwhile, has rejected Mr. Ansari's assessment, saying the political context today is different from the period referenced. Meanwhile, the Congress says that Mr. Ansari was not making the assertion independently, but citing a historical observation attributed to Mr. Nehru. Imam Ilyasi has also criticized the remarks, arguing that such statements could further heighten tensions and disturb the social atmosphere. We've got crucial reactions lined up for you. Listen in.
2: Dekhiye, Jawaharlal Nehru Soviet Sangh ki jo socialist vyavastha thi usse bade prabhavit the 50s mein, aur us samay communism threat nahi tha, aur Hindustan mein koi right wing communism bhi koi threat nahi tha. Ye वर्तमान संदर्भ में उन्होंने बयान दिया है तो वी टोटली डिसएग्री विद हिज स्टेटमेंट.
3: देखिए, हामिद अंसारी साहब ने अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही है. हामिद अंसारी साहब ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोट किया है. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हिंदू राइट विंग जो हैं वो कम्युनिज्म से ज़्यादा देश के लिए ख़तरनाक हैं. हामिद अंसारी ने यह तो नहीं कहा कि देश के अंदर कौन राइट विंग है. जो लोग शोर मचा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, पहले तो ये तय कीजिए कि आपको बुरा इसलिए लग रहा कि आप राइट विंग हैं. मैं अगर ये कहूं कि जहर से कोई आदमी मर जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी से कह रहा हूं कि जहर पी लो. मैं जहर की खासियत बता रहा हूं.
4: देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं हामिद अंसारी साहब के पहले भी उन्होंने बहुत कंट्रोवर्सी बयान दिए थे और उसके बाद फिर उन्होंने एक कंट्रोवर्सी बयान अपना मुसलमानों के नाम से दिया है. मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं. आज फिर उनको मुसलमान याद आ गए. जब वो सत्ता में थे, बड़ी बड़ी पदों पर बैठे थे, तब वो सेकुलर थे. आज वो उन्हें मुसलमान याद आ गए. उनको अब मुसलमानों के अंदर उनकी छवि बिल्कुल, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उनसे मिलने तक नहीं जाता. तो उनको लगा कि फिर मुसलमानों पे कोई सियासत की जाए.
1: All right, let's turn our attention to the other big story we're tracking on the breakfast show. The special intensive revision of electoral rolls in Delhi has triggered a political row. You see, External Affairs Minister Dr. Jaishankar, former Deputy Prime Minister L.K. Advani, former Vice President Jagdeep Dhankar, Election Commissioner S.S. Sandhu, and Aam Aadmi Party's Arvind Kejriwal are among many prominent voters who've been issued notices over discrepancies in details submitted during the ongoing SIR. Others on the list include former Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia, CBI Director Praveen Sood, former Army Chief General Upendra Dwivedi, and former Supreme Court Judge Ranjana Desai, along with some of their relatives. You see, the Election Commission says the SIR is a transparent and inclusive exercise aimed at ensuring due verification, with these notices issued to electors where clarification is required. But the Congress has questioned the process, alleging flaws in the voter list exercise and citing notices to prominent figures as evidence of its concerns. So while the Congress is questioning the exercise, the BJP is defending the SIR as a constitutional process. The BJP is saying that all electors receiving notices must submit the required documents and complete verification. Here are the political reactions you need to listen to.
5: दिल्ली के तीन बार रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को एसआईआर की प्रक्रिया के अंदर नोटिस दिया गया। नोटिस इसलिए दिया गया कि एसआईआर की प्रक्रिया के हिसाब से उनका नाम मैप नहीं हो पा रहा है, ना उनका, ना उनकी पत्नी का, ना उनके बच्चों का। और ये सवाल उठाता है पूरे के पूरे इलेक्शन कमीशन, जब एसआईआर इस तरह के वोटर्स के ऊपर भी सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि आपकी मैपिंग नहीं हो पा रही है, तो आप अंदाजा लगाइए उस साधारण इंसान का, ना उसके पास कॉन्टैक्ट्स हैं, ना उसके पास नेटवर्किंग है, ना उसके पास ये मौका है कि उसकी बात अखबारों में और टीवी में छपेगी। वो आपके, हमारे और लाखों ऐसे वोटरों के लिए सवाल है।
3: एसआईआर बहुत ही गलत एक्सरसाइज है। ये इलेक्शन कमीशन को विचार करना चाहिए कि इतनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद आप ठीक तरीके से वोटर लिस्ट तैयार नहीं कर पा रहे हैं। हमने कभी एसआईआर का नाम ही नहीं सुना था। यह एसआईआर का नया प्रोविजन इलेक्शन कमीशन ने भारतीय जनता पार्टी की दबाव में किया है और अभी तक 12-13 करोड़ वोटर्स डिलीट कर दिए गए। ये तो लोकतंत्र को ख़त्म करने की एक बड़ी साजिश है और ये इस बात का बड़ा सबूत है कि जब एलके अडवाणी के पास नोटिस जाएगा, देश के फॉरेन सेक्रेटरी के पास जाएगा, तो इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये प्रोसेस जो है वो कितना गलत प्रोसेस है।
6: एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है और वो इतना निष्पक्ष है, उसमें इतनी पारदर्शिता है कि जो नोटिसेस दिए गए हैं उसमें बड़े बड़े लीडर्स के नाम हैं, और चाहे वो कपिल सिब्बल हों, चाहे हमारी रेखा गुप्ता जी हों, चाहे लाल कृष्ण अडवाणी जी हों और चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों, उन सबको दिए गए हैं क्योंकि एक रूल ऑफ लॉ है, उसके तहत एक कानूनी प्रक्रिया है, उसके तहत सबको बताना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है, नोटिसेस जाते हैं और आप सही डॉक्यूमेंट्स देते हैं और बात साफ तौर से नई तरह से अपडेट हो जाती है इलेक्टोरल लिस्ट में। लेकिन उसमें भी राजनीति देखिए, बजाय ये समझने के कि लाल कृष्ण अडवाणी जी को भी गया है भाई, एस जयशंकर जी को भी गया है, जो हमारे मंत्री एक्सटर्नल अफेयर्स के, लेकिन आप अपनी बात करके अपना रोना, अपने मातम शुरू कर दिया है। और मुझे लगता है कितना ये दयनीय हालत कर दी है कि बार बार विक्टिम कार्ड खेलो भाई, सच सबके सामने है।
7: उनके वोटर नहीं है ना, कैसे कम कर दिए जाए। मैं तमाम मतदाताओं से कहूँगा कि लड़ाई लड़ो इसकी और अपना नाम डलवाओ, वकील पकड़ो, संघर्ष करो, नहीं तो ये लोग आपका नाम काट देंगे और फिर इलेक्शन चुन के आ जाएंगे बेमानी से।
8: पहले ऐसा ही यार होता था, वो बराबर होता था, एक हर साल में पुराना वोटर लिस्ट लेके एक बार रिव्यू किया जाता था, कौन मर गया, कौन नया 18 साल में प्रवेश किया, उसको लिस्ट रिविजन होता था। ये एसआईआर बराबर होता था, मगर इस बार क्या एसआईआर हो रहा है, 12-13 करोड़ वोटर को वोटर लिस्ट से निकालना था और निकालने के लिए वो लोग आरएसएस ने योजना बनाया, लिस्ट बनाया कि इनमें से कौन बीजेपी के वोट नहीं देंगे, उसका बड़ा हिस्सा है मुसलमान है, दलित है, आदिवासी है, जिसको संदेह है ये बीजेपी को वोट नहीं देंगे।
1: All right, on that note, let's turn our attention to breaking news we're tracking at the moment. Tamil Nadu's political battle over assembly conduct is now turning into a contest over who's responsible for lowering the dignity of the house. Minister K.G. Arun Raj has accused the DMK of lacking the moral authority to question assembly proceedings, arguing that it was the DMK members who created unruly scenes that have prompted TVK legislators to react. Now, that is the minister's version of events. Listen in to the comments coming in.
9: तालीम की डस ना भी नहीं ऑल अथॉरिटी टू से दैट असेंबली दैट द प्रेस्टीज ऑफ द हाउस हैज बीन लोअर्ड बिकॉज वी ऑल नो हाउ डीएमके डेल्ट विद असेंबली पोजिटिंग during the previous years so DMK doesn't have any moral authority on that. It is DMK's members but created that unruly scenes for which that TVK legislators had to react.
1: My colleague Vijay Gopal Muralidharan has been tracking all the finer developments for us. He joins us live at the moment. Vijay, it seems to be that this entire face-off between the TVK and the DMK is only intensifying, now turning into a contest over who's responsible for lowering the dignity of the house.
10: Parmeshwar, that's right. After the conclusion of recent legislative assembly session, the war of word continued between TVK and DMK over conduct in the legislative assembly, whereas DMK staged walkout and also criticized the TVK government for defaming the legislative assembly on various occasions, saying that especially after Chief Minister P. Joseph Vijay made a gesture criticizing former Chief Minister M. K. Stalin over Missa arrest, and also DMK raised the slogans against that. Now Tamil Nadu Minister Arun Raja in criticizing DMK party, saying that they were responsible for creating such a lowering the house dignity, saying that just TVK legislative members just retaliated for what DMK legislative member inside did in the legislative assembly. So the war of words continues. On the other hand, not only DMK, even DMK allies like DMDK and even left parties have questioned TVK government over the conduct inside the legislative assembly. Parmeshwar.
1: As always, Vijay, thanks so much for joining us with the latest details. We'll of course continue to revert to you for regular updates. All right. On that note, let's turn our attention to further breaking news updates coming in, this time from Maharashtra. Well, you must note a dinner at a JW Marriott in Mumbai ended with a guest leaving the restaurant after an unexpected visitor appeared on the table. Take a look at the visuals on your screens at the moment. Now, Dr. Ashok Seth, chairman of Fortis Escorts Heart Institute, has posted this video on your screens claiming that a cockroach was found on his table at a restaurant in JW Marriott in Seher on Saturday night. In his post, he says the group eventually left because the incident ruined their appetite. He has also tagged the Maharashtra Food Safety Authorities through a pointed reference to Tukaram Munde as well, asking whether the matter will be looked into. One, of course, doesn't need to specify that for a premium hospitality brand, food safety is not just a matter of presentation alone. It is, of course, about the conditions in which food is prepared, the conditions in which food is served, and how a reported hygiene concern is handled. Tejshi Purandare is tracking the latest details. She joins us live with the clarity we need at the moment. Tejshi, do we have a response from the JW Marriott Mumbai or the restaurant, and has the Maharashtra Food and Drug Administration been informed about this incident?
11: As of now, we have the social media post that's been made by the chairman of the Fortis Hospital, in fact, where he has posted his video, which we can see on our television screens right now. And in fact, this in fact is definitely a major food safety concern, because time and again, we have been witnessing such kind of incidents, not just in the financial capital Mumbai, but in other places also, where these kind of premium food outlets, premium hospitality outlets have been exposed to these kind of sheer negligence when it comes to the food concerns, when it comes to the food safety concern. And no, as of now, there has been no response from the hotel as of now, but needs to be seen that what happens next, because since the video has been posted from the social media handle of the chairman of Fortis Hospital, and he has also tagged Tukaram Munde and other food officials as well. So now needs to be seen that how quick action is being taken on this entire case, because we have been seeing that how there are multiple raids at several outlets as far as Mumbai is concerned, and now in fact there are other places where where such kind of raids are being conducted as well, pan India, to keeping in mind the food safety concerns. But you remember that, you know, this is not some kind of roadside outlet. This is a very premium hospitality outlet, and if such kind of picture could emerge out at such place, then imagine the condition on every second outlet where we go for a dinner or lunch.
1: Of course, continue to track how this investigation progresses with you. Thanks so much. All right, another crucial news. Tata Trust, the largest shareholder with a 66% stake in Tata Sons, is preparing for a court battle if required to challenge the resolution on reappointment of N. Chandrasekaran as executive chairman for another 5 years. In fact, in a statement, you must note, the trusts have replied and relied on Article 121A of the Tata Sons Articles of Association,

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
6: देश का टायर जेके टायर।
7: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.

0: जिंदगी वो आपके हमारे और लाखों ऐसे वोटरों के लिए सवाल है।
1: ऐसा यार बहुत ही गलत एक्सरसाइज है। ये इलेक्शन कमीशन को विचार करना चाहिए कि इतनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद आप ठीक तरीके से वोटर लिस्ट तैयार नहीं कर पा रहे हैं। हमने कभी SIR का नाम ही नहीं सुना था। यह SIR का नया प्रोविजन इलेक्शन कमीशन ने भारतीय जनता पार्टी की दबाव में किया है और अभी तक 12-13 करोड़ वोटर्स डिलीट कर दिए गए। ये तो लोकतंत्र को ख़त्म करने की एक बड़ी साजिश है और ये इस बात का बड़ा सबूत है कि जब LK अडवाणी के पास नोटिस जाएगा, देश के फॉरेन सेक्रेटरी के पास जाएगा, तो इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये प्रोसेस जो है वो कितना गलत प्रोसेस है।
2: SIR एक संवैधानिक प्रक्रिया है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है और वो इतना निष्पक्ष है, उसमें इतनी पारदर्शिता है कि जो नोटिसेस दिए गए हैं उसमें एक बड़े बड़े लीडर्स के नाम हैं, और चाहे वो कपिल सिब्बल हों, चाहे हमारी रेखा गुप्ता जी हों, चाहे लाल कृष्ण अडवाणी जी हों और चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों, उन सबको दिए गए हैं क्योंकि एक रूल ऑफ लॉ है, उसके तहत एक कानूनी प्रक्रिया है, उसके तहत सबको बताना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है, नोटिसेस जाते हैं और आप सही डॉक्यूमेंट्स देते हैं और बात साफ तौर से नई तरह से अपडेट हो जाती है इलेक्टोरल लिस्ट में। लेकिन उसमें भी राजनीति देखिए, बजाय ये समझने के कि लाल कृष्ण अडवाणी जी को भी गया है भाई, एस जयशंकर जी को भी गया है जो हमारे मंत्री एक्सटर्नल अफेयर्स के, लेकिन आप अपनी बात करके अपना रोना अपने मातम शुरू कर दिया है। और मुझे लगता है कितना ये दयनीय हालत कर दी है कि बार बार विक्टिम कार्ड खेलो, भाई सच सबके सामने है।
3: उनके वोटर नहीं है ना, कैसे कम कर दिए जाए। मैं तमाम मतदाताओं से कहूँगा कि लड़ाई लड़ो इसकी और अपना नाम डलवाओ, वकील पकड़ो, संघर्ष करो, नहीं तो ये लोग आपका नाम काट देंगे और फिर इलेक्शन चुन के आ जाएंगे बेमानी से।
4: पहले ये SIR होता था वो बराबर होता था, एक हर साल में पुराना वोटर लिस्ट लेके एक बार रिव्यू किया जाता था, कौन मर गया, कौन नया 18 साल में प्रवेश किया, उसको लिस्ट रिविजन होता था। ये SIR बराबर होता था, मगर इस बार क्या SIR हो रहा है, 12-13 करोड़ वोटर को वोटर लिस्ट से निकालना था और निकालने के लिए वो लोग RSS ने योजना बनाया, लिस्ट बनाया कि इनमें से कौन BJP के वोट नहीं देंगे, उसका बड़ा हिस्सा है मुसलमान है, दलित है, आदिवासी है, जिसको संदेह है ये BJP को वोट नहीं देंगे।
5: Alright, let's switch tracks now. Tata Trusts, the largest shareholder with a 66% stake in Tata Sons, is preparing for a court battle if required to challenge the resolution on the reappointment of N. Chandrasekaran as the executive chairman for another 5 years. The trust cites Article 121A, arguing required board support was absent, and in a statement, the trusts have actually relied on Article 121A of the Tata Sons Articles of Association, arguing that the provision requires both trust nominees on board to support such a resolution. And the trust says Noel Tata voted against N. Chandrasekaran's reappointment, meaning the required trust support was absent. They further argue that the chairman's casting vote cannot override Article 121A, and that a 4-1 board vote cannot cure the alleged effect. Abhishek Manu Singhvi and Harish Salve have spoken to NDTV's Rahul Kaval to discuss the entire Tata dispute, the legal questions involved, and what lies ahead. Listen in.
6: Noel Tata has suggested that Chandra's reappointment and the broader push to list Tata Sons are separate issues. But these are now two major fault lines running through Tata Sons, and Noel Tata has opposed both. Can they really be viewed entirely separately, or is there a larger disagreement here about who steers the enterprise, particularly as Tata Sons faces the prospect of a major structural transformation?
7: So Rahul, as I said, it is a very major principle issue, a matter of principle of shareholder owner primacy. It is not about Noel Tata. He is not an individual shareholder. It is not even about Chandra. He is not an individual shareholder. It is about the primacy of a 66% collectivity called a trust. That's the shareholder owner. Now, if

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: recently in the month of Sawan, you went all the way to Haridwar with that Kavad. Kya ye cultural nationalism hai, tech pe dhyan de? क्या है क्या आपकी मैसेजिंग, कावड़ या कंप्यूटर?
1: क्या टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशन साथ में नहीं जा सकते हैं क्या? डज बीइंग प्रोग्रेसिव और बीइंग टेक सेवी, डज इट मीन वी अपरूट आवरसेल्व्स फ्रॉम आवर कल्चर?
0: सो सोमनाथ एंड स्टार्टअप्स कैन बोथ कोएग्जिस्ट,
1: दैट इज व्हाट मेक्स इंडिया सो स्पेशल. इफ वी होल्ड ऑन टू वन एंड लीव द अदर, देन पद्मजा, इंडिया विल स्टॉप टू बी भारत.
0: Before you did the Kavad Yatra, you also did the Iron Man.
2: Tere junu ke aage ambar panahe mange.
1: Essentially includes 1.9 kilometers of swimming in the ocean, 90 kilometers of cycling, 21.1 kilometer run. So you got to finish all of this in 8 hours 30 minutes. That's the cutoff. This year, unfortunately, I was a little lazy and I couldn't train.
0: We are going to knock that laziness off. One. Two.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
6: देश का टायर जेके टायर।
7: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।

0: தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சரும் சரி அமைச்சர்களும் சரி தொடர்ந்து அதை செஞ்சிட்ருக்கிறாங்க. அதனால தான் இன்றைக்கி ஒவ்வொரு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாக பார்த்து பார்த்து, அதுவும் அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களெல்லாம் விலைக்கு வாங்குகிற வேலையில் இன்றைக்கி இந்த அரசு இறங்கியிருக்கு. இப்படி விலைக்கு வாங்கின காரணத்தினால தான் உங்களுக்கு தெரியும், ரெண்டு சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல், மதுராந்தகம் தாராபுரத்தில் இடைத்தேர்தல் நடக்க இருக்கு. இந்த ரீல்ஸ் கும்பலுக்கு ஓட்டு போட்ட கொஞ்ச நஞ்ச மக்களும் ஏண்டா இவங்களுக்கு ஓட்டு போட்டோன்னு இப்போ கவலையில் இறங்கியிருக்கிறாங்க. இந்த ஆட்சியாளர்கள் அடிக்கின்ற இந்த கூத்தையெல்லாம் செய்கின்ற இந்த அட்டு ஒழுங்குகள் எல்லாம் மக்களுக்கு நாம் தொடர்ந்து அம்பலப்படுத்த வேண்டும். அதற்கு சரியான ஒரு தண்டனையை வருகின்ற இடைத்தேர்தல் மூலமாக நாம் இந்த ஆட்சியாளர்களுக்கு அதை நம்ம தெரியப்படுத்த வேண்டும். ஆளுங்கட்சி எதிர்கட்சி எந்த
1: Shifting tracks to some breaking updates coming in from the state of Karnataka. Karnataka Minister K.M. Shivalinga Gowda's bribe remarks have stoked row. This is in connection to his offer respectfully remark at a meeting. Shivalinga Gowda has now clarified these remarks, saying this is a maliciously edited video, and he in fact spoke about giving respect to officers. Karnataka Minister Shivalinga Gowda, speaking at a public grievances meeting in Hassan, had in fact said there was nothing wrong with citizens giving tips or an honorarium to government officials who complete their work promptly. This has obviously sparked a row. Let's listen into what exactly he said at the meeting and the clarification that he gave post that. All right, we're joined by Ritu Raj Purohit. Ritu, this statement, this remark has landed the minister into a lot of trouble. But also, let's listen into minister's clarification once again.
2: Prajasheva karyakramadalli obba vyakti ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ನಾನು ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಕೆಲಸ ನಾನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸಗಳು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆದಮೇಲೆ ನೀನು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಹೋಗಿ
1: A former Vice President Hamid Ansari's remarks have triggered a political storm. Let's listen in to some of the reactions and a press statement that's coming in from Sudhanshu Trivedi.
3: अगर कोई कहता है कि ये मुस्लिम लीग यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो मार्च 1949 में बनी है ये जिन्ना की मुस्लिम लीग नहीं है तो सरासर झूठ बोलता है, क्योंकि उसके संस्थापक मोहम्मद इस्माइल जिन्ना की मुस्लिम लीग के मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष थे. और अगर जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता था तो वो मुस्लिम लीग जिसके साथ आज कांग्रेस मिलकर केरल में सरकार चला रही है उसके संस्थापक मोहम्मद इस्माइल को कायदे मिल्लत कहा जाता था. अगर ये मुस्लिम लीग वो मुस्लिम लीग नहीं है तो ये कांग्रेस भी वो कांग्रेस नहीं है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते थे. अब आइए साहब, राहुल गांधी जी को क्या जरूरत थी वॉशिंगटन में जाके ये सब बोलने की कि बीजेपी इज कम्युनल एंड मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेक्युलर. और 2011 में बकौल विकीलीक्स, मैं नहीं कहता हूं विकीलीक्स में जो कुछ लिखा हो सब कुछ सही है, पर आज तक कांग्रेस से खंडन नहीं आया है कि उन्होंने जाकर अमेरिकी राजदूत से बातचीत में यह कहा कि लश्कर ए तैयबा से ज्यादा बड़ा खतरा उनके लिए हिंदू अपराइजिंग नजर आ रही है. यानी जो नेहरू की सोच थी वही राहुल गांधी की सोच है. और इतना ही नहीं, यह सोच किस प्रकार से सर्वत्र व्याप्त है कि सुशील कुमार शिंदे जो होम मिनिस्टर थे उन्होंने जनवरी 2013 में जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में कहा कि आरएसएस वाले शिविर चलाते हैं देश में डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज के लिए. और जब सुषमा स्वराज जी ने बताओ नेता प्रतिपक्ष पूछा तो भारत के इतिहास का कितना विचित्र और निंदनीय उदाहरण है कि सुशील कुमार शिंदे जो उन्होंने कहा आप गृहमंत्री हैं आपने किस आधार पे बोला, सदन के पटल पे साफ करिए, तो उन्होंने कहा मैं अपना बयान वापस लेता हूं. मैंने ऐसे ही बोल दिया था। यानी यह दर्शाता है कि इनकी बातें तथ्य पर आधारित नहीं होती हैं और यह पूरी तरीके से कपोल कल्पना पर आधारित होती हैं। अब कांग्रेसियों के लिए परम आदरणीय और सम्माननीय जवाहरलाल नेहरू जी, जिनका उल्लेख उनके लिए सेक्युलरिज्म के सरताज हामिद अंसारी साहब ने किया है, तो मैं नेहरू जी की के मनोभावों को मैं व्यक्त करना चाहता हूं उन्हीं की जवानी। नेहरू जी ने 17 मार्च 1959 को आकाशवाणी के साथ एक कार्यक्रम में, जिसमें कि वो भारत के म्यूजियम का उद्घाटन कर रहे थे और तत्कालीन शिक्षा मंत्री हुमायूं कबीर भी थे, वो क्या कहते हैं मैं कोट कर रहा हूं। मिस्टर हुमायूं कबीर रिफर्ड टू द ग्रेट टेम्पल्स ऑफ साउथ, वेल दे आर वेरी ब्यूटिफुल, सम ऑफ द टेम्पल्स ऑफ द साउथ हाउएवर रिपेल मी इन स्पाइट ऑफ देयर ब्यूटी, आई कैन नॉट स्टैंड, व्हाई डू आई डू नॉट नो, आई फील सप्रेस्ड। यानी जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि दक्षिण भारत के मंदिर जिनकी हुमायूं कबीर तारीफ कर रहे हैं, वो अपने शानदार स्थापत्य के बावजूद मुझे रिपेल करते हैं, मुझे उनसे एक विपरीत प्रभाव महसूस होता है और मैं डिप्रेस्ड फील करता हूं। एंड हाउ एवर जब मैं ताजमहल इज ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स एनी वेयर इन द डिलाइट टू द आई एंड स्पिरिट टू सी, ताजमहल देखकर मेरी आंखों को सुकून मिलता है। अब सुनिए, ताजमहल संगमरमर से बनी इमारत है और वही जवाहरलाल नेहरू 1962 में क्या कहते हैं, मंदिरों में संगम, अच्छा ये जो मैंने बोला है इसमें भी कांग्रेसियों के सुलभ संज्ञान के लिए, चाचा जी के चाहतों वालों के लिए मैं बोल देना चाहता हूं, द सोर्स इज स्पीच बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 17th of March 1959, सोर्स इज सिलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 47 इन द फर्स्ट एडिशन फ्रॉम पेज नंबर 401 to 406। अब आइए साहब, वो संगमरमर का ताजमहल नेहरू जी को कितना अच्छा लगता है, मगर वही बोलते हैं मंदिरों में संगमरमर या मार्बल इतना ज्यादा यूज होता है कि मुझे गुसल खाने की याद आती है, बाथरूम की याद आ रही है। इसका सोर्स है सिलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 74 इन द ओरिजिनल एडिशन पेज नंबर 181। आप फितरत देखिए, मंदिर में डिप्रेशन, ताजमहल को देख के वाह क्या सुंदर, और मंदिरों के संगमरमर पे बाथरूम याद आता है। यह है असली फितरत। और मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं बोला था, उन्होंने कहा कि संगमरमर के पत्थर से चाहे जितनी अच्छी भी मूर्तियां बना दी जाए, मगर मुझे उसमें से गुसल खाना ही याद आता है, बनारस के लोगों को भले ही बुरा लग रहा हो, यानी बुरा लग रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ इतना ही नहीं है, नेहरू जी ने वंदे मातरम के लिए क्या कहा वो सबको पता है। अब जो इन्होंने कोट किया है वही नेहरू जो कि ये कहते हैं विदेशी आक्रांताओं के लिए, वही नेहरू छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए लिखते हैं लूट ऑफ सूरत, और जब उसका विरोध होता है तो 1936 में वो विड्रॉ करते हैं और रिग्रेट व्यक्त करते हैं। मगर वही नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, जहां महमूद गजनी का वर्णन है, वहां कहते हैं गजनी वॉज फार मोर ए वॉरियर, ही हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन, और इस कदर छुपाते हैं कि मथुरा में जो गजनी के आने का उल्लेख होता है उसमें वो कहता है अरे इतने सुंदर इमारतें, मुझे लगता है इनको बनाने में तो 200 साल लगे होंगे, फरिश्तों ने बनाया होगा। और वहीं पर नेहरू जी रुक जाते हैं, कहते देखिए वो कितना बड़ा कला का पारखी था, जबकि उनके साथ आए हुए जो इतिहासकार थे जिसमें उतबी हैं, फरिश्ता हैं, मिनाजुस सिराज हैं, वो लिखते हैं कि ये कहने के बाद गजनी ने कहा सारे मंदिरों को तोड़ दो, आग लगा दो, नेफ्था लगा के आग लगा दो। मगर देखिए कैसे वो छुपाते हैं, ये उनके दिल की हकीकत है। और अब मैं कोट कर रहा हूं जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार में मंत्री रहे श्री एनवी गाडगिल के लिए, उनके इन्हीं कारणों की वजह से वो ये कह रहे हैं कि स्वतंत्रता के समय हिंसा बढ़ी, द स्पीचेस ऑफ नेहरू ऑन द मुस्लिम प्रॉब्लम इंसाइटेड देम एंड इन्फ्यूरिएटेड द हिंदूज, द डिफरेंस बिटवीन नेहरू एंड पटेल ऑन हाउ टू डील विद मुस्लिम्स कंटिन्यू टू ग्रो, द एटमोस्फियर बिकॉज ऑफ द नेहरूज स्पीच इज गेटिंग टेंसर एंड टेंसर एंड इट इज क्रिएटिंग रिस्क टू गांधी जीज लाइफ। एनवी गाडगिल हु वाज द मिनिस्टर इन नेहरूज कैबिनेट इन हिज बुक फ्रॉम इनसाइड द गवर्नमेंट इन द ओरिजिनल एडिशन ऑन पेज नंबर 147 टू 148। इसीलिए हामिद अंसारी जी बधाई के पात्र हैं, उन्होंने इतिहास के गड़े हुए मुर्दे उखाड़े नहीं हैं, उन मुर्दों में जान फूंक दी है। जो लोग भूल गए थे उनको भी वो सारी की सारी चीजें उन्होंने याद दिला दी हैं। इसलिए हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि आज अंसारी साहब ने अपने बयान से साबित कर दिया है कि कांग्रेस जिस प्रकार के मुस्लिम्स को आगे बढ़ाती है उनके अंदर वही लीगी भावना होती है जो कांग्रेस के अंदर आज पूरी तरीके से व्याप्त हो गई है। और इसलिए हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि नेहरू जी ही, एक और बात कोट कर दूं, 1935 में ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखते हैं, आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम अबाउट द हिंदू नेशनलिज्म एज डिस्क्राइब्ड बाय स्वामी विवेकानंद। यानी 1934 में ये लिख रहे हैं, और जैसे 1937 में जिन्ना कहता वंदे मातरम का विरोध करो, खड़ाक से सरेंडर, 6 अप्रैल 1938 को वो लेटर लिखते हैं, नहीं नहीं हम सब बंद छोड़ने को तैयार हैं, सब काटने फाटने को तैयार हैं, 1944 में डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिख देते हैं। यानी जो गलती कांग्रेस ने 100 साल पहले की थी वही आज कर रहे हैं। और जिस प्रकार से हामिद अंसारी साहब ने कांग्रेस को एक्सपोज किया, नेहरू जी को एक्सपोज किया और ये साबित किया कि वामपंथ एक खतरा है, उसके लिए उससे अब एकदम साफ हो गया कि कांग्रेस के चेहरे का मास्क हट गया है और वो पूरी तरीके से साफ हो गया है। इसलिए मुझे लगता है कांग्रेस वालों को नेहरू जी को कोट करने से पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि उनकी किताबों में जो कुछ लिखा है शायद उन्होंने खुद भी नहीं पढ़ा है। और राहुल गांधी जो ऐसे नेता हैं, आपने पढ़ा लिखा दो शब्द सुने होंगे ना, वो सिर्फ लिखे हैं पढ़े नहीं है, खड़ाकट ट्विटर पर लिखते हैं और पढ़ते कुछ नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा नेहरू जी और गांधी ने जो कुछ लिखा है उसको पढ़िए और याद रखिए, बैठे हैं वो दिल में इतने राज छुपाए, यानी जो उनका साहित्य है वो बैठा है दिल में इतने राज छुपाए, जरा सा एक पन्ना उठे तो तुम्हारा दिल डगमगाए। धन्यवाद। I think I would like to remind you that in Kerala, the Grand Mufti has said that the women should not come out of house. उन्हें बाहर आना ही नहीं चाहिए, बल्कि उन्होंने कहा है कि महिलाओं को ऐसे रखना चाहिए जैसे नेकलेस या हार को तिजोरी में बंद करके रखते हैं, वैसे रखना चाहिए। यह केरला के ग्रैंड मुफ्ती ने बोला है। इसलिए मैं कह रहा हूं विदेश में क्या बोला गया वो तो छोड़िए, अब मैं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से ये कहना चाहूंगा, ए भाई स्मैश पैट्रियार्की के झंडा बरदार अब ग्रैंड मुफ्ती के हो गए फरमा बरदार। और मैं उनसे कहता हूं अगर हैसियत है, वहां आपकी सरकार है केरल में, हैसियत है तो चूं बोल के दिखाओ जो हिंदू धर्म ग्रंथों के ऊपर चिंगाड़ते और पता नहीं क्या क्या करते रहते।
1: Sudhanshu Trivedi of the BJP responding to remarks made by Hamid Ansari. In fact, that had triggered a political storm. Lots of reactions had come in. Ansari was speaking at Noorni Memorial Lecture, where he referred to what he described as emerging trends around cultural nationalism. UP Chief Minister Yogi Adityanath had hit back strongly. Now Sudhanshu Trivedi also taking that presser, taking exception to what Ansari had in fact said. Let's go straight across to Tejshree on this. Tejshree, BJP accusing Ansari of selectively highlighting one form of communalism while ignoring other forms of extremism. And in this case, Sudhanshu Trivedi also talking about how Congress is indulging in Muslim appeasement and has been involved in anti-Hindu politics. If you can take us through the criticism there by the BJP leader.
4: Well, absolutely, war of words has been erupted amidst all this controversy. But let us first take a first reaction from the Congress party, one of the very vocal voice from the Congress party, an MP, Mr. Imran Masood. Masood saab, sabse pehle to aapse is baat ka jawab lena chahenge ki Hamid Ansari ji hain, unhone kaha hai ki Hindu dakshinpanthi sampradayikta hai. Jawaharlal Nehru ko quote karte hue unhone ek lecture mein ye speech kahi thi, ye baat kahi thi. Is par aapko kya kehna hai?
5: Dekhe, sampradayikta zeher hai. चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई दूसरी सांप्रदायिकता हो, नफरत हमेशा देश को नुकसान पहुंचाती है. नफरत से कभी देश तरक्की नहीं कर सकता. जिस देश में नफरत होगी उस देश के अंदर कभी तरक्की के रास्ते नहीं खुलेंगे.
4: बीजेपी एमपी सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि कांग्रेस जो है वो अल्ट्रा लेफ्ट हो चुकी है.
5: हम ना लेफ्ट है ना राइट है, हम स्ट्रेट हैं, हम सीधे हैं बिल्कुल.
4: और साथ ही साथ उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया और इस बात का जिक्र किया कि संगमरमर का ताजमहल नेहरू जी को बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मंदिरों में संगमरमर या मार्बल इतना यूज होता है मुझे गुसल खाने की याद आती है. इससे कोट करते हुए अभी भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे?
5: इन्हें गांधी परिवार से इतना डर लगता है. इन्हें दिन में भी भूत की तरह नजर आ रहे हैं. ये रात को सपने में भी देखते हैं ना राहुल गांधी, तो इनको पसीनम पसीन होकर उठते हैं रात को भी. इन्हें राहुल गांधी से इतना डर लगता है.
4: लेकिन ये कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता जो है वो कांग्रेस पार्टी फैला रही है और हिंदुओं से नफरत है कांग्रेस पार्टी को, इसीलिए इस तरह की अपीजमेंट पॉलिटिक्स जो है वो कांग्रेस.
5: हिंदुत्व का सारा ठेकेदारी इन्हीं के पास है क्या? सारी ठेकेदारी इन्होंने ले ली क्या? हिंदुत्व की या सनातन की सारी ठेकेदारी है? मंदिर बनाओगे और चोरी कराओगे? सारी ठेकेदारी इसी काम के लिए कर रहे हो, मंदिर बनाओ और फिर चोरी कराओ?
4: अलग अलग नेताओं को कोट करते हुए भी सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि कब कब हिंदुत्व का अपमान किया गया, किस तरह से हिंदू देवी देवताओं का अपमान कांग्रेस पार्टी द्वारा उनके नेताओं द्वारा किया.
5: हमने तो किया नहीं, लेकिन ये रोज हमारा अपमान करते हैं, इस पर भी बात करेंगे? नहीं करेंगे. हमारी मस्जिद डा दोगे तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारी मस्जिदें तोड़ दोगे, दरगाहें तोड़ दोगे, मदरसे तोड़ दोगे, तुम्हें शर्म नहीं आती ये बातें बोलते हुए? पहले अपने गिरेबान में जागो कि तुम क्या कर रहे हो. कांग्रेस सबकी पार्टी है. कांग्रेस किसी जाति, किसी धर्म, किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है. कांग्रेस एक विचारधारा है और उस विचारधारा के अंदर हिंसा है नहीं है, नफरत नहीं है. उस विचारधारा के अंदर प्रेम है, सद्भाव है, भाईचारा है.
4: All right, so that was Congress MP Imran Masood hitting out in very strong words at the BJP for the kind of remarks that the BJP has been making over the Congress party as far as the politics of appeasement is concerned. Back to you.
1: Right, thank you Tejshree for getting those details as well as the reaction from the Congress party. Remarks certainly drawing sharp criticism from the BJP. Congress there defending Hamid Ansari's remarks. This has obviously turned this into a wider political debate over secularism, nationalism and communal harmony. Punjab's drug crisis has once again triggered a political storm. A young man identified as Jagga Singh has consumed poison during an anti-drug protest in Punjab. He has made serious allegations against a local sarpanch and his aides. He claims that he was threatened after posting a video highlighting drug problems and alleges that the video was subsequently deleted. Congress leader Sachin Pilot has questioned the safety of those raising their voice against drugs in Punjab. Pilot has alleged that people speaking out against drug menace are facing pressure and threats. This is second such incident in Punjab Sangrur. Earlier, a man named Gulzar Singh had died by suicide over drug menace, and he held Punjab Minister Cheema responsible for his death.
6: ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ?
7: ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ.
6: ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ?
7: ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ.
6: ਭਾਈ ਅਸਲ ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆ?
7: ਐਕਸ਼ਨ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਨੈਟ ਤੇ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਦ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਦ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾ ਦੀ ਆ.
6: ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਭਾਈ?
7: ਸੁੱਕੀ ਬੂਣੀ ਆ ਜੀ.
6: ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੰਗ ਕਰਿਆ, ਕੀ ਕਿਹਾ
7: ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਮੋਹਨ ਜੀ ਅਸਲਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਗੋਲੀ.
6: ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਆ.
7: ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਬਣਦੇ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ.
6: ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ?
7: ਕਰੀ ਆ ਜੀ.
6: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ?
7: ਨਹੀਂ ਜੀ, ਡੀਬੀਆਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲੀ ਆ ਡੀਬੀਆਰ.
6: ਪਰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਆ ਭਾਜੀ.
7: ਉਹ ਸਰ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਲਾਵਾ ਕੋਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਰਨਗੇ ਉਹਨੇ.
8: ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਡੀਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਈ ਹੈ. ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਸੀ. ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਧਮਕਾਇਆ. ਉਹਨੇ वीडियो डिलीट भी करती लेकिन असला लेके चले गया ते ओ डर दे मारे ने अज आत्महत्या करने वास्ते दवाई खा ली है जेरे इलाज है ते उदी स्थिति बड़ी माड़ी है। ये हालात अज पंजाब दे इन्होंने करते है कि दहशत इन्नी पा रहे है कि हर बंदे नूं डराउण की कोशिश की जा रही है। पिछे गुलजार सिंह आत्महत्या कर गया मोहनजीत दे तसीहे दिते उस तरीके का यह केस है हर रोज़ इस तरह के केस देखने को मिलते हैं।
1: Breaking updates from Jammu and Kashmir pandemonium in J&K assembly as BJP members disrupt question hour over alleged government failure over governance, employment, electricity and so on, shouting slogans and terming government as Nikammi. Face off between BJP MLA and NC Congress MLAs. Massive sloganeering happening at the assembly. NC Congress and other legislators are shouting slogans for statehood restoration as well. So that's the breaking update coming in from J&K assembly. BJP members, they're disrupting question hour over alleged government failure over governance, employment, electricity and several other issues. Let's go straight across to Nazir. Nazir, chaos there erupting at the assembly as the autumn session begins. If you can take us through what is going on, what are the BJP members really sloganeering and protesting over?
9: Well, it was a huge pandemonium inside assembly as the members of BJP, they stormed the well of the house and they were on a sit-in dharna diya. One MLA was actually laying down on the floor and shouting slogans against the government and saying this government needs to be changed because it has failed to deliver. On the other side, there was counter from the ruling alliance, National Conference and Congress, and they were demanding restoration of the statehood and saying that it is the BJP government which should be thrown out in the center. So massive pandemonium on day one, and the question over was clearly, you know, disrupted while Chief Minister and other ministers, they were answering the questions, but no one could hear it. Speaker tried his best to persuade MLAs to go back to their seats, but actually literally nobody heard him. And because he was standing and asking MLAs, members, to go back to seats, but it was a massive pandemonium, huge sloganeering happening, taking place, slogan shouting. They are inside the house and from both the sides, massive face-off on day one, which is a clear indication that the autumn session, which will continue for 10 days, is going to be a really stormy one because opposition is trying to corner the government. And government on its side has tried to get all its supporters and alliance partners on their side. Yesterday, there was a meeting which was called by Farooq Abdullah and Chief Omar Abdullah as well, where Congress and other members also attended these alliance members. So they want to put a united front, but opposition, particularly BJP, appears to be in a very, very combat and offensive mode here in Jammu and Kashmir Assembly. And the first day, the day it was adjourned of the assembly amid pandemonium, as BJP members stormed the well of the house.
1: Mm. All right. Thank you, Nazir, for getting us all of those details. So stormy session expected in the days to come as well as far as J&K Assembly is concerned. Let's shift our focus now. A dinner at JW Marriott in Mumbai took an unexpected turn when cardiologist and Fortis Healthcare Chairman Ashok Seth spotted a baby cockroach crawling across his table at a hotel's Romano restaurant in Sahar. Seth declared the incident on X, jokingly calling the insect Rochi and saying it appeared unwilling to leave. Seth tagged Maharashtra FDA Commissioner Tukaram Munde, FSSAI and JW Marriott as well, saying he expected Munde to take action and look into the food safety concerns. NDTV Sneha Murdani spoke with him. Listen in.
10: Well, there's been a great deal of scrutiny when it comes to the kind of food that we eat in restaurants. Well, very often social media users have been flagging off concerns regarding the quality of food and sometimes even the presence of insects and cockroaches, like in the case of Dr. Ashok Seth, who was at the prestigious JW Marriott Hotel and wherein he was there for a meal. But then he put out this post where he spoke about the presence of a baby roach. Well, that was a hilarious take, Dr. Ashok Seth. Thank you so much for your time. But Dr. Seth, jokes apart, your tweet was hilarious, but this incident was disgusting. What really happened here? You did mention that there was a cockroach that was roaming around and we're talking about JW Marriott, isn't it?
11: Yes, you're absolutely right. And as you would note from my previous tweet history,

0: सुबह।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा। सबका राजा आर्थर मसाला।
2: Voices that redraw boundaries.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: Voices that redraw boundaries.

0: Studying in Delhi University should feel secure, home and safe. My motive sitting here is to make every girl studying in Delhi University safe and secure. And the toughest part for me was late night walking in universities, talking to students, listening to their struggles and their stories. But it was inspiring also to talking some students who have been studying in Delhi University and coming from different backgrounds.
1: What was the most emotional moment that hit you hard? Mera gham sabse kam hai.
0: My emotional moment was when I got the ticket, because this was my dream since 8th class. So I started crying over there only ki yes, finally I got the ticket.
1: Lakshya hails from Rajasthan. Khama ghani to you on our show. Give us an idea on what has been your biggest strength and who do you give the credit for this win?
2: First of all, thank you to everyone from the Rajasthan. I am struggling from the 7 years in Delhi University, and the students of Rajasthan, they really work hard for me, and the AVP Karyakartas, like from 2 months they are working on the field and through the social media also.
1: जब आप बात करते हैं तो मुझे ये बताइए ना सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या होता है जब छात्रों से बातचीत करना उनसे मिलना. What has been the biggest challenge on ground?
2: Convincing them is the biggest deal. क्योंकि उनको convince करना, क्योंकि students जो होते हैं वो थोड़ा सुबह late उठते हैं और फिर उनको आप convince करो कि सुबह जल्दी आपको उठ के वोट भी देना है, क्योंकि दो दो बजे तक हम कैंपेनिंग में होते हैं, सबसे मिलते भी हैं. फिर उनको ये भी बताना है कि आपको सुबह 8 बजे वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको उठना पड़ेगा. फिर थर्ड चीज़ होती है कि आपको आइडियोलॉजिकली वे में उनको समझाना पड़ता है कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, क्योंकि यार दूसरे जो संगठन हैं उनके पास में वही बातें हैं, लेफ्ट की सारी बातें करते रहेंगे बट यूथ को डाइवर्ट करते रहते हैं. जैन जी जो आंदोलन हुआ आपने देखा होगा, अपने कांग्रेस जनता पार्टी ने वहाँ पे किया, उसके अंदर मुद्दे कुछ और थे और वहाँ पे जो नारे लग रहे थे वो कुछ और थे. तो ये सारी चीज़ें उनको क्लेरिफाई करना, उनको बताना कि जो पट्टी बांध तुम्हारे आँखों पर बांधे जा रही है ये बहुत गलत है.
1: Yash, give us an idea, how will you address the challenges? What we saw in Satya Niketan was heart-wrenching. Those videos will never go off our memories. What we saw, the entire demolition of a building and students being taken out from debris. It was a part of the agenda during your campaign. How do you plan to address it with immediate effect in next few months?
3: Ma'am, our first motive will be to do safety audits for hostels and PGs, because we don't want that such incident should be there, be happening in university, and we'll make ensure that each and every building, either it's of college, hostel or PG, should be safe for the students.
1: Riya, give me an idea. There's been suicide in IIT Bombay, in IIT Delhi. How disturbing is that for you as a student when you see this happening, and what would be your step in containing it?
0: It is very disturbing for each and everyone, because students work really hard, study really hard for very long time, and when results goes against their favor or something happens, such incidents happen. So this is very disturbing. ABEP has launched his manifesto. It is also written there that we will launch some mental health counseling sessions for the students studying in Delhi University, so to keep their mental health well, because when a student think well, keeps his mental health well, so he can study well.
1: Dusume, when we talk about the mandate that you've got, Laksh, give us an idea. Rahul Gandhi ne jo apne karyakram mein bola ki Gen Z hamare saath hain, aur jo tippani hui maa ke liye kursi lao. How does that go with you?
2: देखिए, उनकी सबसे बड़ी गलती ये है कि परिवारवाद से वो उससे ऊपर उठ ही नहीं पा रहे. ठीक है, माँ का सम्मान है, हर जगह होना भी चाहिए. युवाओं का कार्यक्रम है, युवाओं को उसमें ज़ोर शोर से भागीदारी निभानी चाहिए, उन्होंने निभाई भी. बट उन्होंने जो छात्र गूंज का नाम दिया, वो छात्र गूंज जहाँ होनी चाहिए थी उसकी वजह दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर हुई. और माँ के लिए कुर्सी लेके आओ, एक ऑर्डर था, और ऑर्डर ऐसा कि वो दिखाना चाह रहे थे इसके अंदर कि मतलब ये मानसिकता उनकी ऐसी बन गई है कि परिवारवाद से उनके लिए उनकी फैमिली प्रायोरिटी है, और फैमिली के अलावा वो कुछ सोचते नहीं हैं, और उसी का

0: Very soon, all the arrests will be made. And as far as the Bihar Police Headquarters is concerned, they are also acting stern on this, as they are claiming.
1: Prabhakar, this is absolutely shocking and disturbing. As you said, both of these victims are minor. What business does anybody have if there are two young people going about whatever they are doing? I mean, they were caught. Prabhakar, just tell our viewers a little bit more about what the police at this moment is saying. What we know is that they have contacted the girl. She must be in absolute trauma after going through this ordeal.
0: Anybody would be in a trauma, and the local police has contacted the family of the girl and also the boy who actually tried to defend her, and later we are seeing in the video how he was overpowered. Now, this particular case incident happened when these two, they are students, they are the class 10 students, so their age would be between 15 to 16 would be the average age, as we can guess, the class 10 students, and they were actually moving around there. They were supposed to be friends, they were moving around, and it's absolutely nobody's business to interfere, to stop them from doing so. So the group of people actually stopped their vehicle, stopped their
1: activity,
0: asked them as to why they were moving around.
1: Can I just interrupt you there, Prabhakar? We are getting a reaction from the government at this moment इन बिहार. लेट्स लिसन
2: इस घटना की हम तीव्र निंदा करते हैं सरकार की ओर से, और निश्चित रूप से वहां के पुलिस पदाधिकारी, प्रशासन के पदाधिकारी इसमें एक उचित और कठोर कदम उठाएंगे. मैं इस जैसे आपसे मीटिंग खत्म हो जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहां के मैं पुलिस अधीक्षक से भी बात करूंगा जम्मू के, और सुनिश्चित उन्हें कहेंगे कि सुनिश्चित करें कि कोई भी इसके लिए जिम्मेवार हो, चाहे जो भी व्यक्ति हो, उसको चिन्हित करके उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करें.
1: Ahead of the elections in Punjab, the drug menace of the state is in the focus. Another man has tried to die by suicide by consuming poison after allegations of harassment once he made a video highlighting the drug menace in his village. Now, the Bharatiya Janata Party, which is taking out a drug-free Punjab yatra in the state, is at this moment speaking to the media. Let's listen in.
3: और कोई भी राजनीतिक दल क्यों ना हो, हर कोई आज शर्मसार है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में दारू को आगे बढ़ाया, उनके चेले भगवंत मान कह रहा है मुझे चिट्ठा दो, चिट्ठा दो, चिट्ठा दो, चिट्ठा दो. यह मुख्यमंत्री है, आपका काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है, आपका काम है शिकायतकर्ता अगर आपके पास आए उसको इंसाफ मिले, और यहां मुख्यमंत्री कहता है ड्रग्स दो, चिट्ठा दो. भारतीय जनता पार्टी बड़ी जिम्मेदारी से, जैसा हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, पंजाब में ऐसी पापी, नशीली, जनता विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे. पंजाब का युवा रोजगार के अवसर मांग रहा है जो भारतीय जनता पार्टी देगी. ड्रग्स मुक्त पंजाब, ये हमारा संकल्प है. और ये तस्वीर एक है जो अब पीछे भी लगाई हुई है, ये सच्चाई है, ये भगवंत मान की सच्चाई है. आज कहां है अरविंद केजरीवाल? हर बात पे जो बाइट देते थे, कैमरे के सामने आना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, कहां छुपे हुए हैं? भगवंत मान एक शब्द नहीं बोल पाए हैं. मैं बहुत जिम्मेदारी से एक और बात उठाता हूं, ये पापी आपका मैनिफेस्टो है. 2022 में जब पंजाब में विधानसभा चुनाव थे तो इसकी एक लाइन जो वादा किया था पापी आपने, वो पढ़ना चाहूंगा. कहा था।

0: नहीं है जितना हिंदू राष्ट्रवाद. ही हैज थॉरली एक्सपोज दैट कांग्रेस हैज बिकम कंप्लीटली मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस. कोट किया कि बकौल नेहरू जी कम्युनिज्म से बड़ा खतरा, यानी कम्युनिज्म को वो एक खतरा मानते थे. आप ही बोलते थे ना नेहरू का संदर्भ क्यों लाते हैं, नेहरू का संदर्भ कौन लाया है, हम नहीं लाए हैं, आपके समर्थक लाए.
1: अहमद अंसारी जी हैं, उन्होंने कहा है कि हिंदू दक्षिणपंथी सांप्रदायिकता है. जवाहरलाल नेहरू को कोट करते हुए उन्होंने एक लेक्चर में ये स्पीच कही थी, ये बात कही थी, इस पर आपको क्या कहना है?
2: देखिए, सांप्रदायिकता जहर है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई दूसरी सांप्रदायिकता हो. नफरत हमेशा देश को नुकसान पहुंचाती है. नफरत से कभी देश तरक्की नहीं कर सकता. जिस देश में नफरत होगी उस देश के अंदर कभी तरक्की के रास्ते नहीं खुलेंगे.
1: बीजेपी एमपी सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि कांग्रेस जो है वो अल्ट्रा लेफ्ट हो चुकी है.
2: हम ना लेफ्ट हैं ना राइट हैं, हम स्ट्रेट हैं, हम सीधे हैं बिल्कुल. इन्हें गांधी परिवार से इतना डर लगता है, इन्हें दिन में भी भूत की तरह नजर आ रहे हैं. ये रात को सपने में भी देखते हैं ना राहुल गांधी, तो इनको पसीनम पसीन होकर उठते हैं रात को भी. इन्हें राहुल गांधी से इतना डर लगता है.
1: लेकिन ये कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता जो है वो कांग्रेस पार्टी फैला रही है और हिंदुओं से नफरत है कांग्रेस पार्टी को, इसीलिए इस तरह की अपीजमेंट पॉलिटिक्स जो है वो कांग्रेस.
2: हिंदुत्व का सारा ठेकेदारी इन्हीं के पास है क्या? सारी ठेकेदारी इन्होंने ले ली क्या हिंदुत्व की या सनातन की? सारी ठेकेदारी है, मंदिर बनाओगे और चोरी कराओगे, सारी ठेकेदारी इसी काम के लिए कर रहे हो कि मंदिर बनाओ और फिर चोरी कराओ.
3: देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं हामिद अंसारी साहब के पहले भी उन्होंने बहुत कंट्रोवर्सी बयान दिए थे और उसके बाद फिर उन्होंने एक कंट्रोवर्सी बयान अपना मुसलमानों के नाम से दिया है. मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं. आज फिर उनको मुसलमान याद आ गए. जब वो सत्ता में थे, बड़ी बड़ी पदों पर बैठे थे, तब वो सेकुलर थे. आज वो उन्हें मुसलमान याद आ गए. उनको अब मुसलमानों के अंदर उनकी छवि बिल्कुल, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उनसे मिलने तक नहीं जाता. तो उनको लगा कि फिर मुसलमानों पे कोई सियासत की जाए.
4: A dinner at the JW Marriott Hotel in Mumbai took an unexpected turn when, well-known cardiologist and Fortis Healthcare Chairman Dr. Ashok Seth spotted a baby cockroach crawling across his table at the hotel's Romano restaurant. Seth, in fact, shared this on X, jokingly calling the insect Rochi and saying it appeared unwilling to leave. Say tagged the Maharashtra FTA Commissioner Tukaram Munde, FSSAI and JW Marriott, saying he expected Munde to take action and look into the food safety concerns. NDTV Health Editor Sneha Murdani spoke to him.
5: Well, there's been a great deal of scrutiny when it comes to the kind of food that we eat in restaurants. Well, very often social media users have been flagging off concerns regarding the quality of food and sometimes even the presence of insects and cockroaches, like in the case of Dr. Ashok Seth, who was at the prestigious JW Marriott Hotel, and wherein he was there for a meal, but then he put out this post where he spoke about the presence of a baby roach. Well, that was a hilarious take, Dr. Ashok Seth. Thank you so much for your time. But Dr. Seth, jokes apart, your tweet was hilarious, but this incident was disgusting. What really happened here? You did mention that there was a cockroach that was roaming around, and we're talking about, JW Marriott, isn't it?
6: Yes, you're absolutely right. And as you would note from my previous tweet history, that I'm always tweeting about public education, patient education, doctor education. And we were there to teach 300 doctors in that hotel on complex angioplasties. There were three foreign experts with us. And as a faculty, we're just having the dinner at the Romano restaurant that evening after a very tough day of standing and teaching. And that, and then as they just walked out and I was late in finishing my dinner, when four of us were sitting around, actually noticed this cockroach. See, the concerns here are, as you would note from my tweet, are not that there's any issues. For me, it's actually a public health issue.
1: Absolutely.
6: When we see a cockroach, it automatically means that there are hundreds and hundreds of them around.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आर्द्र मसाला।
4: A generation with questions.
5: The

0: आईआईटी बॉम्बे पवई को राजनीति का अखाड़ा क्यों बनाया जा रहा है पता नहीं। हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कोई बच्चा जब मृत होता है, आत्महत्या करता है, तो लोग उसका पीड़ा समझते हैं, लोग उसका दर्द समझते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी तो समझिए कि उस शिक्षक पर क्या बीत रही होगी जिसको निकालने की बात हो रही है, जिसको फांसी पर चढ़ाने की बात हो रही है, उस आईआईटी पवई के डायरेक्टर पर क्या बीत रही होगी जिसका इस्तीफा आप ले रहे हैं। दोनों विषयों को गंभीरता से समझिए। बच्चे की मृत्यु का सभी को दुख है, संवेदना है। उसने किस परिस्थिति में आत्महत्या की, क्यों की, कैसे की, इसकी जांच होनी चाहिए। एसआईटी बैठे, क्राइम ब्रांच आए, पुलिस आए, इसकी एक निष्पक्ष जांच भी हो। साथ ही साथ नकल को भी तो रोकना शिक्षक का ही काम है, मैनेजमेंट का ही काम है। एक आदर्श भारत बनाना है, एक आदर्श शिक्षक और आदर्श विद्यार्थी बन के बनाना है। पता नहीं कौन लोग इसमें राजनीति ढूंढ रहे हैं।
1: आईआईटी पवई में जो विद्यार्थी ने आत्महत्या की है, ये बहुत ही एक दुखद घटना है। पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। पढ़ाई लिखाई तो बहुत जरूरी है, लेकिन अगर कोई अच्छा इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बन सकता तो वो दूसरे क्षेत्र में अच्छा काम कर सकता है। एक अच्छा पेंटर, अच्छा शिक्षक के लिए बच्चों को, विद्यार्थियों को शिक्षा में प्रेशर नहीं लेना चाहिए। और वहाँ पे जो हर स्कूल में, कॉलेज में जो शिक्षक है, उनको भी, सभी विद्यार्थियों को इस पर काउंसलिंग करना चाहिए।
2: मुंबई के आईआईटी में वहां के छात्र ने खुदकुशी की और खुदकुशी का मामला सामने आने के बाद परिवार ने कुछ बिंदु पर शक जताया। सरकार ने पूरी जांच पुलिस को करने के लिए निर्देश दे दिए। अब पुलिस जांच कर रही है, पर दुर्भाग्य से एक परिवार ने अपने बच्चे को खोया है। मां ने अपने बेटे को, पिता ने अपने बेटे को खोया है, अपनी आंखों के सामने उसको चिता पे चढ़ते हुए देखा है। जांच के बाद कौन उसका कारण था, किसने उकसाया था, कौन से बिंदु थे आत्महत्या के, सारे सामने आएंगे। पर उसके पहले ही कुछ राजनीतिक दलों को इसमें खुद पड़ने की क्या आवश्यकता।
3: Let's now shift focus to the story which is coming in from Jamoi, an absolutely shocking, disturbing story of how two young people, two minors in fact, have been assaulted, traumatized. This girl has been groped in the name of moral policing. Now this story which in which you can see two youngsters have been harassed by a group of men. They were stopped while they were traveling. They were on a school, both of them are friends. They were coming back from their tuition at the time when this assault took place. Despite, you can very clearly see the young boy trying to shield her, save her, and it is overpowered, is beaten up. And then the shocking video where these men are touching the girl inappropriately and also then to try and carry her on the side of the road. Nobody, there are some other cars that you will see passing by as well. Nobody even tried to help them. The youngsters are seen pleading with their folded hands in an effort to be left alone. Now, this, ladies and gentlemen, exposes the law and order situation in Bihar, and especially for the Samrat Chaudhary government, the NDA government, which came into power telling people about the so-called Jungle Raj of the RJD. Is this the law and order that you promised? Now, Rahul Gandhi, the leader of opposition, has jumped in. He has demanded POXO Act against all the accused, those who took part in this assault. Three people have been arrested. But shamefully, JDU leader Umesh Kushwaha tried to downplay the incident and call this a minor, small incident.
4: जो भी घटना तो गलत हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और हम लोग जो प्रोफाइल है उसके आधार पर ही देख रहे हैं कि वे कोई जो ग्रामीण जो है जो चरवाहा, उस टाइप का ही प्रोफाइल इनका लग रहा है। हम लोग बाकी जो एक्यूज है उनकी गिरफ्तार कर लेंगे, उसके बाद अन्य लोगों का डिटेल पता चल सकता है कि वे क्या करते हैं।
5: घटना की हम तीव्र निंदा करते हैं सरकार की ओर से, और निश्चित रूप से वहाँ के पुलिस पदाधिकारी प्रशासन के पदाधिकारी इसमें एक उचित और कठोर कदम उठाएंगे। मैं इस जैसे आपसे मीटिंग खत्म हो जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहाँ के मैं पुलिस अधीक्षक से भी बात करूँगा जम्मू के, और सुनिश्चित उन्हें कहेंगे कि सुनिश्चित करें कि कोई भी इसके लिए जिम्मेवार हो, चाहे जो भी व्यक्ति हो, उसको चिन्हित करके उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करें।
6: घटना घटती है तो हम लोग उस पर सरकार संवेदनशील हैं, लेकिन वह समय देखिए 2005 की पहले का कैसा बिहार था, कोई घर से बाहर निकलते थे, किस तरह का बिहार था, क्या हालात था, लोग किसी तरह अपनी जिंदगी को काट रहे थे, ऐसा बिहार था ना। आज तो लोग कम से कम ये कोई घटना घटी है तो उस पर प्रशासन कार्रवाई कर रही है, एक्शन ले रही है प्रशासन, जल्द से जल्द जो घटना का जो अंजाम दिया है, चाहे 12 से 12 कोई कितना बड़ा कोई अपराधी क्यों नहीं हो, वो जल्द ही पुलिस के कब्जे में आएंगे।
7: एक वीडियो वायरल हो रहा है जो सर शर्म से नीचे करता है। मामला लखीसराय जमुई बॉर्डर का है। लड़के और लड़की घूमने निकले थे स्कूटी से, उसके साथ दिन दहाड़े छिड़खानी हुई, जहां बेटियां सुरक्षित नहीं है, सीधा ठोक करके कहते हैं कि 12 बजे रात तक बेटियां घूमती है, अब तो कोई सुरक्षित ही नहीं है भाई। किसी के घर के बेटी बहू अगर सड़क पर निकलेगी और इस तरह से छिड़खानी होगा तो कैसे निकलेगा, ये भय का वातावरण पैदा हो रहा है बिहार के अंदर में।
3: यस प्लीज लेट्स गो। यप, This shocking story is going to be my top focus at Nationwide at 6 o'clock as well, ladies and gentlemen. This is a mindset that needs to be challenged. All these criminals need to be given with strictest of punishment. An example needs to be made out of them. Moving on now, a social media reel criticizing MNS Chief Raj Thackeray has triggered a shocking act of public humiliation, in fact, criminality in Pune. MNS workers allegedly grabbed Marathi content creator Mahesh Mote, blackened his face and forced him to apologize. In a video of the incident, Mote is seen with slippers placed on his head as he is made to do sit-ups. He even is forced to bow down before a photograph of Raj Thackeray and apologize to the leader. The traumatized content creator later put out another video breaking down, as he said that his comments were unintentional. He also apologized to Raj Thackeray and MNS workers with folded hands.
8: Kerala ke levarti mitranno khup chuki je video banavle maafi magitli parat ankin chuk zali hanla shubham dadala bollo mi khar sangto mitranno maharashtrat rahun कधी तुम्ही राजसाहेब असू द्या किंवा आपला मनसे पक्ष असू द्या, कधी यांच्याविषयी काय बोलू नका। आणि मित्रांनो, ह्यांनी कुठली मला गुंडगर्दी दादागिरी नाही केली, उलट माझ्यासारख्या वेड्याला माणसानं असं उठायचं काय बी बोलायचं, खरंच चूक झाली मित्रांनो।
9: काल पुण्यात आल्याच्या नंतर आज तो कात्रजमध्ये येणार आहे अशी जवळपास माहिती होती। आज कात्रजच्या उद्यानामध्ये तो जसा आल्याच्या नंतर तातडीने आम्ही सर्व महाराष्ट्र सैनिक एकत्र आलो। एकत्र आल्याच्या नंतर आम्ही त्याला ऑफिसला घेऊन गेलो, आदरणीय राजसाहेब ठाकरे यांच्या फोटो पुढे त्याला आम्ही झोपवलं, त्याला तिथं साहेबांची माफी मागायला सांगितली आणि मनसेच्या स्टाईलने त्याला उत्तर दिलं, त्याला चांगली आम्ही आमच्या भाषेत महाप्रसाद दिला त्याला, त्याचबरोबर त्याला साहेबांची माफी मागायला सांगितली, त्याला काजळाची मिशी काढली, त्याला त्याच्या चप्पल त्याच्या डोक्यावरती ठेवायला सांगितल्या आणि त्याच्या उठाबशा मारायला सांगितल्या।
10: पुणे में एक लड़के का मुंह आप काला करते हैं चप्पल सर पर उठक बैठक, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक रील बनाया। क्या ये है एमएनएस की स्टाइल, तालिबानी स्टाइल? जो आप महाराष्ट्र का नेता बनना चाहते हैं तो ये गुंडागर्दी करना बंद कीजिए। जो आपकी आलोचना करते हैं आप उनके प्रति ऐसे प्रस्तुत आते हैं कि गुंडागर्दी ही चलेगा। पुणे पुलिस को FIR दर्ज करना ही चाहिए भारतीय न्याय संहिता के निमित्त, और जो व्यक्ति गुनेगार है उनको पकड़ना हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि हुलिगनिज्म हैज नो प्लेस इन पब्लिक सर्विस।
3: All right, a quick break at this moment, ladies and gentlemen. On the other side, news and updates will continue with my colleague Rahesh Sehgal.
11: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
12: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
13: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.
14: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
15: वाओ मामा क्या स्वाद है।
14: अरे मेरे राजा
16: सबका राजा प्योर मसाला।
17: A generation with questions.
18: The starry and the whole glamorous side of it.
19: As I said, like I can't empathize with it.
17: Unconventional.
20: I feel blessed. As long as the work is going on, I'm happy.
17: Unapologetic. Unafraid of change. Ready to challenge.
21: Aspirational.
17: The ideas. The issues.
22: You really are.
17: The young view.
22: Public perception.
17: NDTV Yuva. 28 September 2026. Only on the NDTV network.
23: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
24: The 20th Asian Games are officially underway in Aichi, Nagoya in Japan. For the next 16 days, this is where India's sporting dreams will play out.
25: We are in the happy hunting ground with the athlete I am sitting with right now, PV Sindhu.
26: 32 years and no medal. Can India's weightlifting contingent give us that elusive medal?
27: Gold rush on the field.
25: Go for glory, only on NDTV.
28: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज
29: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100.
30: दिस isn't just about cars and bikes. दिस इज अबाउट हाउ यू मूव. दिस कार मेक्स नो सेंस येट इट मेक्स एवरी सेंस. व्हाट वी आर सिटिंग इनसाइड इज अ जोबी पावर्ड एयर टैक्सी. Your friend said, ye le le. We said, maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
31: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddharamaya.
32: NDTV stands completely engaged with Karnataka.
33: High rate, check the audio, high rate, check the audio.
32: Let's do it, let's start.
34: Breaking story, we're jumping straight into it.
32: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
35: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
36: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
37: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
38: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
39: The line of control, Shiv Arun, NDTV.
40: By noon, the world has changed. The headlines tell you what happened. Breaking Ground tells you why. We break down the story. We demand answers.
41: There is a deathly silence around this makeshift mass burial ground here in Bharatpur district in Nepal.
42: I want you to reach out to the Maharashtra Chief Minister today through our channel and tell them what you've been through as a father.
43: Marne ke bada kya hoga?
42: As a journalist, I can say you're not

0: Which has come to the surface from Bihar's Jamui, where a girl was molested and harassed by other boys while she was traveling on the road. We'll be tracking the story very closely, but for now shifting our focus from Bihar to Mumbai, where a controversy over the IIT Bombay suicide case is intensifying, with fresh action by the institute, mounting student protests and an ongoing crime branch investigation. And all this into the death of 20-year-old student Sahil Vakore. Professor Surya Narayan Dola of IIT Bombay has now been suspended from deanship, and this is amid growing student anger and protests following Sahil's death. The suspension comes as students step up their demand for accountability, a transparent investigation and action against anyone found responsible. Students are now demanding justice for Sahil, and they've now called for a fair and transparent probe into the circumstances surrounding the death of this second-year-old IIT Bombay student. Amid mounting pressure and intense protests on campus, IIT Bombay Director Professor Shirish Kedare has also now offered to resign. The director accepted 8 student demands, which includes 1, an apology for Sahil; 2, record disclosure; disciplinary review; family support; equal representation; and no action against the demonstrators.
1: कि विंगमेट थे आप लोग, दूसरे को जानते थे, एग्जाम में कॉपी किया गया, इसको लेकर आपको उसने क्या बताया?
2: उसने किसी से भी कुछ बात नहीं की, यही बात है, सब स्पेक्युलेशन है। कॉपी करने के बाद जब उसको बाहर लेके गए, उसके बाद उसने किसी से बात नहीं की, तो किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है। आई डोंट थिंक, जितना मैंने फर्स्ट ईयर में उसे देखा, कि हमने से किसी में या उसके दोस्तों में से किसी ने उसके कास्ट पर कभी भी रिमार्क किया हो। IIT बॉम्बे में ऐसा कल्चर है ही नहीं कि कोई किसी के कास्ट पर रिमार्क करता है, क्योंकि हम सारे JEE देव स्टूडेंट, हमें आइडिया है कि ये सब नहीं करना होता है, इतने एजुकेटेड हैं। एंड मुझे नहीं पता ये एंगल कहाँ से आया। डीन ने कि ये सस्पेंशन था हमारा फर्स्ट पॉइंट, उसका भी रेजिग्नेशन नहीं था, क्योंकि जब तक वो गिल्टी प्रूफ नहीं हो जाते हम उनका रेजिग्नेशन नहीं मांग रहे।
3: Accountability does not necessarily mean an online apology, first of all, because everybody apologizes nowadays. It's a very, you know, trendy thing, right? We need resignations. That's what we need. We need resignation of all the people involved, because, like I said, this is not one isolated event. There have been 4 suicides in the past 1 year. This is the second suicide in the past 2 months. जिसमें से 4 suicides में से 3 suicides जो थे वो दलित background के बच्चों के थे. So, like I said, this is not an isolated event, right? So we need immediate resignation, क्योंकि accountability हमें वैसे ही मिलेगी. We need resignation, we need a student, independent student body यहाँ पर जो student के behalf पर बोले, you know, to give students some power as well. We need mental health conferences and all of that. We also need compensation for the family, जो उनको भी काफ़ी पुलिस ने परेशान कर रखा है जब से वो यहाँ पर आए हैं. उनका एक अकेला बेटा था, वन ओनली चाइल्ड, राइट? तो वी नीड कॉम्पेंसेशन फॉर द फैमिली.
0: एंड जॉइनिंग मी लाइव नाउ इज श्यामलता ताड़े, शी इज साहिल्स ग्रैंडमदर. मैम, हमें ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद, एंड हम माफ़ी चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा हुआ. अभी आप सब कैसे हैं? आप ऑफकोर्स डिमांड रख रहे हैं, आपने कहा है कि आपके पोते के साथ, साहिल के साथ कास्टिज्म, रेसिज्म हुआ है, तभी उसने अपनी जान ली.
4: सर, मैडम, साहिल बहुत ही होशियार स्टूडेंट था. वो बचपन से ही सभी क्लास में फर्स्ट आता था. आज कॉलेज में 2रा साल था. पहले साल में भी बहुत ही अच्छा पढ़ाई करके वो पढ़ाई की. ये साल भी बहुत ही अच्छा चल रहा था. मालूम नहीं वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं. हमारे बच्चे पर बहुत ही वो कॉलेज वाले ने अन्याय किया है. हमारा बच्चा सुसाइड नहीं कर सकता. हमारा बच्चा कोई भी कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि वो IIT में जाने के लिए बहुत मेहनत किया हुआ लड़का है, और उनका आदर्श सभी बच्चे देखकर पढ़ाई कर रहे थे. हमारी एक हमारी मांगनी है कि वो कॉलेज के जो गुरुजन वर्ग है उनको कड़ी से कड़ी सजा हो जाए, उस और चौकशी सीबीआई

0: वाह
1: मामा क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा, सबका राजा आर्यन
2: मसाला। A generation with questions.
3: The starring and the whole glamorous side of it.
4: As I said, like I can't empathize with it.
2: Unconventional.
5: I feel blessed. As long as the work is going on, I'm happy.
2: Unapologetic. Unafraid of change. Ready to challenge.
6: Aspirational.
2: The ideas. The issues.
7: You really are.
2: The young view.
8: Public perception.
2: NDTV Yuva. 28 September 2026. Only on the NDTV network.
9: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
10: The 20th Asian Games are officially underway in Aichi, Nagoya in Japan. For the next 16 days, this is where India's sporting dreams will play out.
11: We are in the happy hunting ground with the athlete I am sitting with right now, PV Sindhu.
12: 32 years and no medal. Can India's weightlifting contingent give us that elusive medal?
13: Gold rush on the field.
14: Go for glory, only on NDTV.
15: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
2: न्यू रूल्स ऑफ एंगेजमेंट एम्बिशंस क्रॉसिंग बॉर्डर्स वॉइसेस रिफ्यूजिंग टू वेट देयर टर्न इंडिया इज चेजिंग गियर्स फास्टर बोल्डर More restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV. When it really matters.
16: Across the country.
2: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering in
10: All right, welcome back. You're watching NDTV with me, Raisha Sehgal, shifting our focus to battleground Punjab. Punjab's drug crisis has once again triggered a political storm. A young man identified as Jagga Singh has now consumed poison during an anti-drug protest in Punjab. He claims that he was threatened after posting a video highlighting the drug problem in the state. Now, Aam Aadmi Party has blamed that man. On your screens right now is that man, Jagga Singh, and claimed that he was a drug addict and multiple cases are filed against him. Congress leader Sachin Pilot has questioned the safety of those raising their voice against drugs in Punjab. Meanwhile, BJP and Akali Dal have also slammed Aam Aadmi Party government. BJP alleged that AAP government is in league with drug peddlers. And this is the second such incident in Punjab's Sangrur. Earlier, an old man named Gulzar Singh had also died by suicide of a drug menace. And he held Punjab Minister Cheema responsible for his death.
17: ਮਨਬਰੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ
18: ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ
17: ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾ
18: ਮੋਹਾਲੀ
17: ਬਈ ਅਸਲ ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ ਕੀ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆ
18: ਐਕਸ਼ਨ ਜਿੱਟੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਨੈਟ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਦ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾ ਦੀ ਆ
17: ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਬਈ
18: ਸੁੱਕੀ ਬੂਣੀ ਆਈ
17: ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੰਗ ਕਰਿਆ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
18: ਮੋਹਾਲੀ ਆ ਜਾਂ ਅਸਲਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਿਆ ਤੇ ਗੋਲੀ
17: ਫਿਰ ਇਹ ਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਆ
18: ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਬਣਦੇ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਜੀ
17: ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ
18: ਕਰੀ ਆ ਜੀ
17: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ
18: ਨਹੀਂ ਜੀ ਡੀਬੀਆਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲੀ ਆ ਡੀਬੀਆਰ
17: ਪਰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਆ ਭਾਜੀ
18: ਉਹ ਸਰ ਕਰੀਏ ਕੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਰਨ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ
19: ਕਿ ਉਹ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਰੱਗ ਅਡਿਕਟ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਔਰ ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ 8 FIR ਦਰਜ ਹੈ उसको किसने उकसाया इसकी जांच पुलिस कर रही है।
6: पंजाब में सरकार की धक्केशाही, बुरछागर्दी, दबाव रुकने का नाम नहीं ले रहा। पंजाब में नशे नहीं रुक रहे, पंजाब में कत्लोगारत नहीं रुक रही, पंजाब में पॉलिटिकल और पुलिस प्रेशर रुक नहीं रहा। एक नौजवान ने डीसी ऑफिस के आगे आकर जग्गा सिंह के नाम से उसने जहर खा लिया है, इसलिए कि आम आदमी पार्टी के लीडर उसको घर जाकर धमका रहे थे। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या इसलिए पंजाब आपको संभाला गया था? क्या ये क्रांतिकारी हैं? क्या ये इनकलाबी रवैया है आपका?
7: भगवंत मान के इशारे पर ये देखिए तस्वीर है हमारे भाई जग्गा सिंह की। एक पंजाबी को अपमानित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, किस तरह से पीटा जाता है। कार्रवाई ड्रग डीलर्स पे नहीं, ड्रग माफिया पे नहीं, कार्रवाई हो रही है हमारे भाई बहनों पर जो शिकायत कर रहे हैं कि भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की वीर भूमि को आज उड़ता पंजाब, ड्रग्स वाला पंजाब बना दिया है।

0: तरह की पंजाब दे अंदर इसलिए गुरु दोखी भगवंत मान का नादर शाही राज चल रहा है। गली गली बाजार बाजार महला महला पिंड पिंड चिट्टा विक रहा है, टोफिया वांग चिट्टा विक रहा। अगर कोई बोलता है तो उन्हें टॉर्चर किया जाता, मारिया जाता, कुटिया जाता, प्रताड़ित किया जाता, मजबूर किया जाता कि वह आत्महत्या करे। और यह जड़िया सारिया घटनावां ने यह दसदियां कि अज विसल बलोअर जिन्होंने जड़े खड़े होके ये दस रहे ने सरकार नूं कि इत्थे चिट्टा विकदा, ओह ही इसलिए सब नूं ज्यादा टारगेट ते ने।
1: What has happened with that Jogga Singh had to take this extreme step. Situation is alarming. Punjab is a border state. National security is always under threat. And all this is playing out in front of the entire media and the entire nation that we have an incompetent chief minister. A chief minister who's intoxicated, who himself is fighting an alcohol abuse issue. He has been admitted in hospital not once, a number of occasions. This entire incident, why I say this about the chief minister, and I'm sorry that I have to bring this up, but the fact of the matter is when the chief minister himself is not in the right frame of mind, can he deliver law and order in a border state? Answer is no. You have an incompetent Aam Aadmi Party government being remote controlled by a fugitive, an accused of Mr. Arvind Kejriwal or his cronies Satinder Jain and Manish Sisodia. You have a drunk chief minister. Why should the people of Punjab pay a price for their incompetence?
2: In other news, former Vice President Ahmed Ansari's remarks have now triggered a political storm, with BJP, Congress and Muslim clerics offering sharply different response. Ansari was speaking at the A.G. Noorani Memorial Lecture, where he also referred to what he described as emerging trends around cultural nationalism. Uttar Pradesh Chief Minister has now hit back strongly, questioning the remarks and stressing the responsibility attached to a constitutional office. RLD has rejected Ansari's assessment, saying that the political context today is different from the period referenced. Meanwhile, Congress says Ansari was not making the assertion independently, but citing a historical observation attributed to Nehru. Imam Ilyasi has also criticized the remarks, arguing that such statements could further heighten tensions and disturb the social atmosphere.
3: जब पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब ने एक किताब को कोट किया है जो 2019 में लिखी गई है, और बकौल उनके नेहरू जी ये कह रहे हैं कि उनके लिए कम्युनिज्म उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना हिंदू राष्ट्रवाद. ही हैज थॉरली एक्सपोज दैट कांग्रेस हैज बिकम कंप्लीटली मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस. कोट किया कि बकौल नेहरू जी कम्युनिज्म से बड़ा खतरा, यानी कम्युनिज्म को वो एक खतरा मानते थे. आप ही बोलते थे ना नेहरू का संदर्भ क्यों लाते हैं, नेहरू का संदर्भ कौन लाया है? हम नहीं लाए हैं, आपके समर्थक लाए.
4: देखिए, हामिद अंसारी को देश ने बहुत कुछ दिया है. फॉरेन सर्विस में रहे, राजदूत रहे, दो दो बार उपराष्ट्रपति हो गए, फिर भी उनको देश से शिकायत है. वो अभी भी ऐसी बातें कोट कर रहे हैं जो आजादी के वक्त कही गई थी. आज भारत के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पे देश आगे चल रहा है. एक दो नेता कुछ बयान दे देते होंगे वो अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सूत्र दिया है उससे कोई डिग नहीं सकता. वो सबका साथ, सबका विकास, सबका

0: In other news, Pakistan has detained Alima Khan, the sister of jailed former Prime Minister Imran Khan, just days before his Pakistan Tehreek-e-Insaf party's planned September 27th protest, further demanding his release. That's what the PTI wants. Well, Imran Khan's sister Alima has now been campaigning for her brother's release, and her detention comes amid heightened tensions between the government and PTI. Here's more.
1: A fresh flashpoint in Pakistan's political crisis. Authorities in Lahore have detained Alima Khan, sister of jailed former Prime Minister Imran Khan. She was later shifted to Kot Lakhpat Jail. The detention order is for 30 days and was issued under the Pakistan-Punjab Maintenance of Public Order Law. The move comes just a week before Khan's PTI September 27th protest plan, demanding the leader of their supremo release. Imran Khan's family has been raising concerns over his prison treatment. Previously, in an exclusive conversation with NDTV, Noreen Niazi claims Khan is facing mental and physical torture for the last 10 months. She alleges that he has been kept in a small cell and denied basic facilities expected for a former prime minister. She also claims the government used the hospital transfer as an excuse. The clamor for Imran Khan's release is also getting international backing. Just days ago, former British Prime Minister Boris Johnson called for his immediate release. Johnson described Khan's 3-year imprisonment as a growing global scandal. Imran Khan has been in jail since 2023. He was removed from power in April 2022 after losing a no-confidence vote. Since then, he has faced multiple legal cases and remained behind bars, while his Tehreek-e-Insaf party has continued to demand his release. Bureau report, NDTV World.
0: Slipping into a very short, quick break. I'm right back. Lots more lined up for you here on NDTV.
2: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
3: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
4: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा,
7: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
8: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100.
9: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
10: This car makes no sense, yet it makes every sense.
11: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
12: Your friend said, yeah, Lily. We said, maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
13: The 20th Asian Games are officially underway in Aichi, Nagoya in Japan. For the next 16 days, this is where India's sporting dreams will play out.
14: We are in the happy hunting ground with the athlete I am sitting with right now, PV Sindhu.
15: 32 years and no medal. Can India's weightlifting contingent give us that elusive medal?
16: Gold rush on the field.
17: Go for glory, only on NDTV.
18: A generation with questions.
19: The starring and the whole glamorous side of it.
20: As I said, like, I can't empathize with it.
18: Unconventional.
21: I feel blessed. As long as the work is going on, I'm happy.
18: Unapologetic. unafraid of change, ready to challenge the ideas, the issues, the young view. NDTV Yuva, 28 September 2026, only on the NDTV network. New rules of engagement. Ambitions crossing borders. Voices refusing to wait their turn. India is chasing years. Faster. Bolder. More restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV. When it really matters.
1: By noon, the world has changed. The headlines tell you what happened. Breaking Ground tells you why. We break down the story. We demand answers.
21: There is a deathly silence around this makeshift mass burial ground here in Bharatpur district in Nepal.
22: I want you to reach out to the Maharashtra Chief Minister today through our channel and tell them what you've been through as a father.
23: Marne se bada kya hoga?
22: As a journalist, I can say you're not alone.
21: So you can focus on what really matters. Watch Breaking Ground with me, Vedika Sood.
24: Hello and welcome. Thanks very much for joining us here on NDTV. I'm Padmaja Joshi. 25 years of the Prime Minister in public life and in People's Sansad, we do what we always do. We put the issues of the people, for the people, in the People's Sansad. And joining us today is Union Minister for Parliamentary Affairs and Minority Affairs, Shri Kiran Rijiju, here with us in People's Sansad, in front of a young bunch of fine young minds. Huge round of applause. So thank you so much. Pehle sir, ye bataiye, Sansad se People's Sansad ka safar. Ab logo ke beech mein. Aur yahan par main speaker hoon.
25: Waise to संसद जो पार्लियामेंट है वहाँ से ज़्यादा अच्छा युवाओं का संसद है. यहाँ एनर्जी मिलता है, वहाँ थोड़ा टेंशन पैदा होता है. यहाँ टेंशन फ्री है बच्चों के साथ, युवाओं के साथ.
24: ऐसा क्यों है? क्यों वहाँ पर आपको संसद के अंदर नाराज फूफा मिलते हैं?
25: ऐसा है, अब जब बार बार आप फेल हो जाते हैं तो आप थोड़ा सा नाराज हो ही जाते हैं. तो ये विपक्ष का गलती नहीं है, माहौल ऐसा है, इसलिए मैं यहाँ नकारात्मक मतलब नेगेटिव कोई बात नहीं करना चाहता हूँ. जिंदगी में हारो जीतो खुश रहना चाहिए, नाराज फूफा बन के रहने से कुछ नहीं मिलेगा.
24: क्योंकि आज हम पीपल संसद में है, देयर इज अ क्रिटिसिज्म, यू नो, बिकॉज़ Earlier, in fact, you defined what a dimagi naksal is. अब लोग कहते हैं कि जब भी सवाल पूछे जाने लगते हैं ना, जब भी कोई युवा खड़ा होता है, जब भी विपक्ष खड़ा होता है, कभी आप कह देते हैं दिमागी नक्सल, फिर आप कह देते हैं नाराज फूफा, क्यों?
25: देखिए, इसमें तो पॉलिटिक्स है, लोग अपना नैरेटिव सेट करते हैं, हम उसमें कुछ किसी को सलाह नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप अपना बात हम कह सकते हैं. अब किसी को नक्सल क्यों बोलते हैं? नक्सल का जो फाउंडेशन है, उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, वो भारत का संविधान का खिलाफ अलग से व्यवस्था खड़ा करने का नक्सल मूवमेंट हुआ. उनका अपना कोर्ट होते हैं, आप देखे हैं गांव वालों को, पुलिस आर्मी वालों को पकड़ के ले के जाके वहाँ अपना कोर्ट में हियरिंग करके वही गोली मारते हैं. वो भारत का संविधान को मानते नहीं हैं. तो वो जो नक्सल या जो माओवाद जो विचारधारा रखने वाला, भारत का संविधान को नहीं मानते हैं. दूसरा, उससे विकृत होकर के आगे निकल करके जम्मू कश्मीर को अलग करना है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को अलग करना है, उसमें आज़ादी का नाम से, आज़ादी का स्लोगन लगाते हैं और कहते हैं कि सबको अपने अपने तरीके से भारत से अलग रहने का आज़ादी होना चाहिए. तो ये जो है सेपरेटिज्म का माइंडसेट है, ये दूसरे नंबर मैंने बताया. तीसरा है, जो भारत का ग्रोथ स्टोरी, भारत जब तेज़ी से आगे बढ़ता है तो उसको रोकने के लिए तरह तरह का हथकंडे अपनाते हैं. कोई हमारा इंडस्ट्रियल यूनिट है तो उसको बंद कराने के लिए एक इन्वायरमेंट के नाम में कहीं एजिटेशन चलवाना, और जो अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है, हाईवे बन रहा है, उसको रोकने के लिए। तो इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है उसको रोकने के लिए वो ऑब्स्टेकल पैदा करते हैं। तो इसलिए जो इंडिया का सपना का जो तोड़ने के लिए काम करता है तो उसको तो हम नक्सल माइंडसेट ही बताएंगे, तो दिमागी नक्सल है। तो इसलिए हमने क्लियरली बताया, हमने ओपोजिशन को दिमागी नक्सल कभी नहीं कहा। लेकिन अगर आप ओपोजिशन का एमपी है और आप ये जो कैटेगरी मैंने बताया उसमें आते हैं तो हम क्या कर सकते हैं?
24: पर फिर आप डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन नाराज फूफा है और कौन दिमागी नक्सल?
25: नाराज फूफा तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, उसमें आप समझना होगा, मैं बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा। क्या है कि 2014 के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम से लोगों का समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। पीपल आर हैविंग फुल कॉन्फिडेंस इन द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो जो बार बार मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी एनडीए को बनाते हैं, तो वो दूसरे पार्टी हार रहे हैं, तो उनका हारना हम कैसे जिम्मेदार हैं? वो तो वोट नहीं दिया लोग, तो वो इलेक्शन हार रहे हैं। तो इलेक्शन हार रहा है तो हमेशा नाराज हो करके गाली करना, पार्लियामेंट में हंगामा पैदा करना, फिर देश का खिलाफ बात करना, तो ये नाराज जो होके बैठा हुआ है तो उसको एक डिस्क्रिप्शन दिया है। भारतीय परंपरा में नाराज फूफा कौन होता है वो तो आप भी अच्छा तरह से जानती है।
24: ये बताइए, नाराज तो कुछ लोग बड़े थे आपके स्विमिंग से भी, दे वर चैलेंजिंग योर स्विमिंग टेक्निक। फर्स्ट लेट्स सी व्हाट इट इज दैट यू नो रियली सेट द कैट अमंग द पिजन्स व्हेन यू पुट अ पिक्चर ऑफ योरसेल्फ स्विमिंग, अ वीडियो ऑफ योरसेल्फ स्विमिंग। पहले आप ये बताइए, हैव वी सेटल्ड दिस डिबेट, हु इज अ बेटर स्विमर, इज इट यू और इज दिस मिस्टर राहुल गांधी हु इज अ बेटर स्विमर? हैज दिस क्वेश्चन बीन सेटल्ड?
25: ये बहुत खतरनाक नदी में मैंने स्विम किया है, यहाँ समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी मॉनसून का समय का इफेक्ट है। अभी भी पानी देखिए आप, ब्लू कलर नहीं है, थोड़ा गंदा पानी, मतलब फ्लडेड है, पानी काफ़ी बड़ा है और कम से कम 25 फीट डेप्थ है, तो यहाँ स्विमिंग करना कोई आसानी नहीं है। मैं तो गांव में था, सोशल मीडिया में तो डलवा दिया, दो दिन बाद मैं जब दिल्ली पहुंचा तो पता चला ये वीडियो तो वायरल हो चुके हैं, मुझे तो मालूम नहीं, बड़ा पॉलिटिक्स हो गया। लेकिन क्या है, हम जब यहाँ स्विमिंग करने गए, स्विमिंग मतलब मैं वहाँ काम के लिए गए थे, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा एक घंटे के लिए हम स्विमिंग करते हैं, बचपन में हम यही स्विम करते थे। तो एक दिन पहले किसी का मौत हो गई, पानी में डूब के मर गए, तो मैंने स्विमिंग करते समय एक कैप्शन लगाया वार्निंग कि अगर आपको स्विमिंग नहीं आता है तो कृपया आप इस तरह के नदी में स्विम ना करें, ये मैंने लिख करके वीडियो डाला, नहीं तो मैं कूद गया बाकी भी सब कूद जाएंगे, तो इससे गलत हो सकता है। तो मैंने वार्निंग दे करके कूदा नदी में, तो मैं जो डाल दिया वो तो वार्निंग, मैं तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए डाला है। कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लग गया, वो कह रहे कि किरण रिजिजू जो स्विमिंग कर रहे हैं वो तो राहुल गांधी का नकल कर रहे हैं, बोलते हैं। अरे राहुल गांधी जी जब नदी देखा नहीं है, मैं तब खिलाड़ी बन चुके थे, मैं ये नदी जो है हमारा गांव के, ये तो बचपन से हम क्लास 5

0: there was harassment, racial profiling. क्या दिल की दूरी कम हुई है? और अगर नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है?
1: दो बातें हैं आपको समझना होगा. I'll have to speak in Hindi or English.
0: Both, whatever you come.
1: So इसमें दो बातें हैं वो आपको समझना होगा. नॉर्थ ईस्ट के लोग थोड़े इमोशनल होते हैं, तो भावक होते हैं, इमोशनल. तो अगर आपको ध्यान नहीं दिया दिल्ली से तो वो मायूस हो जाते हैं. आई वॉज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स फॉर 5 years, फ्रॉम 2014 टू 2019. बिफोर मी द groups of northeastern region who are involved in militancy, how did they go into jungle? मान लो एक छोटा कम्युनिटी है नॉर्थ ईस्ट में, 5,000 भी हो सकता है, 50,000, 1,00,000 हो सकते हैं, वन कम्युनिटी, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट हैज मल्टीपल कम्युनिटीज एंड ट्राइब्स. तो ईच कम्युनिटी हैज इट्स ओन यूनिक प्रॉब्लम्स. सुनने वाला कोई नहीं था दिल्ली में. मान लो 50,000 का कोई कम्युनिटी है, उनके प्रतिनिधि दिल्ली में आए, they are waiting in Delhi for weeks and weeks. Nobody in the Home Ministry or Government of India is giving time. Ek joint secretary bhi sochte hai ki yaar kahan ye chota sa community aaya hai, mera paas samay nahi hai, main to Bharat Sarkar ka secretary hu, joint secretary hu, time nahi dete hai. Wo intezar karke karke mayus hoke ek mahine ke baad Delhi mein koi sunne wala nahi hai, wapas jate hai aur emotionally gun pakad leta hai, bomb fekta hai, sochta hai ki gun se bomb se शायद सुन लेंगे. तो ऐसा करके करके नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंसी इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा मिलिटेंसी आ गए कि नॉर्थ ईस्ट का ग्रोथ पे असर पड़ने लग गया. पीस विल ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी, तो शांति था ही नहीं. तो ऐसा करते करते कुछ सुनने वाला नहीं था, तो हम लोगों ने सुनना शुरू किया. मेरे पास तो एक आदमी भी आएगा तो भी मैं मिलता था. एक मैं आपको रिकॉर्ड के लिए बता दूँ, एक कम्युनिटी के कुछ मिलिटेंट ग्रुप बंदूक लेकर के जंगल में ट्रेनिंग लेकर के चले गए. वो बाद में टॉक चला, हमने सीज फायर किया, मेरे को मिला और वो सरेंडर कर लिया. पिछले 12 साल में लगभग 10,000 से ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट के लोग जो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व थे बंदूक के साथ सरेंडर कर चुके हैं. तो ये मामूली अचीवमेंट नहीं है. मणिपुर में मेते कुकी और नागा कुकी में जो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट एथनिक क्लैश जो हुए हैं उससे थोड़ा सा धक्का लगा है. मुझे तकलीफ भी हो रहे हैं क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होकर के कई कारण है, कारण यहाँ जिक्र करने का अभी समय नहीं है. उसको छोड़ के, मणिपुर को छोड़ के, बाकी पूरा नॉर्थ ईस्ट में अभी मिलिटेंट फ्री हो गया. आप सोच के देखिए, जो कदम कदम हर 10 किलोमीटर में बंद कोल, वहाँ बंदूक गोली का आवाज़ सुनते थे, आज शांति है. तो ये जो इमोशनली जो पीएम ने कनेक्ट किया वो सिर्फ हमने पहले बताया, रोड, बिजली, पानी, एयरपोर्ट, सब रेलवे बनाया, वो है हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. दिल से दिल जोड़ना भी उतना ही जरूरी है. तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा दी अस्थ लक्ष्मी, दी 8 states बींग डिस्क्राइब्ड एज अस्थ लक्ष्मी, वी मस्ट रीच आउट टू देम. वाई शुड दे ओनली कम टू दिल्ली? Every month, 15 ministers, 5 cabinet ministers and 10 ministers of states are bound to go to Northeast. It's a must. Prime Minister ne ye ek tarike se farman jari kiya hai. Sara mantri Northeast jana hai aur jaake aana nahi, sona hai wahan. Dur daraz mein district mein jaake sona hai. To ye jo dil se dil jodne ka kaam kiya hai usse bahut kareeb ho gaya hai. So humne
0: पर जो बच्चे
1: जोड़ा और दिल भी
0: जो
1: जोड़ा.
0: बच्चे वहां से यहाँ दिल्ली में आते हैं, जो यहाँ ऑडियंस में बैठे हुए हैं, उनको आप क्या कहेंगे?
1: इनके लिए मैं वही कहना चाहता हूँ कि जो इतने साल 50 साल तक हम पिछड़ा बहुत बैकवर्ड रहे हैं, पिछले 12 सालों में जो हमने गति पकड़ा है, बी एश्योर्ड, बी कॉन्फिडेंट. आई एम टेलिंग यू एज ए एल्डर एंड एज ए कैबिनेट मिनिस्टर, एज ए सीनियर मिनिस्टर फ्रॉम कमिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, आई मस्ट टेल यू द डेस्टिनी is going to be completely transformed. Our Northeast youth will not require to struggle for basic things. We will ensure that every Northeastern region part, every state is as vibrant as any progressive state in the country.
0: You know, you spoke of ministers going to the Northeast. I want to actually show one video. आपने कहा मैं सबसे बड़ा खिलाड़ी हूँ, लेकिन एक और खिलाड़ी हैं जिन्होंने
1: कौन है दूसरा खिलाड़ी?
0: हाँ, दिखाते हैं आपको उस खिलाड़ी का वीडियो. अब मेरे को लगता नहीं है कि आप उनको उनसे ज़्यादा बड़ा खिलाड़ी अपने क्या लग रहा है आपको? कौन है ज़्यादा बड़ा खिलाड़ी अब?
1: मेरा बॉस है.
0: That's the Prime Minister in Sikkim. और गोल भी मार दिया. बताइए कौन है बड़ा खिलाड़ी?
1: देखिए Prime Minister के बारे में तो लगभग सब जान ही चुके हैं. I have never seen a person so disciplined in life, so focused and fit as Modi ji. When I was Minister for Youth Affairs and Sports, Prime Minister told me, Kiran ji, जो खेलो इंडिया चल रहा है, we started खेलो इंडिया, जो खेलो इंडिया चल रहा है वो खिलाड़ियों के लिए है. अब पूरे इंडियंस को फिट बनाना है. एवरी इंडियन मस्ट बी फिट. इफ यू आर फिट यू कैन मेक योर कंट्री फिट एंड फाइन. तो फिर दैट फिट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड. आई थॉट अबाउट कि प्राइम मिनिस्टर वांट्स द फिटनेस कल्चर टू प्रिवेल ऑल अराउंड. सो द बेस्ट थिंग वुड बी फिट इंडिया मूवमेंट वेयर वी ब्रिंग अलोंग एवरीबॉडी. और आप देखो अभी फिटनेस के लिए जागरूकता आए हैं. एवरीवेयर पीपल आर नाउ फिटनेस फ्रीक. कोई साइकिल से चल रहे हैं, कोई मैराथन कर रहे हैं, कोई क्लाइंबिंग कर रहे हैं, कोई जंप मार रहा है, कोई वॉकिंग कर रहा है. यू कैन डू एनीथिंग. But life has to be active. No matter how brilliant you are mentally, if you are not physically fit, then you will put yourself into trouble.
0: You know, I saw a very nice video of yours. जब I think आप वाजपेयी जी के साथ बैठे हुए थे और उनके साथ जो आपका interaction था, ऐसा ही कोई interaction आपका पहला कोई प्रधानमंत्री के साथ जो आपको याद हो? You know, which you really take away जब आपको कुछ एक बात वहाँ पर when you know so कहते हैं कि एक बात it stayed with you.
1: नहीं, एक तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मैं तो बहुत यंग छोटा था, बहुत मैच्योर भी नहीं था, लेकिन मैंने इलेक्शन लड़ा और हार गए. बीजेपी को नॉर्थ ईस्ट में उस समय कोई जानते भी नहीं थे और कोई वोट देते भी नहीं थे. मैं तो काफ़ी करीबी से बीजेपी को देखा है. नेशनलिस्ट पार्टी है, ये पार्टी सरकार में आएगा तो बॉर्डर एरिया हमारा जो दूर दराज के लोगों को ध्यान रखेगा, इंडिया फर्स्ट, थोड़ा जोश होगा. कांग्रेस से हम कोई उम्मीद नहीं था तो हमने बीजेपी ज्वाइन किया, लेकिन इलेक्शन हार गए. इलेक्शन हारने के बाद हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास गए. मैं बहुत दुखी भी था, अटल जी मैं तो चुनाव हार गया है. तो हमारे साथ में राम नाईक जी बैठे हुए थे, पेट्रोलियम मिनिस्टर थे और बाद में यूपी का गवर्नर बने. तो मैंने जैसे ही कहा अटल जी मैं तो चुनाव हार गए हूँ, क्या करूँ, बीच में तुरंत राम नाईक जी ने बोला, अरे किरण तुम टेंशन मत लो, अटल जी भी पहले चुनाव हारे थे. तो फिर अटल जी ने कहा, अरे राम नाईक जी का चले तो सबको पहले चुनाव हारना चाहिए क्या? तो फिर मुझे कमीशन में लाया, काम करने का मौका दिया. मैं पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी था, लेकिन मैं कमीशन में 5 इयर्स काम किया. लेकिन 2004 में मैं पूरा तैयारी से काम किया. लोगों ने फिर भारी मतदान किया, मुझे वेरी यंग एज में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया. और जिस तरीके से मैंने काम किया, आप शायद उस समय थी, मुझे ख्याल नहीं आ रहा है. 2008 में पूरा मीडिया के एक कॉन्क्लेव हुआ, मीडिया के आपस में एक वोटिंग हुआ, हु इज द बेस्ट यंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. तो मैं खुशी से बताना चाहता हूँ कि मुझे दिया गया है बेस्ट यंग पार्लियामेंट्रियन. आई वॉज वेरी एक्टिव. मैं इसलिए एक्टिव भी था, एक तो जरूरी भी था और मैं इसको एक ड्यूटी के हिसाब से मानता हूँ. हमारा प्रदेश अरुणाचल प्रदेश जो है बहुत बड़ा प्रदेश है, पॉपुलेशन कम है तो 2 MP है. मैं सोचता था उत्तर प्रदेश का 80 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, बिहार का 40 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, महाराष्ट्र का 48 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक साथ आने से तो हिल जाते हैं. हमारे तो दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, मैं नहीं बोलूंगा तो और कौन बोलेंगे. तो मैंने तय किया पहला ही दिन कि मैं भले अकेला हूं लेकिन मैं 20-20 एमपी का बराबर बोलेगा मैं.
0: क्या बात.
1: तो मैंने काफी मेहनत किया.
0: Yes, this young lady here.
2: What legislative or policy reforms do you think necessary to further ease access to to entrepreneurship, justice, or public service opportunities for young citizens?
1: Excellent question. There are three parts in Ministry of Law and Justice. So when I was law minister, I had focus in three sectors. One is the Department of Law, which means all things we do must be legal. Every action of the government must be legally tenable. So I focus on the legality of the entire conduct of the government. Second is the legislative branch, that is called Department of Legislative. And that is where you draft the laws. How you draft the law is very technical. You must be correct in language, framing of the languages, using of the appropriate words, comma, everything. So that is called department in the legislative branch. The third one is the Justice Department, which deals with the court, appointment of the judges, working of the judicial system, the High Court, Supreme Court. So that is dealing with the justice fraternity. When you talk about rule of law, you must ensure that the justice must be delivered at the doorstep of the citizens. My priority as a Minister of Law and Justice that time was to bridge the gap between justice and common man. If a common man struggles to obtain justice, that is most unfortunate. And in India, more than 5 crore cases are pending in different courts. Some of the cases are as old as 20, 30 years waiting for the justice to come. Many people have left this world. Justice never came. So I thought as a Minister of Law and Justice, I must ensure that judiciary must take the lead role. Why judges should only decide on important critical cases? There are so many cases which are not in the glaring media image, but they are extremely important for the person to get the basic justice. So to do that, strengthening of the infrastructure like good courts, mobile justice delivery system, the Lokayuk, the Lok Adalats, all other peripheral things which are required to strengthen the justice delivery system. And then also I had a very close interaction with the judges to ensure that a judge should not struggle in delivering justice. Appointment of the judges, giving them facilities, and for the first time, 7 crore amount was passed by the cabinet to strengthen the infrastructure in the judiciary, from the lower courts right up to Supreme Court. We did so much. So I feel that being a big country, most populous nation in the world, we do have challenges, but our government is doing the best, and the amount of money allocated and the infrastructure built from 1947 to 2014. And since Modi ji became Prime Minister 2014 to now, we have built and allocated more than double of what was done in last 68 years. We have done much more.
0: Because you know, sir, jab hota ye hai ki when the wheels of justice move slowly, people start losing patience. Abhi dekhiye kya hua. Log aisa kehne lage hain ki ab faisla sansad mein nahi sadak pe hoga. Kya kahenge? So log kehte hain bhai ab bahut ho gaya. Ab hum janta faisla karegi. Sadak pe faisla hoga.
1: Anarchist jo hote hain wo ye sab sochte hain ki bhale hum chunav haar jaye lekin main sadak se tay karunga ki kanun kya hona chahiye desh ka. To democracy ka kya matlab hai? Basic tenets of democracy is every citizen rule themselves through elected representatives. The electoral college is defined by the parliament. Everybody votes So in a way, the citizen govern themselves through their elected government and elected representative.
0: But क्या youth भी ये believe करता है? क्योंकि जो youth जंतर मंतर पर उतरता है, वो कहता है आप हमारी बात नहीं सुन रहे हो, हम अपनी बात खुद करें।
1: ऐसा सब youth

0: नहीं है, कुछ मिसगाइडेड यूथ होते हैं तो उसको भी सीधा करना होगा ना, उसको भी समझाना होगा। सीधा मतलब मैं डंडा मार के नहीं बोल रहा हूँ, समझाना है प्यार से। क्या है कि ये अनफॉर्चुनेट भी है, आई एम गिविंग ए वेरी सीरियस नोट, देर आर मेनी सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड, चाइनीज सिविलाइजेशन, जैपनीज, इंडियन सिविलाइजेशंस, यूरोप में भी है। तो कभी चाइना में आप सुना है क्या वो जेनजी या वेस्टर्न कंसेप्ट होते हैं? इंडिया में ही क्यों है? क्योंकि बेसिकली आवर नॉलेज इज इंग्लिश फिट, ब्रिटिश कॉमन लॉ, इंग्लिश कॉमन लॉ, अमेरिकन इन्फ्लुएंस काफ़ी होता है। तो ये जो सोशल मीडिया में जो लोग ज़्यादा रहते हैं तो उनको एक तरीके से ये वेस्टर्न कंसेप्ट है, जेनजी हमारा कंसेप्ट है नहीं, हम तो युवा बोलते हैं, यूथ, एडल्ट एंड सीनियर्स। तो ये जेनजी कहाँ से घुसा दिया बीच में, पूरा डेफिनेशन के साथ, इस साल से इस साल पैदा होने वाला को अल्फा जेनजी। तो ये कंसेप्ट पैदा करके रेस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा आपका राइट को फोकस कर दिया है, जबकि बैलेंस होना चाहिए। जब जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिका में कहा था 1960 का प्रेसिडेंशियल एड्रेस में कि आस्क नॉट व्हाट अमेरिका कैन गिव यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर अमेरिका, तभी तो यू सुपरस्टार बना, सुपर पावर बना है वो देश। हम जितना मांगते हैं कि मेरे लिए क्या कर रहा है सरकार या देश, ये भी तो पूछो कि मैं देश के लिए क्या कर रहा हूं, वो दोनों होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, विच कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज, बट फंडामेंटल ड्यूटी इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट।
1: बट दे आर सेइंग दैट इवन टू आस्क दीस क्वेश्चंस इज आवर ड्यूटी। सरकार हमारी सुन नहीं रही है, हम सुन नहीं रही है, अब हम सड़क पे सुनेंगे,
0: ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो हम बच्चे हैं, समझाएंगे अच्छा से, हम अपने लोग हैं। देखो मिसगाइडेड हो जाते हैं बच्चे जो है आजकल, माँ बाप से ज्यादा सोशल मीडिया से ज्ञान लेता होगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि टीचर और माँ बाप से ज्ञान लेना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग मैं गांव से पैदल जाके डिस्ट्रिक्ट में जा करके दो दिन के बाद एक किताब मिलता था लाइब्रेरी से पढ़ के, फिर तीन दिन के बाद वापस जाके देना, तो एक्वायर नॉलेज वॉज सो डिफिकल्ट। हियर इन द वेरी इंस्टेंट केसेस यू आर एक्वायरिंग नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन विच कैन बी मिस इन्फॉर्मेशन। तो इसलिए यूथ ऑफ इंडिया मस्ट एंश्योर दैट instability create mat karo, rule of law should follow the norms that everybody must be governed by the spirit of the constitution of India. Uska andar kuch bhi bolo, aap kuch bhi bol sakte hain, aapka right hai, bas desh ka khilaf mat bolo, humko jitna gali dena de do magar desh ka khilaf gali mat do, bas
1: the gentleman here.
2: सर हम आपको रेगुलरली वॉच करते हैं संसद टीवी, मेरा क्वेश्चन है सर डीलिमिटेशन जो अभी चल रहा है लोकसभा में, बिल पास नहीं हो पाया था, पर सर जैसे बिहार जैसे स्टेट है जहाँ पे 40 लोकसभा सीट है, और सर सेम अपन कंपेयर करते हैं तमिलनाडु की, वो भी अभी 40 है, पर सर जब डीलिमिटेशन होगा तो आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर तो 850 ऑलमोस्ट सीट होने वाली, तो सर जो बिहार को जो फ़ायदा होगा लोकसभा सीट बढ़ने से, सर सेम फ़ायदा सदर्न स्टेट्स को नहीं होगा? तो नहीं सर उतना नहीं होगा, तो सर गवर्नमेंट ऐसे क्या मेजर्स ले रही है जैसे कि सदर्न स्टेट डिस्प्रोपोर्शनली अफेक्ट ना हो, जिन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल रखे हैं जब से हम आजाद हुए पिछले 70 साल।
1: आप कौन से स्टेट से हो?
2: मध्य प्रदेश।
1: नाइस, देखिए वो ठीक मध्य में बैठे हैं और दोनों का ख्याल है, मध्य प्रदेश
0: बात कर रहे हैं आप।
2: यस सर, तो मेरा सवाल ये है कि मतलब जो भी स्टेप सरकार ले वो सदर्न स्टेट्स को डिस्प्रोपोर्शनल
0: है। आपको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, आपका इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, और अमेठी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला इन्फॉर्मेशन सही रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप आगे देश को भी समझाना है, समाज को भी। डिलिमिटेशन जो हम लोगों ने प्रपोज किया वो वुमेन रिजर्वेशन से लिंक्ड है।
2: यस,
0: हमने ये कहा कि अभी 543 लोकसभा सीट्स है वर्तमान में लोकसभा में, उसको हम 50% बढ़ाएंगे। जब 50% बढ़ाएंगे इसका कैसे आप अर्थ निकल सकता है कि तमिलनाडु को कम होगा बिहार को ज़्यादा होगा? बिहार का 40 सीट से तमिलनाडु का 39 है, 40 नहीं है, तमिलनाडु का 39 है। और जब 50% बढ़ेगा तो 40 वाला 60 होगा, जाहिर सी बात है, सिंपल कैलकुलेशन। यूपी का अभी 80 सीट है तो 120 हो जाएगा, जिसका दो सीट है वो 3 हो जाएगा, इट्स अ सिंपल एरिथमेटिक। पॉलिटिकली इसको डिरेल करने के लिए कुछ लोगों ने गलत तरीके से दुष्ट प्रचार किया है, मगर बाद में क्लियर हो गया। अभी तो लगभग मैक्सिमम जो पार्टी उसमें अगेंस्ट में वोट किए थे सब बोला कि नहीं नहीं उसमें कांग्रेस पार्टी ने बहुत झूठ फैलाया, अब क्लियर हो गया, ज़्यादातर लोग अब समर्थन करेंगे अगले बार बिल लाने से। तो इसलिए किसी भी स्टेट को हम नुकसान नहीं पहुंचाना है और हम नहीं पहुंचाएंगे। फंडामेंटल बात क्या है, द इलेक्ट्रल सिस्टम इज ऑल अबाउट प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, एक आदमी एक वोट, यही है ना फंडा डेमोक्रेसी में, कि आप 10 करोड़ का मालिक है तो आपका 2 वोट तो नहीं हो जाएगा, बिलियनियर भी 1 वोट, आम आदमी भी 1 वोट। तो इसमें आप सोचिए किसी किसी स्टेट में एक MLA कॉन्स्टिट्यूंसी में 400,000 वोटर है, किसी किसी जैसे लक्षद्वीप में एक MP है 53,000 वोट्स है। तो ये ज्योग्राफी के लिए भी फर्क होता है। तीसरा एक पद्मजा मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, इंडिया सबसे चैलेंजिंग MPs के लिए मैं बोल रहा हूँ, ब्रिटेन में 70,000 वोटर में एक MP है और ब्रिटेन का पॉपुलेशन इज 65 मिलियन एंड ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन ब्रिटेन रिप्रेजेंट 70,000 पीपल, इन इंडिया ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंट 2.5 मिलियन पीपल, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंट 12,000 पीपल, 13,000 पीपल, हियर वी रिप्रेजेंट 25 लाख। तो इंडिया में वैसे हम पॉपुलेशन UK से 50 गुना ज्यादा, उनका MPA 620, हमारे MPA 543, फिर भी बोलता हमारे MP कम ज्यादा है, क्यों बढ़ाना है। ये देखिए एक बेसिक, हम ये नहीं कह रहे ना कि MP 543 से हम 10,000 बनाने जा रहे हैं, मुश्किल से 816 या 820 के आसपास जाएंगे, वो तो बनता है, वी आर द मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑन द अर्थ, इतना तो बनता
1: सर
0: है।
1: हाल फिलहाल में होने वाला है ये, क्योंकि बड़ी सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज है कि अभी प्रोरोग नहीं किया गया है तो अभी ले आएंगे, अभी ले आएंगे, पता नहीं कब रिजिजू जी हमें बिना बताए ये बिल चुपके से ले आएंगे।
0: नहीं, वो अभी हम आपको बोलेंगे तो पूरा हंगामा हो जाएगा, आज मैं बोल नहीं सकता हूं, लेकिन
1: संसद में ही तो हंगामा होता है।
0: नहीं, प्रोरोग तो इसलिए नहीं किया कि कभी कभी पहले भी हुए, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। हम जब पार्लियामेंट खत्म करते हैं तो साइनेडाई करते हैं फॉर एडजॉर्नमेंट, अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना, लेकिन अभी हम उसको प्रोरोग नहीं किया, तो ये कोई पहले बार नहीं है, जब चाहे पार्लियामेंट बुला सकते हैं,
1: अभी बुलाएंगे हाल फिलहाल में,
0: वो हम नहीं कहेंगे, लेकिन बुलाने का प्रावधान है।
1: मतलब ऐसा तो नहीं है कि नंबर का वेट हो रहा है?
0: नहीं नहीं, मैं इतना दीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि रूल के बाद है तो बुलाने का प्रावधान है।
1: सर ये बताइए कि यू नो व्हेनेवर वी हैव एनालाइज्ड द नंबर्स एंड नाउ सडनली एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट दिस जेन जी वोट, बट आई रिमेम्बर MY वाज समथिंग दैट वी ट्रैक्ड in elections throughout, and even in the 2014 elections, I remember postponed analysis found that a large number of youth, especially skilled and educated youth, was voting for the BJP. Why is that? What do you think are the factors that work there, and has that changed on the ground now after all these protests and Jantar Mantar uprising?
0: See, the aspiration of the youth has increased tremendously. Social media started trickling down around 2008, 2009, 2010 in Facebook, and slowly then Twitter came, then Instagram and all. When we came to power, when Modi ji became prime minister, the social media started at large scale. So the aspiration of the youth have risen. So the youth of that time, which could not gain enough of opportunity for themselves, they thought we need a new leader. India could not become a developed nation in last 70 years. तो हकीकत है ना, 1947 में हम आज़ादी प्राप्त किए हैं, अमीर तो नहीं हुआ ना, ये तो मेरे कहने से आपको कहने से क्या होगा, इंडिया इज़ नॉट अ रिच कंट्री, इंडिया इज़ नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, ये तो हकीकत है। कौन करेंगे इंडिया को अमीर ताकतवर देश, कौन बनाएंगे? हमारे पास कोई लक्ष्य भी तो नहीं था ना, देयर वॉज नो सेट टारगेट, व्हेन विल इंडिया बिकम रिच एंड पावरफुल एंड डेवलप्ड। तो पीपल स्टार्टेड थिंकिंग, स्पेशली द यूथ, कि भाई आपका जिंदगी तो चले गए हैं पुराने लोग, आप इंडिया तो अमीर राष्ट्र नहीं बन पाया, हमारा जीवन काल में इंडिया मस्ट बी रिच पावरफुल एंड प्रॉस्पेरस, ये तो ठान लिया। तो सबने देखा कि ये मोदी जी के लीडरशिप में ही हो पाएगा।
1: आपको लगता है
0: दैट इज हाउ द यूथ ऑफ इंडिया इन अ मैसिव स्केल वोटेड फॉर मोदी जी एंड ही क्रिएटेड रिकॉर्ड And then after 2014, the target was set, 2047, India will be a developed nation. And then so many steps are taken on the way, one by one, one after another. So that is how I feel the youth are feeling, that if they have to realize their dreams, that they need a visionary statesman, a great leader like Modi ji to continue to lead us. And that is true today. India is the fastest growing economy in the world.
1: Do you think
0: that? Hum to rote the us samay. Are India ka economic growth itna piche? China jaise hum kab grow karenge? Hum bhi kab Indonesia jaise, Singapore jaise hum bhi kab grow karenge? We used to dream, and today is the reality. I think everybody is ye kismat wale hain aap log. Very lucky. In our time, when you are the leading youth of this country, India is the fastest growing economy in the world. It's a kismat ke baare na.
1: Okay, this young man here.
3: Sir, me being a student here at Amity, apart from that, ek main gaurvanvit swayamsevak bhi hoon. Aapke liye ek sawal jo main puchna chahunga, that you being the Minister of Parliamentary Affairs, how difficult do you find it कि सभी पार्टियों के बीच में आप वो समन्वय बना पाएं, क्योंकि संसद के कई सत्रों में हम देख रहे हैं कि संसद कई दिनों तक नहीं चलती. तो जब संसद ही नहीं चलेगी तो फिर फैसले संसद में नहीं तो कैसे सड़क पे तो हो नहीं सकते, जैसा पद्मजा जी ने कहा.
1: सर, मैं इसमें एक सवाल जोड़ना चाहती हूँ, और बहुत इंटरेस्टिंग बात है. हम कल ही एक डिस्कशन कर रहे थे टीवी पे, जहाँ पे एक पत्रकार हैं बहुत वरिष्ठ, उन्होंने कहा कि देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन. सरकार और विपक्ष अब एक दूसरे से बात ही नहीं करते. फनी थिंग इज, हमने पीपल संसद इसलिए शुरू की क्योंकि पिछले पार्लियामेंट सेशन में संसद में डिस्कशन हो ही नहीं पा रहा था. क्यों ये ब्रेकडाउन है?
0: ब्रेकडाउन नहीं बोलेंगे, हमारा बात वो नहीं मानते, उनके बाद हम नहीं मानते, ये हो सकता है. ब्रेकडाउन नहीं है, दिस एग्रीमेंट है. देखिए, नंबर वन मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, पार्लियामेंट नहीं चलता है ऐसा नहीं है. हाँ, डिबेट कम होता है या डिबेट नहीं होता ये बोलिए, क्योंकि सरकार मेजोरिटी है. हम चाहेगा तो बिल हम एनी टाइम पास कराते ही हैं. मान लो हमको बजट पास करना है, बजट पास नहीं करेंगे तो देश का खर्चा कहाँ से आएगा, सैलरी कहाँ से आएगा, आपका यहाँ जो इतना आपको माँ बाप पैसा भेजते हैं वो कहाँ से आएगा. तो बजट तो पास करना ही, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट. तो विपक्ष हंगामा करने से भी हम तो पारित करना ही है, देश को तो चलाना है. तो पार्लियामेंट नहीं चलता ऐसा नहीं, लेकिन जो भी बिल पार्लियामेंट में पास करता है थोरा स्क्रूटनी होना चाहिए. एक्सटेंसिव डिबेट्स एंड डिस्कशन मस्ट बी कैरिड आउट टू एंश्योर दैट द लेजिस्लेटिव प्रोसेस इज प्रॉपरली डन एंड ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन गिव देयर इनपुट्स. तो कभी कभी क्या होता है कि हम बिजनेस एडवाइजरी बैठते हैं, हम कहते हैं कि मान लो ये हम एक बिल को लाने जा रहे हैं, हम मान लो स्पोर्ट्स का बिल लेने जा रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि कितना घंटा चर्चा करना चाहिए. तो अपोजिशन से हम पूछते हैं, मेरा काम है पूछना, तो मैं पूछता हूँ. तो अपोजिशन कांग्रेस वाला कम्युनिस्ट वाला कहेंगे कि इस पर हम 6 घंटा चाहते हैं चर्चा. तो हम कहते हैं कि ठीक है, 6 घंटा ठीक है, तो फाइनल कर लिया. जब चर्चा करने के लिए बिल टेबल करते हैं, वो दूसरा इशू लेकर के हंगामा शुरू कर देते हैं, प्लाकार्ड लेकर के गाला गाली, जिंदाबाद मुर्दाबाद शुरू हो जाते हैं. मैंने कहा कि आप हंगामा कर रहे बाहर कीजिए, या तो पार्लियामेंट में बिल पास होने दीजिए. वो हंगामा करते हैं, तो एक दिन हमने स्थगित कर दिया, अगले दिन फिर हम बिल टेबल करते हैं, फिर स्थगित हो जाता है. तो थर्ड डे में हम थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं, हम कहते हैं कि आप चर्चा के लिए तैयार कीजिए, नहीं तो हम पारित कर देंगे. वो नहीं मानते, फिर हम मजबूरी में पारित करते हैं. तो पार्लियामेंट ठप नहीं होते हैं,
1: पर कभी ऐसा होता है बाद में जाके उनसे पूछते हैं कि भाई तुमने तो मेरे चेंबर में कुछ और बोला था बाहर जाके, ऐसा
0: होता है. मैंने कही कहा कि वो लोग कहा राजनीति है, वो तो मजबूरी से. अब कभी कभी कांग्रेस का नेता कहते हैं कि हम तो चाहते हैं लेकिन मेरा नेता ने मना किया, क्या करूं. तो फिर ऐसे होता है राजनीति में. देखिए, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में अगर पार्लियामेंट में हंगामा होता है तो ये कोई नई बात नहीं है.
1: क्योंकि ना, मैं जब ब्रेकडाउन की बात कर रही हूँ, आई गिव यू वन मोर एग्जांपल. यहाँ पे कितने लोग हैं, हाउ मेनी पीपल आर हियर हु आर कैरिंग कैश ऑन देम, रेज योर हैंड्स. हार्डली एनीवन. इफ यू सी ऑलमोस्ट बेली व्हाट 10-20%, बिकॉज नाउ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग डिजिटल ट्रांजैक्शन, UPI. येट व्हेन यू ब्रिंग इन द MDR एंड द एंटायर डिबेट अराउंड बिकम्स, लोग कहते हैं हमें सरकार पे विश्वास ही नहीं है कि आज आप 4% पे टैक्स लगा रहे हो, कल आप 100% लोगों के डिजिटल ट्रांजैक्शन पे. देयर इज जस्ट अ लैक ऑफ

0: ट्रस्ट. बार बार हम जब पूछते हैं ना विपक्ष से, वो बार बार एक ही चीज बोलते हैं, हम सरकार को ट्रस्ट नहीं कर सकते.
1: लोग उसको ट्रस्ट नहीं करते इसलिए वो अपोजिशन में बैठे हैं. हम ट्रस्ट, हमको ट्रस्ट करते हैं इसलिए हम तो सत्ता में सरकार चला रहे हैं. देखिए, जब हम सर्विस लेते हैं तो सर्विस का चार्ज देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये फ्री फ्री कल्चर जो अरविंद केजरीवाल जो फैलाते हैं बीमारी, ये नहीं करना चाहिए. लोगों को कमजोर बीमारी बना देंगे. हर चीज उस जमाने में गुरुजी का वो ये दक्षिणा भी होता है ना, हर चीज का कीमत होता है. फ्री में कोई चीज नहीं होता है, आराम हराम होता है. आपको अगर सर्विस अच्छा चाहिए तो आपको पे करना होगा, लेकिन इतना पे करना है जितना आप दे सकते हैं. अगर सरकार इतना अनथॉटफुल है और एग्जॉर्बिटेंट रेट और ये सब लगाएंगे तो पब्लिक नाराज हो जाएंगे. लेकिन अपोजिशन का नैरेटिव में नहीं जाना है कि आप कोई कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई बॉडी बनाया तो वो जिंदा रखना चाहिए ना. अगर आप 100 रुपया का ट्रांजेक्शन करता है और आपको 5 रुपया काट लिया, तब तो आप कह सकते हैं अरे बहुत ज्यादा हो गया. बेयर मिनिमम जो सर्विस चार्ज लगता है वो तो हर देश में, हर समाज में लगता है. इसको लेकर के मुझे लगता है कि अपोजिशन का प्रोपोगेंडा में हमको पढ़ना नहीं चाहिए. अगर बहुत चीज़ जो है अनबेरेबल है या बिल्कुल ये जायज़ नहीं है, तो फिर जनता के पास बोलने का अधिकार है. तो सरकार तो जनता का बात सुनता ही है हमेशा.
0: On a final note, I want to ask you, sir, आपने, हमने शुरुआत में, when we began, we said कि आपने एक रिप्लाई किया था अपने ट्रोलर्स को कि मैं यहाँ का खिलाड़ी हूँ. और आपके कई हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखे हैं, यू नो, द एथलीट, द स्विमर, मोटरसाइकिल राइडर, बट देयर इज वन व्हिच वी आर नॉट गोइंग टू लेट यू गो विदाउट, व्हिच इज दैट ऑफ अ वेरी अकम्प्लिश्ड सिंगर. आई वॉज सरप्राइज टू फाइंड आउट. तो आपका एक बहुत हाल फिलहाल का वीडियो वायरल जा रहा था, जब कोई बात बिगड़ जाए जब आप गा रहे थे. अगर आप anything which is to your mind, anything dedicated to the youth, anything that you off the top of your head want to dedicate.
1: You want me to sing?
0: Yes, please.
1: गाना तो अभी mood में नहीं हूँ ना. गाना गाने के लिए mood में होना जरूरी है.
0: Applause.
1: अरे उसके लिए मैं नहीं कह रहा.
0: An artist is only encouraged and put in the mood by his audience.
1: मैं बहुत sporty आदमी हूँ, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन क्या है कभी कभी मैं तो गाना गा देता हूँ, लोग तालियां भी बजाते हैं, बाद में मेरा बीबी मुझे डांटते हैं. कहते कि तुमको गाना गाने के लिए बोला है, तुम एक लाइन नमूना गाना चाहता, तुम पूरा स्टेंजा का गाने का क्या जरूरत है, बोलते हैं. वैसे तो मैं गाना गाता नहीं हूँ, लेकिन जैसे शाम को कभी फेस्टिवल वगैरह में मैं गाता हूँ, लेकिन वो अपने लिए, मस्ती के लिए. मैं एक लाइन गा देता हूँ,
0: प्लीज, एंड आई अश्योर आई विल कॉल अप मैम एंड से इस बार डांटिए मत.
1: मैं आधा से गा देता हूँ, लंबा गाने का इतना पेशेंस बच्चों में नहीं होगा. तू जो

आजा तेरे आंचल में प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं खुशियां जा।

0: बहुत मेहनत से गाया मैंने ये।
1: सर जब आपने कहा था यहाँ का खिलाड़ी मैं हूँ, आई थिंक ऑल ऑफ अस वुड अग्री टू दैट। ह्यूज

0: guy who has covered his face with a gamcha. This man has been identified, and the SIT at this moment is conducting raids to try and arrest this person. What we also know, POKSO case has been now, in fact, the sections have been raised against these accused. The accused faces charges of using force and assaulting women, including criminal force intended to outrage the modesty of a woman. They also face charges of sexual harassment. Since the girl is minor, POKSO sections have also been levied against them. The investigation is now widening beyond those already arrested. The ADG has said that 7 to 8 people, their names have surfaced. Police say anyone found involved will face legal action, while the criminal history of the accused is also being examined. The other big development on this story, the police has also, in fact, is acting against the accounts which are circulating the disturbing video of the minors. So far, takedown action has been initiated against 13 Facebook accounts and 12 Instagram accounts and 7 accounts on X as authorities move to stop the circulation of this video. Bihar police have also issued a clear warning over the viral footage. They have said circulating the video and the identity of the victim will also be constituted as an offense, and action will be taken against the Jew in the POKSO Act. Now, a lot of reactions coming in on this at this moment. Tejaswi Yadav, breaking news coming in. The leader of opposition in Bihar has also reacted to this. He has said Bihar has totally gone under Gunda Raj. Women neither feel safe at home nor outside. Tejaswi Yadav has spoken on the Jamui issue. So this is the government of Bihar, and remember, as I've been saying, the elections, last elections of Bihar, even after 20 years of being in the government, it was the Jungle Raj taunt or the Jungle Raj fear that was invoked by the NDA. They came into power. Now people are asking the question, is this the police Raj? Is this the rule of law that was promised?
1: बहुत ही दुखद घटना है. हम लोग को बहुत ही शर्मिंदा है जिस प्रकार की जो घटना हुई, लेकिन सरकार को कोई शर्म लाज नहीं रही है. आप देखिएगा, यही सम्राट चौधरी कहते थे कि भाई रात में भी लड़कियां जो है अब घूम रही हैं फ्री होकर के, और पहले जो है लड़की लोग घूमती नहीं थी. ये जीता जागता उदाहरण है सम्राट चौधरी के बयान पर एक संदेह पैदा करने वाला घटना है. बहुत ही दुखद घटना है.
0: Right on the top of the bulletin, we broke that story. In fact, the reaction of Minister Shravan Kumar in the government of Bihar. He's joining me at this on the phone line at the moment. Let's very quickly go across to him. Shravan Kumar ji, bahut bahut shukriya humse baat karne ke liye. Aapka sir ek bayan abhi chala. Us bayan mein aap ye kehte dikh rahe hain ki dekhiye kanoon vyavastha bilkul durust hai, inke khilaf karwai ki jayegi. Ye sab chutput ghatnaen hain. कोई बड़ी बात नहीं है सर. ये आपको लगता है ये छुटपुट घटना है, किसी बच्ची के साथ इतनी बड़ी घटना हुई है?
2: मैंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बेहतर है. मैंने ये कहा कि कुछ घटनाएं हो रही है, इससे हम सब लोग दुखी हैं, सब लोग मरमाहत हैं, और इस तरह के घटना करने वाले, कानून को अपने हाथ में लेने वाले, बिहार को शर्मसार करने वाले किसी भी कीमत पर बचेंगे नहीं. हर हालत में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी.
0: ये सवाल इसलिए उठ रहा है सर कि ये एक माइंडसेट की बात है. अगर जो सरकार में लोग बैठे हैं उनको लगता है कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, तो ये ऐसी घटनाएं रुकेंगी कैसे?
2: नहीं, कौन कहता है कि ऐसी घटनाएं होती रहती है?
0: उमेश कुशवाहा जेडीयू के अध्यक्ष हैं बिहार के, वो इसको छुटपुट घटना कहते हैं. आप कहते हैं कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं.
2: सरकार के लिए बड़ी चुनौती है कि जो लोग कानून को हाथ में लेकर बिहार को शर्मसार करने में जो लोग लगे हैं, उनको किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा, कानून के हिसाब से उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
0: आप कह रहे हैं कि ये बिहार की सरकार के सामने चुनौती है, 20 साल से सरकार आपकी, अब तक इस चुनाव में जंगल राज का नाम लेकर आप आए थे, अब ऑपोजिशन कह रही है।

0: घटना हुई है हमारे लिए बहुत बहुत, इस घटना पर हम सब लोग मर्माहत हैं, लेकिन और भी जो काम हम लोगों ने किया है, हम लोग कभी जंगल राज की बात नहीं करते हैं। हम लोग बिहार में जो हम लोगों से चूक हुई है, गड़बड़ी कहीं हुई है, उसको स्वीकारते भी हैं और इस तरह के कृत्य करने वाले को हर हालत में कानून के हवाले होना पड़ेगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
1: सर, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। जमुई में ही 2024 में भी इस तरीके की एक घटना देखने को मिली थी। अब से कुछ दिन पहले नालंदा में भी एक घटना हुई थी मार्च के अंदर, तब भी इस तरह की बातें की गई थी। तो सरकार बार बार इन घटनाओं पर बातें बहुत करती है, लेकिन उसके बाद एक्शन क्या अगर कुछ होता तो ये दोबारा क्यों हो रही है?
0: एक्शन तो आप घटना वाइज आप समीक्षा करिए, सरकार समीक्षा करके बताएगी, आगे अब हमसे इंटरव्यू लीजिएगा तो बताएंगे कि किस घटना में कौन से लोग दोषी थे और उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई किया, पुलिस ने क्या कार्रवाई किया।
1: तो क्यों ऐसा है कि कार्रवाई के बाद भी ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं? कहां विफलता है सरकार की?
0: नहीं, सरकार की विफलता क्या है? सरकार की विफलता नहीं है इसको कहा जा सकता है, लेकिन जो इस तरह के कृत करने वाले लोग हैं,
1: सफलता भी तो नहीं हो सकती ना सरकार की, ये
0: उनको जो है हर हालत में सरकार पनिश करेगी, हर हालत में उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी।
1: मैं आपको क्योंकि ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि बाकी केसेस के अंदर अगर कड़ी कार्रवाई होती तो फिर ये दोबारा घटना क्यों हो रही है?
0: तो आपको मैंने बताया कि इन चीजों के बारे में कहिएगा तो दो चार घटना का हम वहां पर समीक्षा करके आपको बताएंगे कि किस घटना में क्या कार्रवाई हुई है।
1: उमेश कुशवाहा जो जेडीयू के अध्यक्ष हैं बिहार के, वो इसको एक छुटपुट घटना बता रहे हैं। आपको लगता है कि ये छुटपुट घटना है?
0: नहीं, घटनाएं हुई है इसको स्वीकार करते हैं। घटना छिटपुट हो या घटना किसी भी हालत में हो, वो घटना हम लोग के लिए बहुत दुखी करने वाली घटना है, शर्मसार करने वाली घटना।
1: सर, सबके घरों में बच्चियां होती हैं, आपके घर में भी होंगी, अगर कोई भी नेता इसको छुटपुट घटना कहेगा तो आपको लगता नहीं अपराधियों के हौसले और बढ़ेंगे?
0: घटनाएं देखिए, घटनाएं हो रही है तो उसको बोलने में कुछ मान लीजिए इधर उधर का बात हो जाती है, छिटपुट घटना या बहुत दिनों के बाद घटना, ये बात हो जाती है, लेकिन इस तरह के घटना करने वाले को कभी भी कानून के हिसाब से इजाजत नहीं है, और कानून को तोड़ेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई पहले भी हुई है और अब भी होगी इस तरह की घटना।
1: आपको लगता है कुशवाहा जी को माफी मांगनी चाहिए?
0: अब इतनी बात मत पूछिए, एक बात का जवाब दिया, दो बात का जवाब दिया, तीन बात का जवाब दिया, अब लगातार क्वेश्चन पर क्वेश्चन दागे जा रहे हैं।
1: सर, क्वेश्चन जब घटना आपके राज में होगी तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, जनता ने आपको चुन के भेजा है तो आपसे सवाल तो पूछे ही जाएंगे ना, आप उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं?
0: इस तरह की घटना किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और कार्रवाई भी आपको देखने के लिए बहुत जल्द ही कार्रवाई की सूचना आपको भी प्राप्त हो जाएगी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात सरकार की तरफ से रखने के लिए कि इस पर क्या घटना होगी। दैट्स द क्वेश्चन दैट आई आस्क कंटिन्यूसली एंड दैट इज एग्जैक्टली द क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन दैट नीड्स टू बी आस्क। इट कांट बी ट्रिवलाइज्ड। नो लीडर शुड बी कमिंग आउट एंड सेइंग दैट दिस इज समथिंग ट्रिवियल, इट इज छुटपुट, इट इज समथिंग दैट कीप्स हैपनिंग। यू हैव टू मेक एन एग्जाम्पल एट दिस मोमेंट एंड एन एग्जाम्पल बिकॉज this is not the first time it has happened in Jamui as well, and there are very few cases. In this case also, the girl of course would not have the courage to come out and register a complaint. It is only after the video went viral. Imagine how many times would this have happened where the victim could not gather the courage and come out and in fact register this kind of complaint because of the mindset, because of the people, those who are saying this is chutput ghatna. I want to very quickly play out what the police officials had to say about this.
2: तीन नाबालिग बच्चों को निरुद्ध की गई हैं और इसमें दो और की इन्वॉल्वमेंट भी पता चला और दो और हो सकते हैं, तो हम लोग का अभी क्विक एक्शन हुआ था जमुई थाना कांड संख्या 428 भी सेक्शन 74-75 BNSS और 8 और 12 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज हुई है। साथ ही साथ जितना वीडियो वायरल हुआ है हम लोग टेकडाउन नोटिस जारी किया, जिसमें 13 फेसबुक

0: Ladies and gentlemen, a social media reel criticizing MNS chief Raj Thackeray has triggered a shocking act of public humiliation in Pune. This is not something new. MNS has always done this and have gotten away with lakhs. In fact, the government's not doing anything against their thuggish, you know, workers. The MNS workers allegedly grabbed a Marathi content creator, Mahesh Mote, blackened his face and forced him to apologize. Now, this video, take a look at this video. In this video, let's just play this video full frame, ladies and gentlemen, just to give you a sense of what exactly and how do these people behave. In a video of this incident, Mote is seen with slippers placed on his head as he is made to perform sit-ups. He is then forced to bow down before a photograph of Raj Thackeray as if he is God and apologize. Mote later posted a video breaking down and he said that his comments were unintentional. He apologized to Raj Thackeray. And MNS leader, Shubham Jagdale, who he said that was also, he made a video against him as well. While the video could be, crass, could have problems, there is freedom of expression. And if there was something which was illegal, there could have been legal action against the influencer. But this is what MNS calls justice MNS style. Just a short while back, I tried to speak to Shubham Jagdale, the man who claims very proudly that he has given this person the style, the taste of MNS justice. And while he was being questioned, as soon as the heat turned, he decided to switch off and run away. Take a look. A video is going viral, ladies and gentlemen, on social media where an influencer in Maharashtra is being threatened, harassed. He's been made to do sit-ups, put his shoes on his head and lie prostrate in front of a picture of MNS leader Raj Thackeray. He made a reel on Instagram criticizing Raj Thackeray, which the MNS then, the workers of the MNS, went and met it, as they call, justice in their own style. Shubham Jagdale is the MNS leader who is seen in that video. He is joining me at this moment. Shubham, सबसे पहले ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो हमने देखा आप मिस्टर मोटे हैं, जिनको आपने अपने ऑफिस में बुलाकर आपके लोग घेर के खड़े हुए हैं और उसके बाद आप लोग उनसे माफ़ी मंगवा रहे हैं, उठक बैठक लगवा रहे हैं, सर के ऊपर उन्होंने जूते रखे हुए हैं और मुँह भी उनका काला कर दिया है, तो ये वीडियो वायरल हो गया है, इसीलिए आपने किया था वायरल करने के लिए, 5-6 लोग इकट्ठे होके किसी को पकड़ लो और उसके बाद उसको धमका कर ये सब करवा दो?
1: जैसे कि सर आपने बोला कि इनको किसी को धमका के वीडियो बना के वायरल करना हमारा कोई काम नहीं है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी का काम करते हैं और उस वक्त अगर हमारे पॉलिटिकल लीडर पे कोई अगर अपशब्द बोलता है जो सब ऑन कैमरा बोल नहीं सकते, इतना गंदा अगर वर्ड कोई बोलेगा तो मुझे लगता है कि मैं ही नहीं लेकिन मेरे जैसे बहुत, सिर्फ हमारा एक पॉलिटिकल एमएनएस पार्टी नहीं, अगर इसके बावजूद दूसरा भी कोई पार्टी होता तो मुझे लगता है शायद वही किया होता उन्होंने।
0: अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि पॉलिटिकल पार्टी जैसे आपकी है तो पॉलिटिकल पार्टी आपको पता है ना देश के कानून कॉन्स्टिट्यूशन लॉज पे चलती है, मतलब रजिस्ट्री भी आपकी पॉलिटिकल पार्टी की इसलिए हुई है कि आप लोगों ने कुछ कानून देश के हैं उसके हिसाब से आपकी रजिस्ट्री हुई है, तो अगर आपके बारे में, आपके नेता के बारे में, किसी के बारे में कोई अपशब्द बोलता है तो आपको लगता है कि उसका जो, जिस तरह से आपने कहा एमएनएस स्टाइल में उसके साथ हमने जो भी कुछ हुआ उस वीडियो में मैं सुन रहा था, वो पुलिस करेगी, कानून करेगा या आप लोग करेंगे? आप पॉलिटिकल पार्टी हैं या फिर लोग बोलेंगे मिलिशिया हैं, माफिया हैं?
1: सर 26 तारीख को, पिछले महीने में 26 तारीख को हमने सीपी सर को जो है वो निवेदन दिया हुआ था, लेटर दिया हुआ था कि जो ये जो बंदा कर रहा है, ये हरकतें गलत कर रहा है। उन्होंने पहला एक बार वीडियो बनाया था, उसके बाद उन्होंने दूसरा बनाया, दूसरा बनाने के बाद तीसरा बनाया। जब पहला वीडियो उन्होंने बनाया था उसी टाइम हमने सीपी ऑफिस में जो है वो लेटर दिया हुआ था कि इन ऐसे लोगों को आप इनका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो बैन कर दो। इंस्टाग्राम अकाउंट के वजह से जो वो कंटेंट बनाते हैं, वो कंटेंट उनका पूरा, जो अगर कंटेंट देखोगे तो पूरा कंटेंट वो बहुत खराब है, तो हमने डे वन पे बोला था। उसके बाद उन्होंने दूसरा वीडियो हमारे ऊपर बनाया, तीसरा बनाया, मतलब वो क्या कर रहे थे कि सामने से वो हमें ये कर रहा था, भड़काने की काम कर रहा था।
0: आप भड़क गए
1: भी हमने जो
0: मतलब उसने क्योंकि आपका नाम ले लिया तो आपकी ईगो हर्ट हो गई कि शुभम का नाम लेके कैसे वीडियो बना दिया, इसका इलाज करते हैं, 8-10 लोग जाके उसको पकड़ के ले आओ और उसके बाद उसके मुंह पे कालिक पोत दो।
1: उसको लेके नहीं आए, वो खुद चल के आया क्योंकि उसको मालूम था कि उसको पुणे में अगर वो आया है तो उसने बोला था मुझे, मेरे पास मैसेजेस है उसके, उसने मुझे खुद बोला था कि बाबा मैं जब आऊंगा तो मैं आपके ऑफिस पे आके मिलूंगा मैं।
0: तो कालिक किसने पोता
1: वो आने फेस के बाद पे? उसने ये भी बोला कि मेरे से ये सब जो चीज हो गई।
0: कालिक किसने पोता फिर? मुंह के ऊपर कालिक किसने लगाया शुभम
1: जी? मैंने लगाया।
0: आप ही लगाया ना, तो ये जो आपने कमिश्नर साहब को बताया था FIR करा देते, आप कोर्ट चले जाते, रोज जाते हैं ऐसे।
1: सर मैं वही बोल रहा हूँ कि मैं, मेरा जो लेटर है मैं वो लेटर NDTV तक, हमारा जो
0: सर वो तो लेटर आपने एप्लीकेशन दिया, मैं कह रहा हूँ आप FIR कराते ना जाके, आप बोलते हैं कि हम, आप FIR कीजिए, आपको पता है कि कोई इसमें रेलेवेंट सेक्शन नहीं लगेगा, आप IT
1: महीने में कोई 1.5 महीने में कोई उसके ऊपर पुलिस ने कोई कार्रवाई की?
0: तो आप तो पॉलिटिकल पार्टी हो, प्रोटेस्ट करते पुलिस के अगेंस्ट?
1: नहीं किया सर,
0: नहीं करा ना,
1: छब्बीस तारीख
0: बदमाशी की आपने, मतलब आपने गुंडागर्दी करी
1: सर। अभी अगर किसी को लगता है हम गुंडागर्दी करते हैं तो गुंडागर्दी है, लेकिन हमारे
0: लगता क्या है सर आप करते हो? वो तो महाराष्ट्र की पुलिस, वो तो पता नहीं महाराष्ट्र की पुलिस, वरना और कोई पुलिस होगा तो उठा के आपको अंदर कर देगा किसी को इस तरह की हरकतें करने में। शुभम जगदले, ही इज द लीडर ऑफ द MNS पार्टी, आई थिंक वी हैव जस्ट लॉस्ट दैट कनेक्शन विद हिम, आई विल ट्राई एंड गेट हिम बैक ऑन द शो। लेडीज एंड जेंटलमैन, MNS दे टेक प्राइड इन बिहेविंग लाइक दिस, एंड दैट इज वाई द क्वेश्चन फॉर अ पार्टी विच हैज बीन रिड्यूस्ड टू 0 MLAs बिकॉज ऑफ देयर एंटिक्स टू 1.5% वोट्स इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। That party only tries to do, their leaders only try to do this kind of gundagardi. They try and beat up people, intimidate them, and this what they call is MNS style justice, just to stay in news. They have lost absolute, they have lost their relevance, and this is what they think will keep them in the talking, in for people to in fact be intimidated by them. The question is not just about Raj Thackeray, why does he have goons like this? Because if it is a political party, should run like a political party, not like a gang or a group of thugs in fact roaming around intimidating people. But the question, the bigger question is to the Maharashtra government, why aren't these people being booked, an example being made out of them? Because this is not the first time MNS workers have done this. They keep doing this and getting away with this kind of absolute nonsense. All right, quick break. We are coming back. Stay tuned.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: Welcome. Today we get you a brand new show in a brand new avatar. Politics Zindabad. Because every single move, every single statement, every maneuver by a neta has a meaning, has a motive. And we will be right here to help you understand what that is. I'm Padmaja Joshi, and today saying Politics Zindabad along with me are Akhilesh Sharma, Managing Editor, NDTV, Upendra Chaube, Consulting Editor with us, and Senior Journalist Sameer Chaugankar and Vinod Agnihotri also joining us here on the show. First up today though, we start with an incredibly sad story from Mumbai, where a young life was lost to suicide. A professor has been booked for abetment to that suicide, and full-blown politics has started over the SC-ST Act. Now, here is what has happened. Sahil Vakode, a second-year student of the Department of Energy Science and Engineering at IIT Bombay, died by suicide on the 18th of September. In its statement the very next day, IIT Bombay said that Sahil was found using a mobile phone during an exam and he had uploaded the question paper to ChatGPT in order to look for answers. Now, the dean, Professor Surya Narayan Dula, was the exam invigilator who caught Sahil allegedly in the act. Now, here is where things took a turn. Sahil's father subsequently accused the invigilator, Professor Dula, of subjecting his son to casteist slurs, and he said this hasn't just happened on that day, on the day when the exam was taking place, but in fact this has carried on for the preceding 3 months. Based on the complaint of Sahil's father, Professor Dula has now been booked under the SC-ST Act and also abetment to suicide. IIT has removed him from the dean's post, and also the overall probe has been given to the crime branch. Meanwhile, the politics around this suicide and the FIR on Professor Dula has exploded, and how? Protests were held on the campus, students presented a charter of 18 demands and sought the termination of Professor Dula from service. They in fact even said that not just the dean, even those who are running IIT Bombay, they should also step down. Politicians of all hues have also jumped in. The Congress carried out a protest outside IIT Bombay. In fact, the students also protested, but that's not all. The faculty has come to the support of Professor Dula. They have said that whatever he did, it was according to the rules of the institution. It was done according to the law. The lawyer of Sahil's family has listed the demands, including giving compensation to the family.
1: की विक्टिम्सला इन्व्हेस्टिगेशन पूर्ण होण्याच्या आतमध्ये एस सी एस टी ॲट्रॉसिटी ॲक्टच्या अंतर्गत जे कंपन्सेशन दिलं जातं ते कंपन्सेशन ते इमिडिएटली करून देण्याचं काम पोलीस मदत करेल त्यांना, आणि पुढची ही इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये असणाऱ्या सगळी रिपोर्ट्स त्या इमिडिएटली फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये चार्जशीट फाईल करून ह्या अक्युज लोकांच्या विरोधात ट्रायल फास्ट ट्रॅक कोर्टमध्ये चालवलं जाईल.
0: समीक्षा आपसे स्टार्ट करूंगी, हो क्या रहा है मुंबई में?
2: देखिए, महाराष्ट्र वैसे भी अगर आप देखेंगे दलितों को लेकर बहुत सेंसिटिव स्टेट है, और इस तरीके से घटना आईआईटी मुंबई में एक घटना मुझे लगता है कि पॉलिटिकली भी बहुत सेंसिटिव विषय है, और जिस तरीके से पूरा मामला आया है, हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज़ अभी इस पर चुप है, मतलब देवेंद्र फडणवीस का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना एक स्टूडेंट की हुई है जो जिसने सुसाइड किया, लेकिन इसके दूसरे पहलू भी मुझे लगता है कि देखना चाहिए. यह कहा जा रहा है कि उसको एस सी एस टी कारण उसको प्रताड़ित किया गया था, काफ़ी समय से ही हो रहा था, तो क्या सुसाइड उसने किया तो वो कुछ ऐसा लेटर लिख कर गए हैं सुसाइड के समय कि मैं इसे सुसाइड कर रहा हूँ कि मुझे लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा था. उसके फादर ने जो एस सी एस टी कंप्लेंट दर्ज कराई है उन्होंने भी इसके पहले कहा कि लंबे समय से उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, पिछले तीन महीने से प्रताड़ित किया जा रहा था. तो क्या इसके पहले जब उन्हें पता था तो उन्होंने की कंप्लेंट ऑफिशियली दर्ज कराई? क्या फैकल्टी के पास रिटर्न में उन्होंने इस बात को कंप्लेंट दर्ज कराई कि भाई इसको ऐसे ऐसे प्रताड़ित किया जा रहा था पहले से, और मैं कंप्लेंट कर चुका था लेकिन कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है वो इसको देख नहीं रही थी. तो मुझे लग रहा है कि अब जांच की बात होगी इस मामले को लेकर, लेकिन ये पूरी महाराष्ट्र की राजनीति मुझे लगता है कि सवर्ण बनाम दलित के मामले में चली गई है. और महाराष्ट्र में तो वैसे भी अगर आप देखेंगे तो आज 455 सीट्स लोकसभा विधानसभा की रिजर्व सीटें 288 में से, और लोकसभा की अगर आप देखेंगे तो 48 में से 9 सीटें रिजर्व की आती है. और रामदास आठवले का बयान जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर आया उन्होंने, और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में 13% करीब दलित है अगर आप देखेंगे, एक बड़ा कम्युनिटी है वहाँ की और बहुत स्ट्रांग कम्युनिटी है वहाँ पर अगर देखेंगे पॉलिटिकली. तो ये फिलहाल मामला मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, रूलिंग पार्टी के लिए एक बड़ा सेंसिटिव मामला है.
0: एंड दैट व्हाई इट्स वेरी स्ट्रेंज, नाइदर हैज द चीफ मिनिस्टर सेड एनीथिंग राइट नाउ, नॉर हैज द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर. द ओनली पीपल हु हैव स्पोकन अप इज द भीम आर्मी, you've got the Congress protesting, and Ramdas Athawale, who's a union minister with the government, Vinod ji, wo keh rahe hain ki bhai every student deserves to have an atmosphere वेयर दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू कास्ट हैरेसमेंट. क्या ये एक फिर से रोहित वेमुला टाइप सिचुएशन बन रही है बीजेपी सरकार के लिए? क्योंकि लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, द स्टाफ देयर, द फैकल्टी, दे आर सेइंग दिस इज अ मिसयूज ऑफ द SC ST एक्ट. तो अब पूरा फैकल्टी एक तरफ हो गया है और स्टूडेंट्स और कुछ पॉलिटिशियंस एक तरफ हो गए.
3: देखिए, हम लोग लॉजिक पे बात कर रहे हैं, उस हिसाब से तो बिल्कुल सही है कि भाई पिछले 3 महीने का अगर आरोप लग रहा है तो क्या उसने कभी कोई शिकायत की थी? क्या उसने इस तरह का, उस बच्चे ने जो है पहले से कोई कंप्लेंट की थी भाई अगर हैरेसमेंट हो रहा है? ये सब लॉजिक की चीज़ें हैं. पॉलिटिक्स लॉजिक से नहीं चलती, पॉलिटिक्स नैरेटिव से चलती है. और नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि उसके साथ उसका हैरेसमेंट हुआ और एक दलित उत्पीड़न की घटना बनाई जा रही. आप देखिए, लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा नुकसान बीजेपी को कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र और UP, दो राज्यों में जो संविधान वाला नैरेटिव था,
0: संविधान खतरे,
3: क्योंकि महाराष्ट्र अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स का सेंटर रहा है. नागपुर में बाबा साहब ने दीक्षा ली थी और बड़ा इंटरेस्टिंग है महाराष्ट्र के बारे में, वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का भी की भी भूमि है और अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स की भी भूमि है. तो वो महाराष्ट्र का ये टिपिकल करेक्टर है और इसीलिए ये इशू वहाँ पर जब मतलब रामदत्त अठावले एक तरह से उनको मजबूर होकर बोलना पड़ेगा ये, क्योंकि वहाँ प्रकाश अम्बेडकर भी बैठे हुए हैं, वो भी सड़क पर आ जाएंगे और पूरी जो अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स है इसको लेके गोलबंद हो रही है.
0: तो
3: और ये इशू सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं होगा, ये आजकल सोशल मीडिया के जमाने में जैसे रोहित वेमुला का इशू नेशनल इशू बन गया था, बाद में उसमें तमाम तरह की और

0: को स्थगित करने का निर्णय लिया है. सो महापंचायत वाज सपोज्ड टू टेक प्लेस ऑन द 20th. बिफोर दैट मिस्टर नड्डा गोज एंड मीट्स दीस पीपल. व्हाई आर दीस सीक्रेटिव मीटिंग्स बीइंग डन? 2:11 इन द मॉर्निंग मिस्टर नड्डा इज ट्वीटिंग. व्हाट्स हैपनिंग?
1: इट्स नॉट सीक्रेटिव. इफ इट वाज सीक्रेटिव यू वुड नॉट नोन अबाउट इट बिकॉज़ ही हिमसेल्फ हैज ट्वीटेड इट. बट इंटरेस्टिंगली ऑन दैट डे सैटरडे आई इंटरव्यूड हिम. आई वाज देयर एट हिज रेजिडेंस फॉर 3 आवर्स एंड आई गॉट नो इंकलिंग. देयर वाज नो इंडिकेशन दैट सच मीटिंग वाज गोइंग टू टेक प्लेस. But of course, later in the night, as you were mentioning,
0: तो फिर secretive ही हुई ना, फिर आपको पता ही नहीं चला.
1: तो बाद में जब tweet आया तब पता चला कि ऐसी-ऐसी meeting हुई है. तो वो इसलिए रात में करनी होगी क्योंकि next day 20 September को वो महापंचायत करने वाले थे. So before that महापंचायत, this meeting.
0: So government is finding itself on the back foot.
1: And interestingly, the tweet itself says that UGC rollback के ऊपर, on the issue of the UGC rollback, because we know that this UGC it has emanated from Rohit Vemmula's suicide, and after that now this is a recent case, and we have seen that how BJP has faced lot of protest in Uttar Pradesh, in Bihar, in fact Bakipur assembly by election result, it is also attributed to the
0: and many people say even the local body elections in Rajasthan.
1: That's correct, and that's why this was very sensitive issue for the BJP. We know the legal position. BJP, the government says in the Supreme Court, they have told very clearly that they're going to review the entire UC guidelines. We know that Supreme Court itself has stayed imposition of this guidelines. But there was a major decision taken by the Modi government to amend earlier guidelines. Why? Because what is happening today in IIT Bombay, this is the reason. Why? Because they understand that these things are there, maybe they are undercurrent, but these issues need to be addressed.
0: Okay.
1: That's why they decided it.
2: There was an RTI application which was filed last year, which actually raised this question, Padmaja, that in the last decade, how many suicides, how many student suicides have happened at Indian Institutes of Technology campuses across the country. A total of 20 suicides were reported, where IIT Madras, by the way, was topmost on that list. The problem is that you are now looking at a scenario where you've had the UGC fiasco, you've had the NEET fiasco, you've had the Class 12 fiasco. On top of this now comes a scenario wherein country's preeminent educational institution, which is the Indian Institute of Technology, suddenly this caste-based story is now playing itself out. You have a few months to go before UP elections, but both in UP and in Punjab, Dalit population, Dalit vote base, hugely significant. You've spoken about Mayawati. I mean, just imagine the scenario. Suppose Mayawati tomorrow decides that she's now going to go and speak to the parents outside the campus of IIT Bombay. Can you just imagine the level of political temperatures that will rise? That's why the BJP is stuck. But what I'm position to take?
3: But I'm sure Mayawati will not.
2: She has other problems right now in her family, which is different.
4: Maharashtra ko leke mujhe
3: she didn't go to Maharashtra.
4: सबसे बड़ी परेशानी देवेंद्र फडणवीस के लिए. देवेंद्र फडणवीस विदर्भ से आते हैं, नागपुर से आते हैं. नागपुर में संघ मुख्यालय, नागपुर में अंबेडकर साहब ने दीक्षा भूमि ली थी. लोकसभा चुनाव अगर आप देखेंगे 2024 का, तो पूरे विदर्भ में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक सीट मिली थी अकोला की, बाकी सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हार गई थी. और देवेंद्र के बारे में परसेप्शन महाराष्ट्र में बेसिकली है कि देवेंद्र वही फैसला लेते हैं जो RSS कहते हैं, संघ जिनको कहता है. तो देवेंद्र के सामने बड़ी चुनौती है, और संघ कभी नहीं चाहेगा कि महाराष्ट्र के अंदर, खासतौर से विदर्भ में, दलित बनाम सवर्ण इस तरीके से मामला वहाँ पर फिर शुरू हो. तो देवेंद्र को मतलब आप बहुत संभल के. और दूसरा क्या, अभी जो मनोज जरांगी का आरक्षण का जो आंदोलन को लेकर उसने मुंबई कुछ का प्लान किया था, उसने विड्रॉ कर लिया, उसको लेकर भी कि मराठा को कुनबी में आरक्षण देने का सरकार ने फैसला लिया है, उसमें दलितों के एक वर्ग में नाराजगी है. तो वो एक भी नाराजगी बनी हुई है, ऊपर से ही अलग नाराजगी. तो देवेंद्र को देखना है कि कैसा ना हो कि इस मामले में दलित सड़कों पर उतर
0: कर खुद जनरल कास्ट से भी. लेकिन दिस इज द आयरनी दैट ऑन द वन हैंड द बीजेपी गवर्नमेंट हैज गॉन एंड बुक्ड दिस प्रोफेसर अंडर द SC/ST एक्ट, एंड लिसन टू व्हाट दत्त Osable is talking about Hindu society as a whole and the whole issue of caste. Listen.
5: समाज को संगठित होना है तो अपने आपस के भेदभाव को भूलना पड़ेगा. मैं इस जाति का हूँ, पंथ का हूँ, भाषा का हूँ, प्रांत का हूँ, मैं उत्तर भारत का हूँ, मैं दक्षिण भारत का हूँ, इसलिए मैं अलग हूँ. इस भेदभाव से, एक दूसरे के साथ अलगपन से हम अपने संगठन के जो स्वभाव है वो नहीं रखने से ताकत नहीं रहेगी.
0: What's going on? RSS is saying one thing, BJP the other. At least you want to say something.
1: BJP बहुत फाइन बैलेंस करके चलना पड़ रहा है. देखिए उत्तर प्रदेश में जो हुआ, BJP को इस बात का एहसास है कि जो कोर वोट उसका है उसको नाराज नहीं कर सकती है. इसीलिए आपने जो JP नड्डा की मीटिंग का जिक्र किया, ये मीटिंग इसीलिए हुई. ये तीसरी मीटिंग है इस तरह की कि जो आरक्षण के बारे में जो आवाज उठा रहे हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई. इससे पहले
0: बजट तो बैलेंस कैसे कर रहे हैं? SC/ST एक्ट के अंडर बुक करके आप बैलेंस कैसे करेंगे? तो नाराजी होंगे ना जनरल कास्ट.
1: बाद में आया ना, ये तो इशू अभी आया है. मैं उस मीटिंग की बात कर रहा हूँ जो सैटरडे को हुई है, उसमें जो

0: हुआ और जो बात आरएसएस के सर जनरल सेक्रेटरी कर रहे हैं ओसबोले जी, वो यही कह रहे हैं। वो देखिए, आरएसएस तो बहुत लंबे समय से आप जानते हैं कि सामाजिक समरसता की बात करते हैं, जो उनका शताब्दी कार्यक्रम चल रहा है उसमें एक ये विषय है कि एक गांव में एक कुआ एक शमशान होना चाहिए, यानी सोशल जो कास्ट का इस तरह से आप ब्रेकअप करते हो वैसा नहीं होना चाहिए। तो आरएसएस का एक एजेंडा है, तो काम पे उससे लंबे समय से कर रहे हैं। लेकिन जो रियल पॉलिटिक है वो यूपी चुनाव को लेकर के है, वो चैलेंज बीजेपी के लिए है। इसलिए बीजेपी के एक बड़े नेता से मेरी बात हो रही थी अभी 3-4 दिन पहले ही, उन्होंने कहा कि हाँ हम इस चैलेंज को मानते हैं कि हमारे लिए चुनौती है, ये जो परिस्थितियाँ बन गई यूजीसी गाइडलाइंस हों या इस तरह के विषय आते हैं, इसलिए हम इसको एड्रेस करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और आप ये देखेंगे, उन्होंने ये विश्वास व्यक्त किया कि आप ही देखेंगे कि अगले कुछ महीनों में स्थिति बदलेगी।
1: ऑर्गेनाइजेशन इज फाइंडिंग इटसेल्फ इन अ बिट ऑफ अ बाइंड इज क्वाइट अपेरेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट यू जस्ट हर्ड दत्तात्रेय होसाबले सेइंग देयर शुडंट बी डिविजंस ऑफ दिस काइंड एंड द एबीवीपी इन द केस ऑफ आईआईटी बॉम्बे केस हैज एक्सप्रेस सॉलिडैरिटी विद द पेरेंट्स of Sahil Wakode. From one campus to another, the results of the Delhi University students' election has been quoted as a barometer of the mood of India's youth by the BJP. They are saying Gen Z hamare saath hai. And it's understandable given that not only did the RSS's students wing ABVP win on 3 out of 4 seats on the panel, but for the first time in many years, the NSUI drew a blank. The vice president's seat also was won by an NSUI rebel, Dipanshu Shokin, who has now said that accountability should be fixed within the Congress for what he calls dirty internal politics. Interestingly, the CJP, which had been the face of the Gen Z protest just months ago at Jantar Mantar, has dismissed this result as nothing but what comes from money power.
2: जो मैंडेट आया स्टूडेंट्स किन को चाहते थे और क्या वोटिंग परसेंटेज किस तरीके से मैंडेट आया, वो साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं टिकटों में गलती हुई और इनकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी लेनी चाहिए लोगों को कि उनसे गलती हुई है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं 3 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट NSUI से लड़े और उनको ठीक ठाक मैंडेट, मतलब अच्छा मैंडेट हम लोगों को मिला, तो ये साफ दर्शाता है कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी वो बहुत ज्यादा हुई।
3: नहीं, चुनावों में तो पैसा चलता है, चुनावों में पैसा चलता है, चुनावों में और कुछ नहीं चलता है। डीयू में जो कैंपेन होते हैं, रोल्स रॉयल्स की गाड़ियों में आते हैं लोग, रोल्स रॉयल्स वो गाड़ी करोड़ों के नीचे नहीं आती है, ऑडी में आते हैं, BMW में आते हैं, तो चुनावों में बस पैसा चलता है।
1: विनोद जी, क्या ये सच है कि कन्हैया कुमार के ऊपर एक्शन होने वाला है?
4: कन्हैया कुमार लाइन ऑफ फायर में तो है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी कन्हैया कुमार को के ऊपर इसलिए डाली जा रही है कि वो इंचार्ज है NSUI के, और इस बात को लेके पार्टी के अंदर NSUI में बहुत असंतोष है कि भाई आपने ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी दी हुई जिसका NSUI से कभी कोई लेना देना नहीं रहा। जो व्यक्ति जिसकी स्टूडेंट पॉलिटिक्स पूरी NSUI के विरोध पे खड़ी थी, जो लेनिन और माओ को पढ़ करके पॉलिटिक्स करता था, वो गांधी और नेहरू की जो पार्टी है उसको कोई सिस्टम नहीं मालूम, कोई स्ट्रक्चर नहीं मालूम है। और बल्कि कहानी ये है इंटरनल कि वो कैंपस गए भी नहीं कैंपेन करने के लिए,
1: कन्हैया
4: बहुत बहुत लास्ट में शायद गए होंगे, और मीटिंग हुई केसी वेणुगोपाल के यहाँ जिसमें ये सारे नेता, इवन सचिन पायलट, दीपेंद्र हुड्डा, ये सारे मौजूद थे। उनसे जब कहा गया तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं क्यों जाऊँ। तो सचिन ने कहा, दीपेंद्र ने कहा कि भाई हम जाके नारे लगाते हैं अपनी NSUI के लिए, ABVP के BJP के नेता आते हैं तो आपको जाने में क्या दिक्कत है। और इसलिए इस वक्त पूरा जो असंतोष है इस पूरे उसका, क्योंकि पहली बार एक तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कंपोजिशन है इलेक्शंस का, वो लोकल्स वर्सेस आउटसाइडर्स रहता है हमेशा। लोकल्स मतलब जो अपने को नेटिव मानते हैं, यहाँ के जो गांव, जो जाट गुजर और लोकल जो स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली वो डे स्कॉलर्स हैं, उनका डोमिनेंस रहता है। तो हमेशा पैनल्स देखे, चाहे ABVP का हो चाहे NSUI का हो, इन कम्युनिटीज़ को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलता है। इस बार कांग्रेस के जो पैनल हुए NSUI में थे ही नहीं, मीणा, उसके बाद ये चतरथ,
1: और कांग्रेस कह रही है बट हमने एक ट्राइबल लीडर को मौका दिया,
4: ट्राइबल लीडर को मौका दिया, वो अच्छा लड़ा भी, नो डाउट। लेकिन अगर बैलेंस बना के चलते, मान लीजिए शौकीन को, जो शौकीन से कहा गया प्रेसिडेंट लड़िए, उसने कहा मैं प्रेसिडेंट नहीं लड़ूंगा क्योंकि उधर से दबास है, दो जाट लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे, उसका अपना गणित था। तो वो वाइस प्रेसिडेंट लड़ना चाहता था, इन्होंने कहा वाइस प्रेसिडेंट मत लो। ये जो रहा कि आपका अपना आदमी जो रिवेल होकर जीत रहा है, तो इसलिए,
1: और एक ही नहीं दो रेबल थे,
4: दो रेबल, वो यादव, विजय यादव वो भी आपका ही था। अगर आप यादव, जाट, मीणा, इन सबको बैलेंस करते तो शायद नतीजे कुछ आपके फेवर में।
1: और इनफैक्ट विशेष यादव जो कि जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पे लड़े हैं, ही वाज बैक्ड बाय द समाजवादी छात्र सभा,
4: वो तो लास्ट मोमेंट,
1: एंड इवन ही गॉट मोर वोट्स देन द एनएसयू।
5: के जो प्रेसिडेंट है विनोद जाखड़ है अभी, वो राजस्थान से बेसिकली आते हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग रहा कि जब शौकीन को टिकट नहीं मिल रहा था तो उसकी पैरवी दीपेंद्र हुड्डा ने की, और दीपेंद्र हुड्डा ने सचिन पायलट को फ़ोन किया, क्योंकि सचिन पायलट भी राजस्थान से और जाखड़ उसके बहुत अच्छा परिचय है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप उससे बात करो, उपाध्यक्ष पे इसको दो, ये चुनाव जीतेगा, आप उसको टिकट दिलवाइए। सचिन पायलट ने उसको फ़ोन किया, जाखड़ को जो NSOI के अध्यक्ष है, तो उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में नहीं है, इसमें कन्हैया कुमार ने तय किया है और मैं इसमें तय नहीं कर पाऊंगा, मैं इसका नाम रिकमेंड कर सकता हूं, मैं नाम रिकमेंड किया हुआ है। सचिन पायलट ने कन्हैया कुमार को भी फ़ोन किया उस संदर्भ में पूछने के लिए, तो कन्हैया कुमार को बोला कि नहीं, आप उस मामले में मत पड़िए, मैं वहाँ की पॉलिटिक्स को बहुत बेहतर समझता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की, कि वहाँ क्या स्थिति है, और जिसका नाम रिकमेंड कर रहे हैं उसको थोड़ा ईगो प्रॉब्लम है, तो उस बार उसका इलेक्शन के बाद उसको ईगो ठंडा हो जाएगा, उसको चुनाव लड़ने दीजिए निर्दलीय, उसको समझ में आ जाएगी भारतीय जनता मतलब NSUI का संगठन क्या है, कांग्रेस की ताकत क्या है, कन्हैया कुमार का वहाँ पर जनसंपर्क क्या है। यह सचिन पायलट को कन्हैया कुमार ने पूरा फीडबैक दिया। उसके बाद सचिन पायलट ने कहा ठीक है मैं अपना पंजाब चुनाव देखता हूँ, और जब परिणाम आया
1: तो और जितना मुझे याद है हाल फिलहाल में दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द NSUI हैज ड्रॉन अ कंप्लीट ब्लैंक।
6: लुक वेल यू नो आई एम कंसर्न्ड अबाउट द हेल्थ ऑफ द कांग्रेस पार्टी, इफ अ लीडर ऑफ द स्टैचर ऑफ सचिन पायलट राइट हुज फादर वाज इन द कांग्रेस एंड हुज बीन इन द कांग्रेस फॉर सो लॉन्ग, इफ ही हैज टू स्पीक टू कन्हैया कुमार टू बी टोल्ड that you know you don't know the politics
4: of Delhi
6: of Delhi and Delhi he knows the politics of Delhi, so let's just
1: in fact a lot of people are saying that this is
4: my quote congress dusu ki ek former president ne mujhse kaha usne kaha kanhaiya ne 8000 students ki politics ki hai dusu mein
5: JNU mein
4: aur dusu mein more than 60000 vote padte hain to usne kaha former president ne mujhse kaha usne kaha hum log jante hain lekin hamari suni nahi gayi humne कहा क्या करना चाहिए लेकिन कन्हैया कुमार ने बिल्कुल नहीं सुनी। और पंजाब में जो हारी है कांग्रेस स्टूडेंट में उसमें
1: पहले पंजाब इलेक्शन में हारे और बाय द वे ड्यूरिंग द दूसरा इलेक्शन द ABVP's पंजाब यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट वाज राइट देयर, ही वाज देयर एट द फोरफ्रंट ऑफ कैंपेनिंग, सो दे गॉट हिम फ्रॉम हियर।
6: अगेन देयर आर टू वेज टू लुक एट दिस पदम जॉब। वन आई मीन इफ यू आर सेइंग दैट इज दिस अ लार्जर रिफ्लेक्शन ऑफ अ नेशनल मूड, देयर हैव बीन इनफ इंस्टेंसेस इन द पास्ट वेयर द पार्टी इन पावर एट द सेंटर whether it was the Congress or the BJP, their student wings have gone on to lose the elections of students. 2004 is a great example in point where the BJP lost the election. 2009 is another case where a different party at the center was winning the election in comparison to when it came to the DUSU elections. I think specifically in this election, what stands out to me is very clear. Rahul Gandhi has to stop making these experiments with the Congress. As long as he considers the Congress party to be a laboratory of carrying out these political experiments, this is what you will get.
1: But 2003...
6: Why is Kanhaiya Kumar? Tell me, what is it about Kanhaiya Kumar other than that great nara which you and I both covered when he was in JNU? Awaaz do hum ek hain. Right? Leke lehenge, leke rehenge. Kya leke rehenge? Azadi. Now, the high of that slogan to now in 2026, if Kanhaiya Kumar has been empowered in the Congress party to this degree where he can tell Sachin Pilot, as Samir is saying, I think the lesser
1: said about the 2003, the NSUI had won a majority of the seats in DUSU and then they came to power at the center. 2013, ABVP won a majority of seats in DUSU and they came to power. So which is why the BJP is so happy. They are seeing this as an indication of
0: things. Padmaja, agar abhi ulta result aata, ki teen NSUI, ek independent, to kya baat ho rahi hoti desh mein? Kya discourse chal raha hota? Khatam ho gaya ji.
4: Bilkul, bilkul.
0: Sab finish hai, 2029 ka result aa gaya. सब डिसाइड हो गया है 2029 में क्या होने वाला है। जिस दिन राहुल गांधी इंदौर में छात्रों की गूंज कर रहे हैं उस दिन दूसरों के वोटों की गिनती हो रही है और जमीन आसमान का अंतर दिख रहा है। खबर तो ये भी आ रही, विनोद जी बताएंगे कि राहुल गांधी ने तुरंत मंच से उतर के जानकारी ली कि क्या रिजल्ट आया, फिर फ़ोन करके अपनी नाराजगी व्यक्त की, कहा कि मुझे रिपोर्ट दीजिए, ये सब बातें भी आई हैं। लेकिन आप ये बताइए कि एक तरफ बीजेपी RSS का जो छात्र संगठन ABVP वो 3 सीटें जीत रहा है और वहाँ पर राहुल गांधी दूसरी तरफ ये कर रहे हैं। नहीं, आप इससे क्या पता लगता है कि जो JNZ को लेकर के माहौल पूरे देश में बनाया जा रहा है कि सरकार से नाराजगी है, ये जनरेशन वो जिसने कि बीजेपी की सरकार के अलावा कोई सरकार अभी तक देखी नहीं है, उसके पास कंपेयर करने के लिए मोदी 1.0 से मोदी
1: 3.0 की है। दिस इज ओनली अबाउट मनी पावर, ये लोग सब लंबोर्गिनी में घूमते हैं। बाय द वे आई वांट टू शो यू अ फ्यू विजुअल्स। लंबोर्गिनी में सब लोग लंबोर्गिनी डिफेंडर NSUI what have you, everyone was going around in Lamborghinis. I mean seriously, I have not seen an election campaign like this. Look at this, even Dipanshu Shokin, some of the cars which were campaigning for Dipanshu Shokin, this new age campaign that we saw here. some pretty big cars there for all. एक ट्रैक्टर भी था बट कुछ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी थी.
4: शौकीन ने जो नंगे पर कंप्लेन किया.
1: हाँ, उन्होंने कहा कि जब तक सत्य निकेतन के लिए उसमें जस्टिस नहीं
0: होगा. उसका बैकग्राउंड भी बहुत हम्बल है.
4: कांग्रेस में
1: डीटीसी
4: कंडक्टर. कांग्रेस में क्या डिबेट चल रही है इसके बाद कि कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी में लोग आउटसाइडर्स

0: चाहते हैं, लेकिन संगठन की जिम्मेदारी इनको नहीं दी जाती है। वो सरकार में बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जैसे हेमंत बिस्व शर्मा चीफ मिनिस्टर बन गए, बट कभी बीजेपी असम के अध्यक्ष नहीं बने, शुभेंदु अधिकारी बंगाल के अध्यक्ष नहीं बने, चीफ मिनिस्टर बन गए। संगठन वो अपने ही ओरिजिनल जो आइडियोलॉजिकल जो लोग हैं उनको देती है।
1: नहीं, संदीप पाठक को दिया उन्होंने संगठन,
2: मनोज तिवारी को यहां पर बनाया था,
1: संदीप पाठक को बना दिया उन्होंने सेक्रेटरी,
2: संदीप पाठक को उन्होंने सेक्रेटरी बनाया है।
0: लीडिंग
1: ज्यादातर
0: लीडिंग रोल की बात हो रही है, जैसे अब कन्हैया को इंचार्ज बना दिया, पूरा माई बाप कर दिया, वहां कंट्रोल भी तो रहता है। मनोज तिवारी अपने मन से कुछ थोड़ी कर सकते हैं। क्या मनोज तिवारी की हैसियत थी कि पीयूष गोयल फोन करें या कोई करे और कहेंगे नहीं करेंगे, जैसे कन्हैया कुमार ने सचिन पायलट को किया, ये नहीं कर सकते थे ना।
1: और वैसे तो भी जो, है ना? जो वीर चतरथ की बात हो रही है, मनीष चतरथ क्या है, वो रहेंगे क्योंकि मेनी पीपल आर बेइंग फॉर हिज हेड आल्सो, कि उनको हटाया जाए,
0: इसकी भी मिसहैंडलिंग हो रही है। लोग ये कह रहे हैं, मैं तो बहुत बात की कि अगर मनीष चतरथ को समझा दिया जाता ढंग से कि भाई देखो आपका बेटा भी नया आया है, उसको अगले साल दे देंगे, इस बार शौकीन को देने दो, तो शायद वो मान जाते। उनसे किसी ने बात ही नहीं की।
1: तो इंदिरा भवन के इंचार्ज हैं, ऑफिस इंचार्ज,
0: हाँ ऑफिस इंचार्ज इंदिरा भवन के, और कहा जाता है कि प्रियंका गांधी के काफी क्लोज हैं वो, तो इसलिए भी उनका एक वेट है। लेकिन माना जाता है एक शरीफ आदमी, भले आदमी अगर वो कन्विंस किया जाता पार्टी की, कन्हैया कुमारी कन्विंस करते या किसी वेणुगोपाल कोई बात करते तो मान जाते।
3: अखिलेश पॉइंट इज दैट यू नो इट्स बीन स्पोकन अबाउट एक्सटेंसिवली दैट इफ इफ इफ एनएसयूआई वुड हैव वन देन इट वुड हैव मेंट इट्स अ बिग वोट अगेंस्ट द बीजेपी। माय पॉइंट इज वेल द एबीवीपी इज डन वेल इन पंजाब राइट, इज अखिलेश गोइंग टू से that ABVP, because ABVP has done well in Punjab, the BJP conversely will do very well in the Punjab.
2: चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का मामला different है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को आप पंजाब से जोड़ के नहीं देख सकते, इससे बड़ा बिल्कुल क्लियरिटी, क्योंकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा बाहर के राज्यों के बच्चे पढ़ते हैं, ये नहीं कि वो वहाँ पे पंजाब के ज्यादा करके लोग आ रहे हैं, तो इसलिए उस रिजल्ट को पंजाब से जोड़ना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन उसमें एक इंडिकेशन मिला है कि अकाली दल का जो छात्र संगठन था उसने सपोर्ट कर दिया एबीवीपी का वहाँ पर इलेक्शन में, तो वो एक इंडिकेशन दे रहा है कि शायद आगे जाके इनका
1: आगे जाके अलायंस हो जाएगा।
4: चंडीगढ़ में बीजेपी सांसद जीत रही थी लेकिन पंजाब में जीत पाती, चंडीगढ़ में कॉर्पोरेशन बीजेपी बना रही
2: है। अगर अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस नहीं होता मनीष तिवारी फिर जीत पाते क्या?
0: एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है कि आसाम में अभी बीजेपी जीती है बहुत थंपिंग मेजोरिटी से, और डिब्रूगढ़ में हार गई स्टूडेंट इलेक्शन
3: में।
2: इसका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का हो गया, राजस्थान के लोकल बॉडी के इलेक्शन हो गए और दूसरों को रिजल्ट आ गए, तीनों जगह आप रिजल्ट क्या बता रहे हैं आपको कि जो बात किया जा रही है कि देश में माहौल बन रहा है, जैसे नाराज है ये
1: बट वन कुड आल्सो आर्ग्यू दैट पीपल हु डू फिजिक्स ऑनर्स एंड केमिस्ट्री ऑनर्स वर आल्सो नॉट सिटिंग एट जंतर मंतर, सो इफ यू आर टेकिंग जंतर मंतर एज अ बैरोमीटर ऑफ द पब्लिक मूड देन इक्वली डूसो कुड आल्सो बी अ बैरोमीटर ऑफ द पब्लिक मूड। बट स्पीकिंग ऑफ मूड, लेट्स टॉक अबाउट लाइक अखिलेश यू जस्ट मेंशनड द छात्रों की गूंज। आयरोनिकली ऑन द डे व्हेन द डूसो रिजल्ट्स केम आउट विद इन एन आवर ऑफ दैट अबाउट 5:30 द रिजल्ट्स केम एंड अराउंड 6:37 o'clock राहुल गांधी एड्रेस द 5th एडिशन ऑफ छात्रों की गूंज, दिस टाइम इट वाज इन इंदौर। Now, basically, he made the point at that rally that this system is being run by 5 to 6 people and this system does not want students, it only wants andhbhakts. His logic was that students are inconvenient, they ask questions and that is why the system wants the unquestioning loyalty of andhbhakts. Now, the political attacks were understandable, but what seems to have got under the BJP skin is a little comedy routine that was woven into the program.
5: और बताइए, हाँ और बताइए, थोड़ा माँ को कुर्सी दो, माँ माँ और बताइए, हाँ और बताइए, थोड़ा माँ को कुर्सी दो, माँ माँ माताजी को चेयर दे दीजिए भाई, ये बुजुर्ग माताजी को चेयर दीजिए, एक कुर्सी दे दीजिए माताजी को, हाँ माँ बैठिए, माँ बैठिए, अब बैठिए, बस आपका आशीर्वाद मिल गया मुझे।
6: सुर्खियों में बने रहने के लिए बुजुर्ग माँ पर एक और प्रधानमंत्री उनको कुर्सी देने की बात करते हैं, उनका ध्यान रखने की बात करते हैं, तो दूसरी ओर राहुल गांधी के मंच पर एक बुजुर्ग महिला को, एक माँ पर जिस तरह का तंज और टिप्पणी कसी जाती है वो कांग्रेस के संस्कारों को दिखाता है।
7: राहुल गांधी जी ने तो प्रधानमंत्री छोड़ दिए, किसी की माँ का जिक्र नहीं किया, और जब बड़ी बात करोगे तो फिर खोल के रख दूंगा, किसने राहुल गांधी की माँ के लिए अपशब्दों का प्रयोग गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में किया था। बात चलेगी तो मैं बता दूंगा, सच तरूर की गर्लफ्रेंड 60 करोड़ की किस मोदी ने कहा था।
1: समीर जी, कांग्रेस कह रही है इसमें क्या बुरा है, ये तो पॉलिटिकल सटायर है।
4: नहीं, मुझे लगता है गलत है राहुल गांधी को इस बात को। मुझे लगता है कि प्रोग्राम होने के बाद जब राहुल गांधी को रियलाइज होना चाहिए था कि जिस तरीके से वो फूहड़ कॉमेडी की गई थी, वो उसके लिए राहुल गांधी को माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। देखिए, इंदौर में कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, भीड़ बहुत अच्छी राहुल गांधी की आई। इंदौर में 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी का कॉरपोरेशन है, 3 दशक से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, कांग्रेस का कोई बहुत ग्राउंड मालवा में नहीं है। उसके बाद इतनी भीड़ इकट्ठी होना राहुल गांधी की, उसमें ये एक उपलब्धि मैं मानता हूँ कि वहाँ पर इतने स्टूडेंट्स आए, लेकिन उस टेम्पो को राहुल गांधी
1: तो मतलब मूड उनके फेवर में था वहाँ पे। अब हम क्या कह रहे हैं कि इंदौर में मूड था राहुल गांधी का,
4: जैसे भी आया हो यूथ बड़ी संख्या में आया, जहाँ पर आपका ग्राउंड नहीं है, जहाँ की आपकी सरकार नहीं है।
1: बीजेपी कह रही है सारे एनएसयूआई वाले लोग बुलाए हुए हैं वहाँ पे, स्टेज पे एनएसयूआई के लोग थे।
4: नहीं, मुझे इतना बड़ा भारतीय, अगर कांग्रेस का इतना बड़ा संगठन होता तो कांग्रेस इतनी बुरे मालवा के अंदर प्रदर्शन नहीं करती। मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स आए होंगे, मैं इस बात को मानता हूँ। और वैसे भी अगर देखें तो राहुल गांधी का 5वां प्रोग्राम था, पहला कोटा में हुआ, उसके बाद उन्होंने देहरादून में किया शायद, उसके बाद उन्होंने प्रयागराज में और पूना में किया। कोई भी, मुझे लगता है राहुल गांधी का प्रोग्राम ऐसा नहीं रहा जिसमें किसी ना किसी तरह की कंट्रोवर्सी ना हुई हो। राहुल गांधी या तो अपने स्पीच में कंट्रोवर्सी की या इस तरह से की। राहुल गांधी को इससे बचना चाहिए था। राहुल छात्रों से बात करने के, आप छात्रों की बात करते हैं इस तरीके से बात करके, मुझे लगता है एक अच्छा मैसेज राहुल गांधी।
1: तो अखिलेश जी, सेम डे 2 थिंग्स हैपेंड, डूसो रिजल्ट्स एंड दिस। समीर जी इज सेइंग बहुत हेल्दी टर्नआउट था, आप किसको माने हम, मूड राहुल गांधी का है या डूसो का है?
2: देखिए, तमाम तरह की कोशिशें हुई, कांग्रेस कहती रही कि काफी अड़ंगे लगाए गए, एमपी की जो बीजेपी सरकार उसकी ओर से पहले परमिशन को लेकर के बवाल काटा गया, उसके बाद फिर ये कहा गया कि जो बच्चे जा रहे हैं उनको हॉस्टल्स में पत्र लिख दिया गया कि आप जाएं तो उनकी लिस्ट बनाइए, उनसे अंडरटेकिंग लीजिए, ये कीजिए वो कीजिए। तो कांग्रेस का ये कहना है कि काफ़ी रोड़े अटकाए गए, इसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, तो इस लिहाज से आप देखिए तो मैं समीर जी की बात से सहमत हूँ। लेकिन आप मैसेज क्या दे रहे हैं? क्या आपका गोल ये है कि आपको सोशल मीडिया पर वायरल होना है, कि आपको एक कंटेंट क्रिएटर बनना है, या आपको देश को लीड करना है? ये दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा अंतर है। तो कंटेंट क्रिएशन तो हमारे देश में बहुत बड़ी एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, बहुत लोग उसमें काम कर रहे हैं। तो एज ए पॉलिटिशियन आपको क्या करना है, आपको एक मैसेज देना
1: चाहिए। एज अ पॉलिटिशियन ही सेइंग दैट योर फॉरेन पॉलिसी इज ओनली अबाउट दिस हग प्लॉमिस,
2: व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? अगर आप किसी को हक कर रहे हो तो उसमें गलत क्या है? कोई गलत है क्या? किसी ने गलत बोला? सामने लोगों ने, किसी ने ऑब्जेक्शन किया क्या कि हमें क्यों हक कर रहे हो? किसी ने हक करने से मना किया क्या? ये अपने अपने तरीके होते हैं, मैनरिज्म होता है पॉलिटिक्स में। कोई अपने, कोई हाथ मिलाता है, कोई गले मिलता है, कोई किसी तरह से मिलता है, वो सबके अपने अपने तरीके हैं, ये उनका अपना तरीका है, और उससे कोई नुकसान हो रहा है क्या?
3: See, there are two things which are very clear. Rahul Gandhi's basis, the very edifice of Rahul Gandhi's politics today is to hit out directly against Narendra Modi at any cost. Even when he wants to criticize, let's say he wants to criticize his foreign policy. One is that he starts getting into the academic side, that what is wrong with India's foreign policy, and you can legitimately say that there are enough questions which can be raised, but that is not what is driving Rahul Gandhi today. Just a couple of days back, I was speaking to someone very, very close to Mr. Gandhi, who's also associated, let's say, a critical part of his brain trust, so to say. He told me very, very clearly that for a person who's been lampooned for the last 12 years, for a person against whom there was an entire sort of industry that was created to convert him into a pappu, you know, nobody calls him pappu now. Nobody is now dismissing him the way he was being dismissed earlier, that he has seen such lows in Indian politics that he can't go any further. Now, this is the conviction that Rahul Gandhi has, that what do I have to lose?
1: So he thinks this is working.
3: Now, in his mind, he thinks that he's rattling the BJP. Now, what is happening on the BJP side? All cabinet ministers are now responding, oh, Rahul Gandhi is saying wrong, this, that, you know. He thinks he succeeded.
1: But in the public mind, you think this is not a self-quote?
3: Will it now lead to the electoral needle moving? I think that's a separate
2: question. I was just afternoon, I was interviewing Hardeep Singh Puri, who is a senior cabinet minister. तो बोले कि मुझे ये लोग बोलते कि आप क्यों कमेंट करते हैं राहुल गांधी के ऊपर? बोले हम इसलिए करते हैं कि उससे हमें फायदा होता है। राहुल गांधी तो हमें फायदे पहुंचा रहे हैं ना, ये उनका अपना असेसमेंट है। तो आप इसका क्या करोगे?
3: Both sides are now claiming victory.
1: तो वो कह रहे हैं कि ये ऐसी हरकतें करके बीजेपी को फायदा होगा।
2: अगर आप ये बोल रहे हैं कि माँ को लेकर के आप उठा रहे हैं विदाउट गोइंग टू द कॉन्टेस्ट कि किस बारे में पीएम मोदी ने कहा, किसके बारे में कहा, आप ये मजाक बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो एक गलत मैसेज जाता है ना कि भाई आप क्या कहना चाह रहे हो। इससे पहले जो एक कॉमेडी वाला एक्ट हुआ था जिसमें संदीप दीक्षित ने, उसमें तो अगर वो तो ठीक है मैच्योरिटी उसको हैंडल कर लिया गया,
1: मेलोनी पकड़ के
2: ये तो मतलब समझ के बीच में रिश्ते खराब कर सकते
3: हैं। अब होने वाला यही है, लेट मी बी वेरी क्लियर, यू नो इफ यू थिंकिंग दैट सडनली बिकॉज बीजेपी मे थिंक दैट राहुल गांधी मेकिंग ऑल दीज अटरेंसेज इज हेल्पिंग अस, राहुल गांधी इज बैकिंग ऑफ, नो लेट मी अश्योर यू एंड आई एम हैप्पी टू शेयर दिस विद योर व्यूअर्स, इन द नेक्स्ट थ्री मंथ्स द होल प्लान इज दिस छात्रों की गूंज, द लेवल ऑफ अग्रेशन is going to be enhanced even more, particularly when it comes to, let's say, campaigning. Abhi he'll start campaigning now in Punjab. There's a big bus yatra which is being planned. Punjab is a land of satire, is a land of song, is a land of, you know, I mean, not poetry. So, you know, just brace yourself up.
1: Well, he'll have an able opponent in Bhagwant Mann. Bhagwant Mann professionally.
3: He's a chief minister. So you can well imagine.
0: Actually,
2: I'm practicing. प्रैक्टिस कर रहे हैं.
0: राहुल गांधी जो है, जो भूपेंद्र ने कहा, मैं उसी बात को एंडोर्स करता हूँ. राहुल गांधी को पप्पू बनाया बीजेपी और उसके पूरे इकोसिस्टम ने. अब उसी को राहुल गांधी रिवर्ट कर रहे हैं. वो उसी तरह का अटैक नरेंद्र मोदी जी पे कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर पे, कि वो बताना चाहते हैं भैया ये हैं ये, तो वो बिल्कुल काउंटर अटैक है. और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इतने लो लेवल पे जाने के बाद पप्पू और ये वो रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन सारे जितने भी विशेषण हो सकते हैं सब डाले गए, तो वो जितना नुकसान होना था राहुल गांधी का वो हो चुका है, इसलिए उनको मालूम है कि अब हमें अटैक करना है. अग्रेशन करना है, तो ये उनकी स्ट्रेटजी है. इसीलिए जो संदीप दीक्षित वाला प्रोग्राम हुआ था उसके बावजूद भी इंदौर में किया ना वो सेम हगिंग हैग्लोमेसी को उन्होंने अटैक किया.
1: सो दिस इज गोइंग टू बी द टेम्पलेट फ्रॉम वेदर इट इज अग्रेशन और सेल्फ गोल, द पीपल विल अल्टीमेटली डिसाइड.
0: हरदीपपुरी को खराब लग सकता है, हरदीपपुरी खुश हो सकते हैं, कांग्रेस
3: पंजाब,
1: राहुल गांधी को लग रहा है कि ये काम कर रहा है.
3: पंजाब में द लोकल यूनिट इज ऑलरेडी बीन टोल्ड टू आइडेंटिफाई कॉमेडियंस, जिसको मस्खरा कहते हैं ना हिंदी में, टू आइडेंटिफाई दीस पीपल हु विल बी गिवन अ स्टेज. नाउ व्हेन अ मस्खरा इज गिवन अ स्टेज, व्हाट विल द मस्खरा डू?
1: वन प्लेस और वन पर्सन हु डेफिनेटली डज नॉट अप्रिशिएट टू मच ह्यूमर इज राज ठाकरे. एंड इट बिकेम एब्सोल्युटली क्लियर व्हेन अ सोशल मीडिया रील दैट वाज क्रिटिसाइजिंग द एमएनएस चीफ ट्रिगर्ड अ शॉकिंग एक्ट ऑफ पब्लिक ह्यूमिलिएशन. And this happened in Pune. MNS workers grabbed Marathi content creator Mahesh Mote, blackened his face, forced him to apologize. I want you to first listen in and see for yourself what happened to this gentleman.
8: Kerala ke liye aur thi mantra noa, khub chuki je video banavle. Maafi maagi itli parat ankin chuk zali hinla. Shubham da dala bollo. Mi kharzang to mitra no Maharashtra thaun. Kadi tumi Raj Sahib asu dya kiwa apla manse paksha asu dya. कधी यांच्या विषयी काय बोलू नका. आणि मित्रांनो, ह्यांनी कुठली मला गुंडगर्दी दादागिरी नाही केली, उलट माझ्यासारख्या वेड्याला माणसानं असं उठायचं काय बी बोलायचं, खरंच चूक झाली मित्रांनो.
1: So not only was this man's face blackened, he was forced to put two slippers on his head, do uthak baithak, then lie prostrate on the ground in front of a portrait of Raj Thackeray. समीर जी, यहाँ पर मराठी अस्मिता को कोई चोट नहीं पहुंच रही है? जो लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, अब उनको गुस्सा नहीं आ रहा है? कुणाल कामरा के एक शो पे गलत हुआ, जो अटैक हुआ फॉर कॉमेडी, जो हुआ वहां मुंबई में गलत हुआ. इस आदमी ने रील बनाई और इसके मुंह पे कालिक पोत दी जाती है.
9: देखिए, पता जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे की पॉलिटिक्स तो ऐसी है, मतलब राज ठाकरे ऐसी राजनीति करते हैं. और राज ठाकरे पॉलिटिकली कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है महाराष्ट्र. नरेंद्र सिन्हा के पास एक एमएलए नहीं है, एक कॉरपोरेटर नहीं है आपके पास, लेकिन राज ठाकरे के पास उसके अंधभक्त जिसे कहते हैं ना, मतलब उसके बहुत लॉयल लोगों की बहुत बड़ी फौज है, वो हर शहर में मिलेगी.
1: भले ही व्हाई इजंट द स्टेट गवर्नमेंट एक्टिंग अगेंस्ट दीस पीपल आर देन गिविंग बाइट, सेइंग थिंग्स लाइक यही है मारा एमएनएस स्टाइल है, ये क्या एमएनएस स्टाइल है, व्हाई आर दीस पीपल गिविंग.
9: कोई कार्रवाई नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहली बार नहीं हुआ है. अब अगर आप देखेंगे इंसिडेंट्स, तो राज ठाकरे जब से शिवसेना में युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, तब से लेकर अभी तक आप देखेंगे तो ऐसे कम से कम 500 इंसिडेंट्स महाराष्ट्र के अंदर हुए होंगे. लेकिन राज ठाकरे पर, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस की सरकार रही हो, कोई सरकार राज ठाकरे पर कभी कार्रवाई नहीं करेगी. राज ठाकरे तो रेलवे के एग्जामिनर, जब उत्तर भारतीय लोग आते थे महाराष्ट्र, नरेंद्र सिन्हा ने कितना उनको पीटा, क्या कभी राज ठाकरे को अरेस्ट किया गया?
1: एंड द फनी थिंग इज दैट दिस मैन हिमसेल्फ इज मराठी. आप हमेशा कहते हैं कि हम मराठियों का मुद्दा उठाते हैं, पर मराठी अस्मिता के ऊपर राज ठाकरे, यानी कि राज ठाकरे पर अगर कोई मराठी बोलेगा तो उसको इस तरीके से ह्यूमिलेट किया
0: जाएगा. पर्सनल अस्मिता ऊपर है मराठी अस्मिता से.
1: हाँ, सबसे पहले एमएनएस अस्मिता, फिर मराठी अस्मिता.
2: अगर राज्य सरकार एक्शन नहीं लेती है तो माना जाएगा कि मौन सहमति आपकी, एक तरह से आप उसको एंडोर्स कर रहे हो. ये आपको एक्शन लेना ही चाहिए इस तरह के मामले में. ये तो आपने देखा कि जो मराठी वाले मुद्दे पे हुआ था कि टैक्सी ड्राइवर को मराठी आनी चाहिए, उस मुद्दे को लेकर कितना ज्यादा तूल दिया गया था. बाकी जबकि जानते हैं सब कि मुंबई में सब तरह के बाहर के सब तरह के लोग आते हैं, सबको रहने का अधिकार वहां पर है। इस तरह से आप अगर अपनी हुकूमत चलाने की कोशिश करेंगे,
1: बीएमसी इलेक्शन के पहले उद्धव ठाकरे एंड राज ठाकरे हैड शेयर्ड अ स्टेज, उद्धव ठाकरे इज साइलेंट टुडे, कांग्रेस इज साइलेंट टुडे, बीजेपी इज साइलेंट टुडे, व्हाई?
3: आई विल टेल यू व्हाई। यू सी इन द प्रीवियस सेगमेंट यू आर आस्किंग अबाउट राहुल गांधी रेजिंग दिस क्वेश्चन, समबडी सेड दैट इज ही अ कंटेंट क्रिएटर। नाउ प्लीज अप्रिशिएट, in Indian politics, for you to remain relevant, for you to have this aura that you're relevant and people are going to take you seriously, you have to consistently be top of the real charts. What Rahul Gandhi is doing in Indore with the stand-up comedian and what Raj Thackeray supporters are doing here is exactly that.
2: It doesn't translate into votes.
3: That's a very clearly.
2: People don't support such kind of antics.
1: But they're allowed to go free. There must be some support somewhere, right? That even the government is scared of taking action.
3: I'm trying to explain to you that the way Indian politics over the last few years has now evolved or degraded, whichever way, whichever side of the political divide you want to look at, is that you have to remain politically relevant, you want to be big on Instagram. You want to be big on social media. All this that you're seeing is a direct byproduct of this desire to be big on Insta.
0: Well, ये तो वही है जैसे नक्सली करते थे जंगलों में पकड़ करके जो है।
1: ये जंगल राज है, कैंगरू कोट आपने चला रखा है।
9: प्रेसिडेंट का बयान है कि अभी गणपति बैठे हुए, इसलिए हमने उसको बहुत छोटा प्रसाद दिया है। अगर गणपति नहीं होते तो वो कल्पना नहीं कर सकता उसके साथ क्या करते हैं।
1: And imagine if people like this are allowed to roam free without the fear of consequences, what does it say about the rule of law? Let's turn our focus now to Uttar Pradesh, which is bristling for the mother of all battles. Of course, the rule of law, law and order is going to be a very big issue there as well. Today, BJP President Nitin Naveen started a two-day visit to Western UP to take stock of the election preparation. Dozens of bulldozers lined up at a toll plaza in Meerut to welcome the BJP chief. Meanwhile, is the opposition now close to stitching an alliance in UP, and could the AIMIM be the sutradhar for it? On Sunday, Asaduddin Owaisi asked all like-minded parties in UP to join hands to prevent a third term for the BJP, a sentiment that was then echoed by Congress's Imran Masood.
10: देखिए अखिलेश जी कितने एक्टिव नजर आ रहे हैं, उसके कोई मायने नहीं है। अगर गठबंधन करना है तो उसे फाइनल करने, और नहीं करना है तो फिर हम भी अपनी तैयारी के अंदर जा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के बिना अब माहौल नहीं है, कहीं भी पूरे देश में नहीं है। तो कांग्रेस के बिना चलने की भी मैं सोचेंगे चल सकते हैं, क्योंकि अगर आप कांग्रेस के बिना जा रहे हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कहीं ना कहीं भाजपा को हराना नहीं है। इनसे लड़ाई कांग्रेस के साथ ही हो सकती है, और कांग्रेस ही लड़ सकती है। राहुल गांधी का नेतृत्व ही इनसे पार पा सकता है।
11: हम लोग सूची बनाएंगे और सूची आपके सामने जारी करेंगे और इलेक्शन कमीशन को भी शिकायत करेंगे। ये ढूंढ ढूंढ करके एक भी पीडीए समाज का अधिकारी ना बैठ जाए चुनाव को देखने के लिए, चुनावी संबंधित कार्रवाई कराने के लिए, प्रशासनिक कार्रवाई के लिए ढूंढ ढूंढ करके पीडीए समाज के लोग हटाया जा रहा है। और ये बात अगर गलत हो तो आप बता दीजिए।
12: हम भी चाहते हैं कि तीसरी मर्तबा उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ना बने, और अगर कोई नहीं चाहता है बीजेपी ना बने, नहीं चाहता माने जो पॉलिटिकल पार्टी हो, जो नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी हो, तो ठीक है आप हमसे बात करिए, हम भी आपके साथ सत्ता में बीजेपी को रोकने से तैयार हैं, हम साथ देंगे आपका।
1: कुछ पार्टी से आप बात
12: नहीं, आप जो बातचीत हो रही है अगर कामयाब हो गई तो फिर आपके सामने रखेंगे, मगर ये समझने की जरूरत है कि बीजेपी को आप अकेले नहीं रोक पाएंगे।
13: दो अक्टूबर तक बताएंगे आपको।
1: Okay, so Bhupen, what's happening in Uttar Pradesh with the seat sharing? Imran Masood is gunning for 150.
3: Well, Imran Masood may be thinking that, you know, the Congress party is right up there or whatever. But I think the way the apple cart exists as of now, from what I gather both from Akhilesh's camp and the Congress camp, there is a realization that this time there is a genuine chance of a very good fight against Yogi Adityanath. So therefore, between the Congress and the Samajwadi party, prospect of an alliance, very, very bright. But as both of us know, there are enough people in the Congress party who will keep, you know, hedging it, who will keep saying, oh, we become now too big. Look at what had happened in Lok Sabha elections. And you remember, I myself had made a statement a few weeks back on one of your shows where I said that if the Congress was really serious, they had to think in terms of something out of box. I anticipate an alliance between the Samajwadi party and the Congress could certainly take place. When? I do not know, but I think it's certainly work in progress.
1: Could the Congress go with the AIMIM instead?
3: I don't think so. You know, I mean, Congress plus AIMIM in the rest of the country. Can you imagine if Rahul Gandhi, everywhere he goes, he has to stand in defense of what Akbaruddin Owaisi sure. may have said somewhere, you know, 10 years back. Hmm. Now, that's a view which is being expressed by Imran Masood, and I'm really surprised that Mr. Masood is you know, maybe speaking as part of some collaborative arrangement against Asaduddin Owaisi. But quick number for you. You know, I checked in 2017 assembly elections and in 2022 assembly elections. Mr. Owaisi's party in UP got a sum total of 0.02% votes in 17, got a sum total of 0.04% votes in 2022. But in at least four constituencies, in Deoband, in Bahraich area, the votes which were polled by Mr. Owaisi certainly ended up becoming a factor. Hmm. Now, is the Congress party and the Samajwadi party going into such finer details to bring him on board and then carry the baggage the rest of the country? I'm not so sure.
1: Sameer ji?
9: Look, Owaisi saab ne 2 October ki date diye. So, Gandhi ji ke birth anniversary hai, 2 October ki date diye. So, Congress bhi Samajwadi party ko 31 October ki Indira Gandhi ki death anniversary ki date de de. Ki 31 tak ki aap sirf decide kar lijiye aapko kya karna hai, kya nahi karna hai. To mujhe lagta hai OVC ke kaaran ho sakta
13: hai. To 23 November de de ki Netaji ki jo birthday hai.
9: Bilkul.
13: Samajwadi party.
1: Ya 14 November de de ki Jawaharlal Nehru ki birthday hai.
9: Samajwadi party to Nehru ki.
1: It's an age of birthday.
9: OVC ke liye bahut mushkil hai. अखिलेश यादव के लिए बहुत मुश्किल है इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव. देखिए, एक तरफ कांग्रेस से आपका सीट शेयरिंग के लेके बातचीत नहीं हो पा रही है, वहाँ पर ओबीसी जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव अगर देखेंगे 2024 का, तो ओबीसी ने 95 सीटों पे उम्मीदवार ओवरऑल मतलब उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सब उसके हार गए थे. वोट 4.5 लाख वोट ओबीसी को मिले थे अगर आप देखेंगे तो. ओबीसी इस बार तैयारी बहुत बेहतर कर रहा है, बिहार में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया था, 5 सीटें जीती थी. तो अखिलेश यादव ओबीसी के साथ गठबंधन करेंगे, मुझे इसकी संभावना कहीं नजर नहीं आती. अखिलेश यादव पूरा मुस्लिम वोट अपने पास रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या कांग्रेस गठबंधन किस स्तर पर करेगी? 6 लोकसभा सीटें, कितने सीटें अखिलेश यादव कांग्रेस को देंगे? कांग्रेस कह रही है कि मिनिमम 3 डिजिट में हमको सीटें चाहिए, 100-105 सीटें. क्या अखिलेश यादव उतना देने को तैयार होंगे?
1: व्हाट्स हैपनिंग इन द बीजेपी? द फैक्ट दैट नितिन नबीन आल्सो डिसाइडेड टू गो टू वेस्टर्न यूपी, बुलडोजर वहां पर आ रहे हैं उनके स्वागत में. Also, Mohammad Shami had a meeting with Jayant Chaudhary.
2: हो सकता है कि कुछ हो, कुछ खिचड़ी पक रही हो, लेकिन ये तय है कि वेस्टर्न यूपी में बीजेपी का अलायंस आरएलडी के साथ होगा. पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ था आरएलडी का.
1: नहीं, मोहम्मद शमी चुनाव लड़ रहे हैं क्या अमरोहा?
2: हो सकता है, मतलब मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर कुछ होता है, इसके बीच में कुछ खिचड़ी पकती हो. लेकिन जो आज ये दोबारा हुआ शुरू वेस्टर्न यूपी का नितिन नवीन का, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बीजेपी वेस्टर्न यूपी को काफी अपने लिए लकी मानती है. 2014 में, इसके बाद 17 में, उसके बाद 19 में, 22 में, हर बार शुरुआत जो बीजेपी कैंपेन की वहीं से हुई है.
1: अदिति सिंह क्या आ रही हैं कांग्रेस में?
2: मेरे ख्याल से मान गई हैं.
1: कांग्रेस में आने के लिए मान गई?
2: बीजेपी से, बीजेपी जो नाराजगी थी
1: बीजेपी ने मना लिया,
2: मेरे ख्याल से हो गई है, मना लिया गया उनको. बीजेपी अब इस पर भी काम कर रही है. विनोद तावड़े को जब से प्रभारी बनाया गया है, महासचिव प्रभारी, तो वो इस पर काम कर रहे हैं कि जो जो लोग नाराज दिख रहे हैं, जिसमें कि राजभर भी थे, सबसे बातचीत हो रही है 1-to-1.
1: और कौन नाराज है?
2: काफी लंबी लिस्ट
1: है.
3: नाराजगी के दो पहलू होते हैं. एक ये कि आपका टिकट कट रहा है क्या, अगर आपका टिकट कट रहा है तो आप नाराज हो सकते हैं. एक ये कि आपके जो समर्थक हैं उनको टिकट दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, आप नाराज हो सकते हैं.
9: अभी तो अपने टिकट की बात है.
3: मैं आपको बता दूं, यू वर टॉकिंग अबाउट जयंत चौधरी एंड आई हैव बीन लिसनिंग टू सम स्टेटमेंट ऑफ जयंत चौधरी. चिराग पासवान एंड जयंत चौधरी आर टू ऑफ दीज ग्रेट लीडर्स इन अ कंट्री हु बिफोर एवरी इलेक्शन एंड अप फाइंडिंग सम फॉल्ट ऑफ द अदर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? And it's nothing else but just an attempt to ensure that they get the maximum possible support, maximum possible what they can get, whatever they can extract. So I think the alliance is there for sure. The BJP's biggest challenge is going to be, it's now a party which has been in power since 2014 at the center and 2017 at the assembly
9: state
3: level. So it's a very, very long spell. How are you going to get rid of this so-called anti-incumbency against MLAs?
2: दो तीन बातें जोड़ना चाहूंगा. एक तो इमरान मसूद का जो बयान आया है, ये खुद से दिया है या दिलवाया गया है, इस पर चर्चा होनी चाहिए. क्योंकि कांग्रेस देखिए, अलायंस तो होगा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस तो होना, ये बात तय. आपने जब लोकसभा चुनाव लड़ा, सफलता हासिल की, तो इसमें क्यों ना हो? ये हो सकता है कि अपने कुछ कैंडिडेट समाजवादी पार्टी उधार दे दें, उन सीटों की संख्या बढ़ा दें, ये एक संभव है. दूसरा, ओबीसी का आपने सुना, ओवैसी भी अलायंस करके चुनाव में जाएंगे. अब वो चंद्रशेखर की पार्टी के साथ होता है, या जो सोनलाल पटेल की दूसरा फैक्शन है
9: पल्लवी
2: भटिया के अला पल्ली वाला, उसके साथ होता है, ये भी एक है. लेकिन वो ऑप्शन है, वो लड़ेंगे, और निश्चित तौर पर कांग्रेस के साथ सवाल ही पैदा नहीं होता. ओवैसी के साथ कांग्रेस कभी अलायंस नहीं करेगी. किसी को क्यों पलटने का मौका देना, अपना वोट क्यों ट्रांसफर करवाना है देना, वो तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी.
1: ओके,
9: अब यूपी में थोड़ा हमसे भी बात कर लीजिए
1: जी.
9: कि मैं उसी राज्य का हूँ,
2: हम भी रहते हैं वहाँ पर.
9: आप रहते हैं, हम उसी राज्य में पैदा हुए, वही की
0: देखिए उत्तर प्रदेश की स्थिति बड़ी विचित्र है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश इन्होंने 2014 से कहा, 1991 से बीजेपी के लिए लाभदायक रहा। पहली सरकार जो उत्तर प्रदेश की बनी थी कल्याण सिंह की, वो वेस्टर्न यूपी से ही बनी थी, सबसे ज़्यादा विधायक यहीं जीत के आए थे। जयंत चौधरी और बीजेपी का अलायंस इस बार इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि जयंत चौधरी ऐड ऑन कर रहे हैं बीजेपी को, जो पिछली बार 2022 में माइनस हुआ था बीजेपी का वोट, वो इस बार ऐड ऑन होगा, इसलिए जयंत चौधरी और वो चौनी वाला जो बयान वगैरह है वो भी हेल्प कर रहा है, बीजेपी भी उसको काफ़ी वो कर रही
2: है। केसी त्यागी पहुंच गए,
0: केसी त्यागी पहुंच गए और भी कई लोग पहुंच गए, तो उसमें तो इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे चिराग पासवान का अलायंस बिहार में बीजेपी के साथ, प्रॉब्लम है ओवैसी साहब के लेके। ओवैसी साहब अगर बीजेपी, अगर ओवैसी साहब चंद्रशेखर से अलायंस करके या बीएसपी से अलायंस करके सब सीटों पर लड़ते हैं तो दिक्कत है इंडिया गठबंधन के लिए, अगर वो इसमें आ जाते हैं तो बीजेपी के लिए और फेवरेबल पोजीशन हो जाएगी। फिर वो अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान चला चला करके पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स है उसको बिल्कुल एक्सट्रीम पे पहुंचा देगी, और योगी जी उसमें सामने है,
2: बुलडोजर
1: दिखेगी,
2: आज तो बुलडोजर दिखेगी,
0: वो तो हनुमानगढ़ी से शुरू होंगे किसी सीढ़ियों में नवाज से लेकर के, तो ये कैच 22 सिचुएशन है। दूसरी लास्ट कांग्रेस और एसपी का अलायंस, उसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों को मालूम है कि अलग अलग लड़ेंगे अगर तो दोनों ही धराशायी।
3: थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होगा,
1: क्वेश्चन आई थिंक नाउ ऑफ हु इज गोइंग टू ब्लिंक फर्स्ट। वी आर कंप्लीटली आउट ऑफ टाइम फॉर टुडे, बट इट्स ओनली हीटिंग अप, एंड एज ऑलवेज लाइक आई सेड ऑन एनडीटीवी हियर फॉर अस इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉलिटिक्स जिंदाबाद। थैंक्स वेरी मच जेंटलमैन फॉर हैविंग जॉइन्ड अस विद योर विजडम, एंड थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।

0: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
1: Hindustan mile, Hindustan se.
2: देश का टायर, जेके टायर।
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।

0: have been arrested for molesting and assaulting a couple in Bihar's Jamui. The two youngsters that you see on your screens were harassed by a crowd in what the story was first published at Moral Policing, which was not to say the least. They were stopped while travelling on a scooter, following which the harassment took place. The shocking video showed men touching the girl inappropriately, and she was a minor, and even carrying her away from some distance on road before being stopped by her friend. The youngsters were seen pleading with folded hands in an effort to be left alone, and while they were doing that, the only thing that they witnessed next is being dragged back to the same place. And while all of this is happening, as usual, the politics has erupted between the government and the opposition of the state. The JDU leader, Umesh Kushwaha, has tried to downplay the incident and called it a trivial one, and that keeps happening in the state of Bihar. Rahul Gandhi, meanwhile, has slammed the government over the incident and has demanded action against mob under the POKSO Act. Meanwhile, another Bihar minister, Sunil Kumar, has condemned the incident. But while all of this is happening, the big questions remain that why is it that the action came after the video went viral?
1: तीन नाबालिग बच्चों को निरुद्ध की गई हैं और इसमें दो और की इन्वॉल्वमेंट भी पता चला और दो और हो सकते हैं तो हम लोग का अभी क्विक एक्शन हुआ था जमुई थाना कांड संख्या 428 सेक्शन 74-75 BNSS और 8 और 12 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज हुई हैं साथ ही साथ जितना वीडियो वायरल हुआ है हम लोग टेक डाउन नोटिसेस जारी किया जिसमें 13 फेसबुक और 12 इंस्टाग्राम का अकाउंट्स और 7 ट्विटर के अकाउंट्स हम लोग के द्वारा टेक डाउन कर लिए
0: एंड व्हाइल दिस इंसिडेंट हैज gotten into every Indian and every Indian is expressing outrage. There are political parties that are trying to take away credit and blame the other party. But one thing is for sure, that be it the opposition or the government, nobody for till date has been able to ensure the safety of a woman. But here are some political reactions that came in from the state of Bihar as far as this incident is concerned.
2: Crime free puri duniya nahi hai. छिटपुट घटना होती रहती है और छिटपुट घटनाओं पर सरकार की नज़र है और इस तरह के कृत्य करने वाले बिहार में बचने वाले नहीं हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई पहले भी हुई है ऐसी घटना करने वाले किसी भी हालत में नहीं बचेंगे
3: छिटपुट घटना घटती है तो हम लोग उस पर सरकार संवेदनशील हैं लेकिन वह समय देखिए 2005 की पहले का कैसा बिहार था कोई घर से बाहर निकलते थे किस तरह का बिहार था क्या हालात था लोग किसी तरह अपनी जिंदगी को काट रहे थे ऐसा बिहार था ना आज तो लोग कम से कम ये कोई घटना घटी है तो उस पर प्रशासन कार्रवाई कर रही है एक्शन ले रही है प्रशासन जल्द से जल्द जो घटना का जो अंजाम दिया है चाहे 12 से 12 कोई कितना बड़ा कोई अपराधी क्यों नहीं हो वो जल्द ही पुलिस के कब्जे में आएंगे
4: घटना की हम तीव्र निंदा करते हैं सरकार की ओर से और निश्चित रूप से वहाँ के पुलिस पदाधिकारी प्रशासन के पदाधिकारी इसमें एक उचित और कठोर कदम उठाएंगे मैं इस जैसे आपसे मीटिंग खत्म हो जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ के मैं पुलिस अधीक्षक से भी बात करूँगा जम्मू के और सुनिश्चित उन्हें कहेंगे कि सुनिश्चित करें कि कोई भी इसके लिए जिम्मेवार हो चाहे जो भी व्यक्ति हो उसको चिन्हित करके उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करें
0: Well, the lawlessness is not just seen in the state of Bihar, it's seen in the state of Maharashtra as well. And this time, the ones responsible are the political parties themselves. A social media reel criticizing MNS chief Raj Thackeray has triggered a shocking act of public humiliation of an influencer in Pune. The MNS workers allegedly grabbed the Marathi content creator Mahesh Mote, blackened his face and forced him to apologize. And in a video that's now going viral of the incident, the influencer is seen with a slipper placed on his head as he is made to perform sit-ups. He is then forced to bow down before a photograph of Raj Thackeray and apologize. The influencer later posted another video breaking down as he said that his comments were unintentional. He apologized to Raj Thackeray and MNS workers with folded hands and appealed to them to not harass him further. The MNS has described the action as its style of dealing with such incidents in a brazen act to justify what they did.
5: Kerala ke levarti mantranu खूप चुकीचे व्हिडिओ बनवले, माफी मागितली, परत आणखीन चूक झाली. ह्यांना शुभम दादाला बोललो. मी खरं सांगतो मित्रांनो, महाराष्ट्रात राहून कधीही तुम्ही राजसाहेब असू द्या किंवा आपला मनसे पक्ष असू द्या, कधी यांच्या

0: several people who may be involved in the case.
1: उस शाम को हमें सिर्फ कॉल आया प्रोफेसर का
2: जी,
1: अचानक से कॉल आया सर, रात 8 बजे की साहिल ने सुसाइड किया है, ऐसा करके कॉल आया। इतने दिन होने के बाद उस प्रोफेसर ने माफी मांगी। प्रोफेसर बता रहे कि साहिल ने कुछ गलती नहीं की, फिर भी साहिल के साथ ऐसा क्यों हो गया? सर मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि मेरे साहिल को न्याय मिलना चाहिए। अगर उसकी कुछ गलती नहीं थी, फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों हो गया? आज तक की ये पहली घटना नहीं है सर, और जो भी घटनाएं हुई है उस घटना के बारे में आज तक कोई इंक्वायरी नहीं बैठी गई, कुछ ही हुआ नहीं। लेकिन हमने जब ये बोला तो हमें हम पर भी वो प्रेशर डाल रहे है।
3: साहिल ने माँ बाप को बोला था कि मम्मी यहाँ पे थोड़ा बच्चों पर अन्याय करते हैं, जातिवाद करते हैं। आज वो कॉलेज में अगर साहिल के आज भी फेवर में न्याय नहीं मिल रहा होगा तो आज भी साहिल पर अन्याय ही हो रहा। हमारा पूरा भरोसा है कि ये चौकशी सीबीआई करे।
0: Meanwhile, my colleague Sujata Divedi spoke to Sahil's wingmate in IIT Bombay. Let's listen into what he had to say.
4: क्योंकि विंगमेट थे आप लोग, दूसरे को जानते थे, एग्जाम में कॉपी किया गया, इसको लेकर आपको उसने क्या बताया?
5: उसने किसी से भी कुछ बात नहीं की, यही बात है, सब स्पेक्यूलेशन है। बस कॉपी करने के बाद जब उसको बाहर लेके गए उसके बाद उसने किसी से बात नहीं की, तो किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है। आई डोंट थिंक, जितना मैंने फर्स्ट ईयर में उसे देखा, कि हमने से किसी में या उसके दोस्तों में से किसी ने उसके कास्ट पर कभी भी रिमार्क किया हो। IIT बॉम्बे में ऐसा कल्चर है ही नहीं कि कोई किसी के कास्ट पर रिमार्क करता है, क्योंकि हम सारे जेईई देव स्टूडेंट, हमें आइडिया है कि ये सब नहीं करना होता है, एजुकेटेड हैं। एंड मुझे नहीं पता ये एंगल कहाँ से आया। डी ने कि ये सस्पेंशन था हमारा फर्स्ट पॉइंट, उसका भी रेजिग्नेशन नहीं था, क्योंकि जब तक वो गिल्टी प्रूफ नहीं हो जाते हम उनका रेजिग्नेशन नहीं मांग रहे।
6: Accountability does not necessarily mean an online apology, first of all, because everybody apologizes nowadays. It's a very, you know, trendy thing, right? We need resignations. That's what we need. We need resignation of all the people involved, because like I said, this is not one isolated event. There have been 4 suicides in the past 1 year. This is the second suicide in the past 2 months. जिसमें से 4 suicides में से 3 suicides जो थे वो दलित background के बच्चों के थे. So like I said, this is not an isolated event. Right, so we need immediate resignation, क्योंकि accountability हमें वैसे ही मिलेगी. We need resignation, we need a student, independent student body यहाँ पर जो student के behalf पर बोले, you know, to give students some power as well. We need mental health conferences and all of that. We also need compensation for the family, जिन जो उनको भी काफ़ी पुलिस ने परेशान कर रखा है जब से वो यहाँ पर आए हैं. उनका एक अकेला बेटा था, one only child, right? तो we need compensation for the family as well.
0: Let's move on to another shocking case that has come to light, and this is from the state of Bihar, where there have been 3 people who have been arrested for molesting and assaulting a couple in Bihar's Jamui. The 2 youngsters that you see on your screens were harassed by a crowd in what the story was first published at Moral Policing, which was not to say the least. They were stopped while traveling on a scooter, following which the harassment took place. The shocking video showed men touching the girl inappropriately, and she was a minor, and even carrying her away from some distance on road before being stopped by her friend. The youngsters were seen pleading with folded hands in an effort to be left alone, and while they were doing that, the only thing that they witnessed next is being dragged back to the same place. And while all of this is happening, as usual, the politics has erupted between the government and the opposition of the state. The JDU leader, Umesh Kushwaha, has tried to downplay the incident and called it a trivial one, and that keeps happening in the state of Bihar. Rahul Gandhi, meanwhile, has slammed the government over the incident and has demanded action against mob under the POKSO Act. Meanwhile, another Bihar minister, Sunil Kumar, has condemned the incident. But while all of this is happening, the big questions remain that why is it that the action came after the video went viral?
7: तीन नाबालिग बच्चों को निरुद्ध की गई हैं और इसमें 2 और की इन्वॉल्वमेंट भी पता चला और 2 और हो सकता है, तो हम लोग का

0: अभी क्विक एक्शन हुआ था जमुई थाना कांड संख्या 428 भी सेक्शन 74, 75 BNSS और 8 और 12 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज हुई है। साथ ही साथ जितना वीडियो वायरल हुआ है हम लोग टेक डाउन नोटिसेस जारी किया, जिसमें 13 फेसबुक और 12 इंस्टाग्राम का अकाउंट्स और 7 ट्विटर के अकाउंट्स हम लोग के द्वारा टेक डाउन कर लिए।
1: एंड व्हाइल दिस इंसिडेंट हैज़ गॉटन इनटू एवरी इंडियन एंड एवरी इंडियन इज एक्सप्रेसिंग आउटरेज, देयर आर पॉलिटिकल पार्टीज दैट आर ट्राइंग टू टेक अवे क्रेडिट एंड ब्लेम द अदर पार्टी, बट one thing is for sure that be the opposition or the government, nobody for till date has been able to ensure the safety of a woman. But here are some political reactions that came in from the state of Bihar as far as this incident is concerned.
2: Crime free puri duniya nahi hai, chitfut ghatna hoti rehti hai aur chitfut ghatnaon par sarkar ki nazar hai और इस तरह के कृत्य करने वाले बिहार में बचने वाले नहीं हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई पहले भी हुई है, ऐसी घटना करने वाले किसी भी हालत में नहीं बचेंगे।
3: घटना घटती है तो हम लोग उस पर सरकार संवेदनशील हैं, लेकिन वह समय देखिए 2005 की पहले का कैसा बिहार था, कोई घर से बाहर निकलते थे, किस तरह का बिहार था, क्या हालात था, लोग किसी तरह अपनी जिंदगी को काट रहे थे, ऐसा बिहार था ना। आज तो लोग कम से कम ये कोई घटना घटी है तो उस पर प्रशासन कार्रवाई कर रही है, एक्शन ले रही है, प्रशासन जल्द से जल्द जो घटना का जो अंजाम दिया है, चाहे 12 से 12 कोई कितना बड़ा कोई आपराधिक क्यों नहीं हो, वो जल्द ही पुलिस के कब्जे में आएंगे।
4: घटना की हम तीव्र निंदा करते हैं सरकार की ओर से, और निश्चित रूप से वहाँ के पुलिस पदाधिकारी प्रशासन के पदाधिकारी इसमें एक उचित और कठोर कदम उठाएंगे। मैं इस जैसे आपसे मीटिंग ख़त्म हो जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहाँ के मैं पुलिस अधीक्षक से भी बात करूँगा जम्मू के, और सुनिश्चित उन्हें कहेंगे कि सुनिश्चित करें कि कोई भी इसके लिए जिम्मेवार हो, चाहे जो भी व्यक्ति हो, उसको चिन्हित करके उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करें।
1: Well, the lawlessness is not just seen in the state of Bihar, it's seen in the state of Maharashtra as well, and this time the ones responsible are the political parties themselves. A social media reel criticizing MNS chief Raj Thackeray has triggered a shocking act of public humiliation of an influencer in Pune. The MNS workers allegedly grabbed the Marathi content creator Mahesh Mote, blackened his face and forced him to apologize. And in a video that's now going viral of the incident, the influencer is seen with a slipper placed on his head as he is made to perform sit-ups. He is then forced to bow down before a photograph of Raj Thackeray and apologize. The influencer later posted another video breaking down as he said that his comments were unintentional. He apologized to Raj Thackeray and MNS workers with folded hands and appealed to them to not harass him further. The MNS has described the action as its style of dealing with such incidents in a brazen act to justify what they did.
5: Kerala ke levarti mitranno khup chuki je video banavle maafi magitli parat ankin chuk zali hanla shubham dadala bollo mi khar sangto mitranno maharashtrat rahun kadhi tumhi raj saheb asu dya kiwa apla manse paksh asu dya kadhi yanche vishayi kay bolu naka ani मित्रांनो, ह्यांनी कुठली मला गुंडगर्दी दादागिरी नाही केली, उलट माझ्यासारख्या वेड्याला माणसानं असं उठायचं काय बी बोलायचं, खरंच चूक झाली मित्रांनो।
6: काल पुण्यात आल्याच्या नंतर आज तो कात्रज मध्ये येणार आहे अशी जवळपास माहिती होती। आज कात्रजच्या उद्यानामध्ये तो जसा आल्याच्या नंतर तातडीने आम्ही सर्व महाराष्ट्र सैनिक एकत्र आलो। एकत्र आल्याच्या नंतर आम्ही त्याला ऑफिसला घेऊन गेलो, आदरणीय राजसाहेब ठाकरे यांच्या फोटो पुढे त्याला आम्ही झोपवलं, त्याला तिथं साहेबांची माफी मागायला सांगितली आणि मनसेच्या स्टाईलने त्याला उत्तर दिलं, त्याला चांगली आम्ही आमच्या भाषेत महाप्रसाद दिला त्याला, त्याचबरोबर त्याला साहेबांची माफी मागायला सांगितली, त्याला काजळाची मिशी काढली, त्याला त्याच्या चप्पल त्याच्या डोक्यावरती ठेवायला सांगितल्या आणि त्याच्या उठाबशा मारायला सांगितल्या।
7: पुणे में एक लड़के का मुंह आप काला करते हैं, चप्पल सर पर उठक बैठक, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक रील बनाया। क्या ये है एमएनएस की स्टाइल, तालिबानी स्टाइल? जो आप महाराष्ट्र का नेता बनना चाहते हैं तो ये गुंडागर्दी करना बंद कीजिए। जो आपकी आलोचना करते हैं आप उनके प्रति ऐसे प्रस्तुत आते हैं कि गुंडागर्दी ही चलेगा। पुणे पुलिस

0: Ladies and gentlemen, IIT Bombay student Sahil's death has triggered protest and a wider campus row over accountability. Professor Dhola has been suspended from his position as a dean, while he will still continue to be a faculty member at the IIT Bombay. And around 750 faculty members have expressed solidarity with Professor Dhola and marched on the campus with him in support of him. The faculty protest comes amid continuing student demonstrations over the case. The student, the victim here, and their aunt has alleged that he faced caste-based discrimination and said that the family wants complete truth to emerge. She has demanded all the CCTV footage, arguing that the case should not be limited to one professor, and that she alleged that there will be several people who may be involved in the case.
1: उस शाम को हमें सिर्फ कॉल आया प्रोफेसर का
2: जी,
1: अचानक से कॉल आया सर, रात 8 बजे की साहिल ने सुसाइड किया है, ऐसा करके कॉल आया। इतने दिन होने के बाद उस प्रोफेसर ने माफी मांगी। वो प्रोफेसर बता रहे कि साहिल ने कुछ गलती नहीं की, फिर भी साहिल के साथ ऐसा क्यों हो गया। सर मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि मेरे साहिल को न्याय मिलना चाहिए। अगर उसकी कुछ गलती नहीं थी, फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों हो गया। आज तक की ये पहली घटना नहीं है सर, और जो भी घटनाएं हुई है उस घटना के बारे में आज तक कोई इंक्वायरी नहीं बैठी गई, कुछ ही हुआ नहीं। लेकिन हमने जब ये बोला तो हम पर भी वो प्रेशर डाल रहे है।
3: साहिल ने माँ बाप को बोला था कि मम्मी यहाँ पे थोड़ा बच्चों पर अन्याय करते हैं, जातिवाद करते हैं। आज वो कॉलेज में अगर साहिल के आज भी फेवर में न्याय नहीं मिल रहा होगा, तो आज भी साहिल पर अन्याय ही हो रहा। हमारा पूरा भरोसा है कि ये चौकसी सीबीआई करे।
0: Meanwhile, my colleague Sujata Devedi spoke to Sahil's wingmate in IIT Bombay. Let's listen into what he had to say.
4: कि विंगमेट थे आप लोग, दूसरे को जानते थे, एग्जाम में कॉपी किया गया, इसको लेकर आपको उसने क्या बताया?
5: उसने किसी से भी कुछ बात नहीं की, यही बात है, सब स्पेक्यूलेशन है। कॉपी करने के बाद जब उसको बाहर लेके गए, उसके बाद उसने किसी से बात नहीं की, तो किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है। आई डोंट थिंक, जितना मैंने फर्स्ट ईयर में उसे देखा, कि हमने से किसी में या उसके दोस्तों में से किसी ने उसके कास्ट पर कभी भी रिमार्क किया हो। IIT बॉम्बे में ऐसा कल्चर है ही नहीं कि कोई किसी के कास्ट पर रिमार्क करता है, क्योंकि हम सारे जई देव स्टूडेंट, हमें आइडिया है कि ये सब नहीं करना होता है, हम इतने एजुकेटेड हैं। एंड मुझे नहीं पता ये एंगल कहाँ से आया। डी ने कि ये सस्पेंशन था हमारा फर्स्ट पॉइंट, उसका भी रेजिग्नेशन नहीं था, क्योंकि जब तक वो गिल्टी प्रूफ नहीं हो जाते हम उनका रेजिग्नेशन नहीं मांग रहे।
6: Accountability does not necessarily mean an online apology, first of all, because everybody apologizes nowadays. It's a very, you know, trendy thing, right? We need resignations. That's what we need. We need resignation of all the people involved, because like I said, this is not one isolated event. There have been 4 suicides in the past 1 year. This is the second suicide in the past 2 months. जिसमें से 4 suicides में से 3 suicides जो थे वो दलित background के बच्चों के थे. So like I said, this is not an isolated event, right? So we need immediate resignation, because accountability hame waise hi milegi. We need resignation, we need a student independent student body yahan par jo student ke behalf par bole, you know, to give students some power as well. We need mental health conferences and all of that. We also need compensation for the family, जो उनको भी काफ़ी पुलिस ने परेशान कर रखा है जब से वो यहाँ पर आए हैं। उनका एक अकेला बेटा था, वन ओनली चाइल्ड, राइट? तो वी नीड कॉम्पेंसेशन फॉर द फैमिली।
0: Let's move on to another shocking case that has come to light, and this is from the state of Bihar, where there have been 3 people who have been arrested for molesting and assaulting a couple in Bihar's Jamui. The 2 youngsters that you see on your screens were harassed by a crowd in what the story was first published at Moral Policing, which was not to say the least. They were stopped while traveling on a scooter, following which the harassment took place. The shocking video showed men touching the girl inappropriately, and she was a minor, and even carrying her away from some distance on road before being stopped by her friend. The youngsters were seen pleading with folded hands in an effort to be left alone, and while they were doing that, the only thing that they were

0: witness next is being dragged back to the same place. And while all of this is happening, as usual, the politics has erupted between the government and the opposition of the state. The JDU leader, Umesh Kushwaha, has tried to downplay the incident and called it a trivial one, and that keeps happening in the state of Bihar. Rahul Gandhi, meanwhile, has slammed the government over the incident and has demanded action against mob under the POKSO Act. Meanwhile, another Bihar minister, Sunil Kumar, has condemned the incident. But while all of this is happening, the big questions remain that why is it that the action came after the video went viral?
1: तीन नाबालिग बच्चों को निरुद्ध की गई हैं और इसमें दो और की इन्वॉल्वमेंट भी पता चला और दो और हो सकते हैं तो हम लोग का अभी क्विक एक्शन हुआ था जमुई थाना कांड संख्या 428 भी सेक्शन 74, 75 BNSS और 8 और 12 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज हुई हैं साथ ही साथ जितना वीडियो वायरल हुआ है हम लोग टेकडाउन नोटिसेस जारी किया जिसमें 13 फेसबुक और 12 इंस्टाग्राम का अकाउंट्स और 7 ट्विटर के अकाउंट्स हम लोग के द्वारा टेकडाउन कर लिए
0: एंड व्हाइल दिस इंसिडेंट हैज gotten into every Indian and every Indian is expressing outrage. There are political parties that are trying to take away credit and blame the other party. But one thing is for sure, that be it the opposition or the government, nobody for till date has been able to ensure the safety of a woman. But here are some political reactions that came in from the state of Bihar as far as this incident is concerned.
2: Crime free puri duniya nahi hai. छिटपुट घटना होती रहती है और छिटपुट घटनाओं पर सरकार की नज़र है और इस तरह के कृत करने वाले बिहार में बचने वाले नहीं है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई पहले भी हुई है ऐसी घटना करने वाले किसी भी हालत में नहीं बचेंगे
3: घटना घटती है तो हम लोग उस पर सरकार संवेदनशील हैं लेकिन वह समय देखिए 2005 की पहले का कैसा बिहार था कोई घर से बाहर निकलते थे किस तरह का बिहार था क्या हालात था लोग किसी तरह अपनी जिंदगी को काट रहे थे ऐसा बिहार था ना आज तो लोग कम से कम ये कोई घटना घटी है तो उस पर प्रशासन कार्रवाई कर रही है एक्शन ले रही है प्रशासन जल्द से जल्द जो घटना का जो अंजाम दिया है चाहे 12 से 12 कोई कितना बड़ा कोई अपराधी क्यों नहीं हो वो जल्द ही पुलिस के कब्जे में आएंगे
4: घटना की हम तीव्र निंदा करते हैं सरकार की ओर से और निश्चित रूप से वहाँ के पुलिस पदाधिकारी प्रशासन के पदाधिकारी इसमें एक उचित और कठोर कदम उठाएंगे मैं इस जैसे आपसे मीटिंग खत्म हो जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वहाँ के मैं पुलिस अधीक्षक से भी बात करूँगा जम्मू के और सुनिश्चित उन्हें कहेंगे कि सुनिश्चित करें कि कोई भी इसके लिए जिम्मेवार हो चाहे जो भी व्यक्ति हो उसको चिन्हित करके उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करें
0: Well, the lawlessness is not just seen in the state of Bihar, it's seen in the state of Maharashtra as well. And this time, the ones responsible are the political parties themselves. A social media reel criticizing MNS chief Raj Thackeray has triggered a shocking act of public humiliation of an influencer in Pune. The MNS workers allegedly grabbed the Marathi content creator Mahesh Mote, blackened his face and forced him to apologize. And in a video that's now going viral of the incident, the influencer is seen with a slipper placed on his head as he is made to perform sit-ups. He is then forced to bow down before a photograph of Raj Thackeray and apologize. The influencer later posted another video breaking down as he said that his comments were unintentional. He apologized to Raj Thackeray and MNS workers with folded hands and appealed to them to not harass him further. The MNS has described the action as its style of dealing with such incidents in a brazen act to justify what they did.
5: केरळला गेले वरती मित्रांनो खूप चुकीचे व्हिडिओ बनवले माफी मागितली परत आणखीन चूक झाली यांना शुभम दादाला बोललो मी खरं सांगतो मित्रांनो महाराष्ट्रात राहून कधी तुम्ही राजसाहेब असू द्या किंवा आपला मनसे पक्ष असू द्या कधी यांच्याविषयी काय बोलू नका आणि मित्रांनो ह्यांनी कुठली मला गुंडगर्दी दादागिरी नाही केली उलट माझ्यासारख्या वेड्याला माणसानं असं उठायचं काय बी बोलायचं खरंच चूक झाली मित्रांनो
6: काल पुण्यात आल्याच्या नंतर आज तो कात्रज मध्ये येणारी अशी जवळपास माहिती होती आज कात्रजच्या उद्यानामध्ये तो जसा आला आल्याच्या नंतर तातडीने आम्ही सर्व महाराष्ट्र सैनिक एकत्र आलो एकत्र आल्याच्या नंतर आम्ही त्याला ऑफिसला घेऊन

0: support of Professor Dula. They have said that whatever he did, it was according to the rules of the institution. It was done according to the law. The lawyer of Sahil's family has listed the demands, including giving compensation to the family.
1: The victims' investigation पूर्ण होण्याच्या आतमध्ये SC/ST Atrocity Act च्या अंतर्गत जे compensation दिलं जातं ते compensation ते immediately करून देण्याचं काम पोलीस मदत करेल त्यांना आणि पुढची ही इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये असणाऱ्या सगळी रिपोर्ट्स त्या इमिडिएटली फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये चार्जशीट फाईल करून ह्या अक्युज लोकांच्या विरोधात ट्रायल फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये चालवला जाईल.
0: समीक्षा आपसे स्टार्ट करूंगी, हो क्या रहा है मुंबई में?
2: देखिए महाराष्ट्र वैसे भी अगर आप देखेंगे दलितों को लेकर बहुत सेंसिटिव स्टेट है और इस तरीके से घटना IIT मुंबई में घटना मुझे लगता है कि पॉलिटिकली भी बहुत सेंसिटिव विषय है और जिस तरीके से पूरा मामला आया है हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज़ अभी इस पर चुप है मतलब देवेंद्र फडणवीस का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है लेकिन मुझे लगता है कि एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना एक स्टूडेंट की हुई है जो जिसने सुसाइड किया लेकिन इसके दूसरे पहलू भी मुझे लगता है कि देखना चाहिए. यह कहा जा रहा है कि उसको SC/ST कारण उसको प्रताड़ित किया गया था काफ़ी समय से ही हो रहा था तो क्या सुसाइड उसने किया तो वो कुछ ऐसा लेटर लिख कर गए हैं सुसाइड के समय कि मैं इसे सुसाइड कर रहा हूँ कि मुझे लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा था. उसके फादर ने जो SC/ST कंप्लेंट दर्ज कराई है उन्होंने भी इसके पहले कहा कि लंबे समय से उसको प्रताड़ित किया जा रहा था पिछले तीन महीने से प्रताड़ित किया जा रहा था तो क्या इसके पहले जब उन्हें पता था तो उन्होंने कंप्लेंट ऑफिशियली दर्ज कराई क्या फैकल्टी के पास रिटर्न में उन्होंने इस बात को कंप्लेंट दर्ज कराई कि भाई इसको ऐसे ऐसे प्रताड़ित किया जा रहा था पहले से और मैं कंप्लेंट कर चुका था लेकिन कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है वो इसको देख नहीं रही थी तो मुझे लग रहा है कि अब जांच की बात होगी इस मामले को लेकर लेकिन ये पूरी महाराष्ट्र की राजनीति मुझे लगता है कि सवर्ण बनाम दलित के मामले में चली गई है और महाराष्ट्र में तो वैसे भी अगर आप देखेंगे तो आज 455 सीट्स लोकसभा विधानसभा की रिजर्व सीटें 288 में से और लोकसभा की अगर आप देखेंगे तो 48 में से 9 सीटें रिजर्व के आती है और रामदास आठवले का बयान जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर आया उन्होंने और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में 13% करीब दलित है अगर आप देखेंगे एक बड़ा कम्युनिटी है वहाँ की और बहुत स्ट्रांग कम्युनिटी है वहाँ पर अगर देखेंगे पॉलिटिकली तो ये फिलहाल मामला मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए रूलिंग पार्टी के लिए एक बड़ा सेंसिटिव मामला है
0: एंड दैट व्हाई इट्स वेरी स्ट्रेंज नाइदर हैज द चीफ मिनिस्टर सेड एनीथिंग राइट नाउ नॉर हैज द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर द ओनली पीपल हु हैव स्पोकन अप इज द भीम आर्मी You've got the Congress protesting and Ramdas Athawale, who's a union minister with the government, Vinod ji, wo keh rahe hain ki bhai every student deserves to have an atmosphere where they are not subjected to caste harassment. Kya ye ek phir se Rohit Vemula type situation ban rahi hai BJP sarkar ke liye? Kyunki let's be very honest, the staff there, the faculty, they are saying this is a misuse of the SC/ST Act. To ab pura faculty ek taraf ho gaya hai aur students aur kuch politicians ek taraf ho gaye.
3: देखिए हम लोग लॉजिक पे बात कर रहे हैं उस हिसाब से तो बिल्कुल सही है कि भाई पिछले तीन महीने का अगर आरोप लग रहा है तो क्या उसने कभी कोई शिकायत की थी क्या उसने इस तरह का उस बच्चे ने जो है पहले से कोई कंप्लेंट की थी भाई अगर हरेसमेंट हो रहा है ये सब लॉजिक की चीज़ें हैं. पॉलिटिक्स लॉजिक से नहीं चलती, पॉलिटिक्स नैरेटिव से चलती है और नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि उसके साथ उसका हरेसमेंट हुआ और एक दलित उत्पीड़न की घटना बनाई जा रही है. आप देखिए लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा नुकसान बीजेपी को कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र और UP दो राज्यों में जो संविधान वाला नैरेटिव था,
0: संविधान खतरे में,
3: क्योंकि महाराष्ट्र अंबेडकराइट पॉलिटिक्स का सेंटर रहा है. नागपुर में बाबा साहब ने दीक्षा ली थी और बड़ा इंटरेस्टिंग है महाराष्ट्र के बारे में, वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का भी की भी भूमि है और अंबेडकराइट पॉलिटिक्स की भी भूमि है तो वो महाराष्ट्र का ये टिपिकल करेक्टर है और इसीलिए ये इशू वहाँ पर जब मतलब रामदास आठवले एक तरह से उनको मजबूर होकर बोलना पड़ेगा ये क्योंकि वहाँ प्रकाश अम्बेडकर भी बैठे हुए हैं वो भी सड़क पर आ जाएंगे और पूरी जो अंबेडकराइट पॉलिटिक्स है इसको लेके गोलबंद हो रही है
0: तो
3: और ये इशू सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं होगा ये आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में जैसे रोहित बेमला का इशू नेशनल इशू बन गया था बाद में उसमें तमाम तरह की और चीज़ें आ गई कि वो दलित थे कि नहीं थे क्या था ये सारी बातें इसमें ये भी आप देखिए नेशनल कांग्रेस भी चाहेगी कि इसको नेशनल लेवल पे उठाए
0: बट आपको
3: क्योंकि राहुल गांधी दलित एजेंडे को सूट करता है
0: बट उन्होंने बोला नहीं है इस पर अभी तक कुछ
3: अभी तो टेस्टिंग वाटर टेस्टिंग है ना बड़े नेता अभी प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बोला क्या या चीफ मिनिस्टर ने कुछ बोला क्या राहुल गांधी ने भी नहीं बोला खड़गे जी भी नहीं बोले जो खुद दलित लीडर हैं लेकिन अभी वहाँ की लोकल जो यूनिट है वो ले रही तो वो इसको वाटर टेस्टिंग करेंगे कि इसका कहाँ तक बात कहाँ तक जाती है और सारे फैक्ट्स भी तो आ जाएँ आप एकदम से बोल दें और उसके बाद मुँह की खा जाएँ क्योंकि जिस तरह इसमें नकल का मामला सामने आ रहा है अब नकल का आरोप है चार दिन मोबाइल लेके हो गया था वो और फिर SC/ST एक्ट भी आ गया तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए तय करना कि नकल का मामला है या SC/ST हैरेसमेंट का मामला है, ये एक अभी सवाल है उनके
0: एंड स्पेशली भूपेन, बिकॉज राइट नाउ द फील्ड इज वाइड ओपन. मायावती इज डिमिनिशिंग इन्फ्लुएंस, कॉन्स्टेंटली अनएबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स द बीएसपी टू डू. यू हैव गॉट द भीम आर्मी फैक्टर, हियर यू हैव गॉट द एडिशनल आरपीआई फैक्टर. सो what does the government do
4: then? And you got the cockroach janata party. Before the show I just saw that there was a statement that was made by Abhijit Deepke, who's now threatening another,
0: who himself is a dalit.
4: He's also now threatening another protest if justice is not done towards his children. I think the problem here, as Sameer has rightly pointed out, see, if you were to have a logical debate, then I would say that you should look at it in terms of, should this be looked at as a case of cheating, should this be case as a case of mental weakness. Because look, this is not the first case of a suicide which is happening across Indian Institute of Technology. In fact, in IIT Mumbai itself, in the year 2023, there was another case of another Dalit student who had committed suicide, Darshan Solanki. Mm. And at that time also, there was a lot of hue and cry. Just in a similar manner, you know, politicians had taken positions and there was a protocol which was created. I want to know, this protocol which was created supposedly in 2023, in terms of what happens if a student is caught violating the law which has been laid down by the Indian Institute of Technology themselves, is that protocol being followed? I think one of the reasons why political parties are testing the waters or still, you know, wanting to take a position but shying away from doing that, because the facts are not completely clear. Where does the student come from? If his father has taken this position that he was being subjected to caste-based discrimination, is there any instance of a casteist slur which was used against the student in concern? We don't have any evidence
0: so
4: yet.
0: We can only go by the word of people who have spoken far. Here is what the IIT Bombay Faculty Forum has said. They said, we strongly express our solidarity with our colleague Professor Dula, who was discharging his duties in line with the Institute's Senate-approved academic policies currently in force. Professor Dula, the course instructor, was invigilating in the mid-semester exam, and when he observed a student was indulging in an academic malpractice, unauthorized possession and use of smartphone during exam, as part of the institute approved procedure, he reported the incident to the institute authorities for further action.
4: No,
0: in the
4: did
0: matter.
4: He? That's a critical part, and that's where I think the story is really resting right now. Did Professor Gula only report the incident to the authorities, and is that all that happened? Or when Professor Gula found out, when he discovered that this student was indulging in supposedly in this kind of an activity, did he say something publicly before students in the examination hall? Is it just that he finds something and it's like, you know, imagine a situation, Padmaja, that there's a case of cheating which has been discovered. Either he's asking the student to get out of the hall, or even in the process of asking the student to get out of the hall, he's using some comments, he's making some comments, we don't know.
0: Because initially the statement that had come on the 19th from IIT Bombay, they said that we did not take any action against the student, we only counseled them.
4: Yeah.
0: That is what they said, which by the way also now they have gone back on it. Ab unhone uske liye bhi apologize kar
5: liya. We should not forget that the IIT Mumbai has actually retracted their earlier statement.
0: Yeah.
5: Now they issued a fresh statement, and not only issued a fresh statement, but they are also saying that they are apologizing for the earlier one.
0: So they are on the back foot for sure.
5: They are on the back foot, yes. But that's why this investigation has now been handed over to crime branch. So all the facts have to come out in the public, because there are different versions. We are saying that, you know, this student was caught. We are going by the first statement of the IIT Mumbai, but now they have retracted the statement. So now what happens, that whatever his father is saying, we have to respect that statement also. We have to look into the facts. On the other hand, the faculty and the alumni, they are saying that if you talk about Professor Dula, he has a very good track record. He is a thorough professional. He is a very good academician, and we have to go by that also. So that's why this investigation has been handed over to the crime branch.
0: But I want to ask you, overall, is the BJP finding itself very, very torn about how to deal with this issue? And in this context, I want to talk about this meeting that Mr. Nadda, earlier he met these anti-reservation protesters, this one faction of the anti-reservation protesters, and now he has met another group of them. So on the 20th of September at 11 minutes past 2 in the morning, 2:11 AM, believe it or not, Mr. Nadda tweeted this picture and he said, "Aaj mere awaaz par meri aur Jitendra Singh ji ki UGC rollback." सवर्ण महापंचायत समिति के संस्थापक राज शेखावत और कुछ और लोगों के साथ मीटिंग हुई है करनी सेना के साथ एंड उनके प्रतिनिधि मंडल ने 20 सितंबर 2026 की महापंचायत को स्थगित करने का निर्णय लिया है। सो महापंचायत वाज सपोज्ड टू टेक प्लेस ऑन द 20th, बिफोर दैट मिस्टर नड्डा गोज एंड मीट्स दीस पीपल। व्हाई आर दीस सीक्रेटिव मीटिंग्स बीइंग डन 2:11 इन द मॉर्निंग मिस्टर नड्डा इज ट्वीटिंग, व्हाट्स हैपनिंग?
5: It's not secretive. If it was secretive, you would not known about it because he himself has tweeted it. But interestingly, on that day, Saturday, I interviewed him. I was there at his residence for 3 hours and I got no inkling. There was no indication that such meeting was going to take place. But of course, later in the night, as you were mentioning,
0: तो secretive ही हुई ना फिर आपको पता ही नहीं चला।
5: फिर बाद में जब tweet आया तब पता चला कि ऐसी-ऐसी meeting हुई है। तो वो इसलिए रात में करनी होगी क्योंकि next day, 20 September को वो महापंचायत करने वाले थे। सो बिफोर दैट महापंचायत दिस मीटिंग
0: सो गवर्नमेंट इज फाइंडिंग इटसेल्फ ऑन द बैक फुट
5: एंड इंटरेस्टिंगली द ट्वीट इटसेल्फ सेज दैट यूजीसी रोल बैक के ऊपर ऑन द इशू ऑफ द यूजीसी रोल बैक बिकॉज वी नो दैट दिस यूजीसी इट हैज इमिटेड फ्रॉम रोहित तिमुला सुसाइड एंड आफ्टर दैट नाउ दिस इज अ रिसेंट केस एंड वी हैव सीन दैट हाउ बीजेपी हैज फेस लॉट ऑफ प्रोटेस्ट इन उत्तर प्रदेश इन बिहार इनफैक्ट बाकीपुर असेंबली बाय इलेक्शन रिजल्ट इट इज ऑल्सो एट्रीब्यूटेड टू द
0: एंड मेनी पीपल से इवन द लोकल बॉडी इलेक्शन इन राजस्थान
5: दैट्स करेक्ट एंड दैट्स व्हाई दिस वाज वेरी sensitive issue for the BJP. We know the legal position. BJP, the government says in the Supreme Court, they have told very clearly that they're going to review the entire UC guidelines. We know that Supreme Court itself has stayed imposition of this guidelines. But there was a major decision taken by the Modi government to amend earlier guidelines. Why? Because what is happening today in IIT Bombay? This is the reason. Why? Because they understand that these things are there. Maybe they are undercurrent. But these issues need to be addressed.
0: Okay.
5: That's why they decided it.
4: There was an RTI application which was filed last year, which actually raised this question, Padmaja, that in the last decade, how many suicides, how many student suicides have happened at Indian Institutes of Technology campuses across the country? A total of 20 suicides were reported, where IIT Madras, by the way, was topmost on that list. The problem is that you are now looking at a scenario where you've had the UGC fiasco, you've had the NEET fiasco, you've had the Class 12 fiasco. On top of this now comes a scenario wherein country's preeminent educational institution, which is the Indian Institute of Technology, suddenly this caste-based story is now playing itself out. You have a few months to go before UP elections, but both in UP and in Punjab, Dalit population, Dalit vote base, hugely significant. You've spoken about Mayawati. I mean, just imagine the scenario. Suppose Mayawati tomorrow decides that she's now going to go and speak to the parents outside the campus of IIT Bombay. Can you just imagine the level of political temperatures that will rise? That's why the BJP is stuck. But what I'm position to take?
3: But I'm sure Mayawati will not.
4: She has other problems right now in her family, which is different.
2: Maharashtra leke mujhe
5: she didn't go to Maharashtra.
2: सबसे बड़ी परेशानी देवेंद्र फडणवीस के लिए, देवेंद्र फडणवीस विदर्भ से आते हैं, नागपुर से आते हैं, नागपुर में संघ मुख्यालय, नागपुर में अंबेडकर साहब ने दीक्षा भूमि ली थी। लोकसभा चुनाव अगर आप देखेंगे 2024 का, तो पूरे विदर्भ में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ एक सीट मिली थी अकोला की, बाकी सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। और देवेंद्र के बारे में परसेप्शन महाराष्ट्र में बेसिकली है कि देवेंद्र वही फैसला लेते हैं जो RSS कहते हैं, संघ जिनको कहता है। तो देवेंद्र के सामने बड़ी चुनौती है और संघ कभी नहीं चाहेगा कि महाराष्ट्र के अंदर, खासतौर से विदर्भ में, दलित बनाम सवर्ण इस तरीके से मामला वहाँ पर फिर शुरू हो। तो देवेंद्र को मतलब आप बहुत संभल के, और दूसरा क्या, अभी जो मनोज जरांगी का आरक्षण का जो आंदोलन को लेकर उसने मुंबई कुछ का प्लान किया था, उसने विड्रॉ कर लिया, उसको लेकर भी कि मराठा को कुनबी में आरक्षण देने का सरकार ने फैसला लिया है, उसमें दलितों के एक वर्ग में नाराजगी है, तो वो एक भी नाराजगी बनी हुई है, ऊपर से ही अलग नाराजगी। तो देवेंद्र को देखना है कि कैसा ना हो कि इस मामले में दलित सड़कों पर उतर
0: कर खुद जनरल कास्ट से भी है, लेकिन का जिक्र किया है, वांट टू प्ले आउट, दिस इज द आयरनी दैट ऑन द वन हैंड द बीजेपी गवर्नमेंट हैज गॉन एंड बुक्ड दिस प्रोफेसर अंडर द SC/ST एक्ट एंड लिसन टू व्हाट दत्त Osable is talking about Hindu society as a whole and the whole issue of caste. Listen.
6: समाज को संगठित होना है तो अपने आपस के भेदभाव को भूलना पड़ेगा। मैं इस जाति का हूँ, पंथ का हूँ, भाषा का हूँ, प्रांत का हूँ, मैं उत्तर भारत का हूँ, मैं दक्षिण भारत का हूँ, इसलिए मैं अलग हूँ। इस भेदभाव से, एक दूसरे के साथ अलगपन से हम अपने संगठन के जो स्वभाव है वो नहीं रखने से ताकत नहीं रहेगी।
0: What's going on? RSS is saying one thing, BJP the other. At least you want to say something.
5: BJP बहुत फाइन बैलेंस करके चलना पड़ रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश में जो हुआ, BJP को इस बात का एहसास है कि जो कोर वोट उसका है उसको नाराज नहीं कर सकती है। इसीलिए आपने जो JP नड्डा की मीटिंग का जिक्र किया, ये मीटिंग इसीलिए हुई, ये तीसरी मीटिंग है इस तरह की। कि जो आरक्षण के बारे में जो आवाज उठा रहे हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई, इससे पहले
0: बजट तो बैलेंस कैसे कर रहे हैं SC ST एक्ट के अंडर बुक करके आप बैलेंस कैसे करेंगे? तो नाराजी होंगे ना जनरल कास्ट
5: के। बाद में आया ना, ये तो इशू अभी आया है। मैं उस मीटिंग की बात कर रहा हूं जो सैटरडे को हुई है, उसमें जो हुआ और जो बात RSS के सर जनरल सेक्रेटरी कर रहे हैं होस भोले जी, वो यही कह रहे हैं। देखिए RSS तो बहुत लंबे समय से आप जानते हैं कि सामाजिक समरसता की बात करते हैं, जो उनका शताब्दी कार्यक्रम चल रहा है उसमें एक ये विषय है कि एक गांव में एक कुआं एक शमशान होना चाहिए।

0: यानी सोशल जो कास्ट का इस तरह से आप ब्रेकअप करते हो वैसा नहीं होना चाहिए। तो आरएसएस का एक एजेंट आई तो काम पे उससे लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन जो रियल पॉलिटिक है वो यूपी चुनाव को लेकर के है, वो चैलेंज बीजेपी के लिए है। इसलिए बीजेपी के एक बड़े नेता से मेरी बात हो रही थी अभी 3-4 दिन पहले ही, उन्होंने कहा कि हाँ हम इस चैलेंज को मानते हैं कि हमारे लिए एक चुनौती है, ये जो परिस्थितियाँ बन गई यूजीसी गाइडलाइंस हों या इस तरह के विषय आते हैं, इसलिए हम इसको एड्रेस करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और आप ये देखेंगे, उन्होंने ये विश्वास व्यक्त किया कि आप ये देखेंगे कि अगले कुछ महीनों में स्थिति बदलेगी।
1: Organization is finding itself in a bit of a bind is quite apparent from the fact that you just heard Dattatreya Hosable saying there shouldn't be divisions of this kind, and the ABVP in the case of IIT Bombay case has expressed solidarity with the parents of Sahil Wakode. From one campus to another, the results of the Delhi University students election has been quoted as a barometer of the mood of India's youth by the BJP. They are saying Gen Z hamare saath hai. And it's understandable given that not only did the RSS's students wing ABVP win on 3 out of 4 seats on the panel, but for the first time in many years, the NSUI drew a blank. The vice president's seat also was won by an NSUI rebel, Dipanshu Shokin, who has now said that accountability should be fixed within the Congress for what he calls dirty internal politics. Interestingly, the CJP, which had been the face of the Gen Z protest just months ago at Jantar Mantar, has dismissed this result as nothing but what comes from money power.
2: जो मैंडेट आया, स्टूडेंट्स किन को चाहते थे और क्या वोटिंग परसेंटेज किस तरीके से मैंडेट आया, वो साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं टिकटों में गलती हुई और इनकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी लेनी चाहिए लोगों को कि उनसे गलती हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं 3 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट NSUI से लड़े और उनको ठीक ठाक मैंडेट, मतलब अच्छा मैंडेट हम लोगों को मिला, तो ये साफ दर्शाता है कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी वो बहुत ज्यादा हुई।
3: नहीं, चुनावों में तो पैसा चलता है, चुनावों में पैसा चलता है, चुनावों में और कुछ नहीं चलता है। डीयू में जो कैंपेन होते हैं, रोल्स रॉयल्स की गाड़ियों में आते हैं लोग, रोल्स रॉयल्स वो गाड़ी करोड़ों की नीचे नहीं आती है, ऑडी में आते हैं, BMW में आते हैं, तो चुनावों में बस पैसा चलता है।
1: विनोद जी, क्या ऐसा है कि कन्हैया कुमार के ऊपर एक्शन होने वाला है?
4: कन्हैया कुमार लाइन ऑफ फायर में तो है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी कन्हैया कुमार को के ऊपर इसलिए डाली जा रही है कि वो इंचार्ज है NSUI के, और इस बात को लेकर पार्टी के अंदर NSUI में बहुत असंतोष है कि भाई आपने ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी दी हुई जिसका NSUI से कभी कोई लेना देना नहीं रहा, जो व्यक्ति जिसकी स्टूडेंट पॉलिटिक्स पूरी NSUI के विरोध पे खड़ी थी, जो लेनिन और माओ को पढ़ करके पॉलिटिक्स करता था, वो गांधी और नेहरू की जो पार्टी है उसको कोई सिस्टम नहीं मालूम, कोई स्ट्रक्चर नहीं मालूम है, और बल्कि कहानी ये है इंटरनल कि वो कैंपस गए भी नहीं कैंपेन करने के लिए,
1: कन्हैया
4: बहुत बहुत लास्ट में शायद गए होंगे, और मीटिंग हुई केसी वेणुगोपाल के यहाँ जिसमें ये सारे नेता, इवन सचिन पायलट, दीपेंद्र हुड्डा, ये सारे मौजूद थे, उनसे जब कहा गया तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं क्यों जाऊँ, तो सचिन ने कहा और दीपेंद्र ने कहा कि भाई हम जाके नारे लगाते हैं अपनी NSUI के लिए, ABVP के बीजेपी के नेता आते हैं तो आप जाने में क्या दिक्कत है, और इसलिए इस वक्त पूरा जो असंतोष है इस पूरे उसका, क्योंकि पहली बार एक तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कंपोजिशन है इलेक्शंस का वो लोकल्स वर्सेस आउटसाइडर्स रहता है हमेशा। लोकल्स मतलब जो अपने को नेटिव मानते हैं, यहाँ के जो गांव जो जाट गुजर और लोकल जो स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली वो डे स्कॉलर्स हैं, उनका डोमिनेंस रहता है। तो हमेशा पैनल्स देखे जाए, ABVP का हो चाहे NSUI का हो, इन कम्युनिटीज़ को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलता है। इस बार कांग्रेस के जो पैनल हुए NSUI में थे ही नहीं, मीणा, उसके बाद ये चतरथ,
1: और कांग्रेस कह रही है बट हमने एक ट्राइबल लीडर को मौका दिया,
4: ट्राइबल लीडर को मौका दिया, वो अच्छा लड़ा भी नो डाउट, लेकिन अगर बैलेंस बना के चलते, मान लीजिए शौकीन को, जो शौकीन से कहा गया प्रेसिडेंट लड़िए, उसने कहा मैं प्रेसिडेंट नहीं लड़ूंगा क्योंकि उधर से दबास है, दो जाट लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे, उसका अपना गणित था, तो वो वाइस प्रेसिडेंट लड़ना चाहता था, इन्होंने कहा वाइस प्रेसिडेंट मत लो। ये जो रहा कि आपका अपना आदमी जो रिवेल होकर जीत रहा है, तो इसलिए,
1: और एक ही नहीं दो रेबल थे,
4: दो रेबल, वो यादव, विजय यादव वो भी आपका ही था, अगर आप यादव, जाट, मीणा सबको बैलेंस करते हैं तो शायद नतीजे कुछ आपके फेवर में।
1: और इनफैक्ट विशेष यादव जो कि जॉइंट सेक्रेटरी के पोस्ट पे लड़े हैं, ही वाज बैक्ड बाय द समाजवादी छात्र सभा,
4: वो तो लास्ट पॉइंट,
1: एंड इवन ही गॉट मोर वोट्स देन द
5: NSUI। NSUI के जो प्रेसिडेंट है विनोद जाखड़, अभी वो राजस्थान से बेसिकली आते हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग रहा कि जब शौकीन को टिकट नहीं मिल रहा था तो उसकी पैरवी दीपेंद्र हुड्डा ने की, तो दीपेंद्र हुड्डा ने सचिन पायलट को फ़ोन किया क्योंकि सचिन पायलट भी राजस्थान से और जाखड़ उसके बहुत अच्छा परिचय है, तो उन्होंने कहा कि भाई आप उससे बात करो, उपाध्यक्ष पे इसको दो या

0: कौन जीतेगा, आप इसको टिकट दिलवाइए। सचिन पायलट ने इसको फ़ोन किया जाखड़ को जो NSYI के अध्यक्ष है, तो उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में नहीं है, इसमें कन्हैया कुमार ने तय किया है और मैं इसमें तय नहीं कर पाऊंगा, मैं नाम रिकमेंड कर सकता हूं, मेरा नाम रिकमेंड किया हुआ है। सचिन पायलट ने कन्हैया कुमार को भी फ़ोन किया उस संदर्भ में पूछने के लिए, तो कन्हैया कुमार को बोला कि नहीं, आप उस मामले में मत पड़िए, मैं वहाँ की पॉलिटिक्स को बहुत बेहतर समझता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की, कि वहाँ क्या स्थिति है और जिसका नाम रिकमेंड कर रहे हैं उसको थोड़ा ईगो प्रॉब्लम है, तो उस बार उसका इलेक्शन के बाद उसका ईगो ठंडा हो जाएगा, उसको चुनाव लड़ने निर्दलीय, उसको समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता मतलब NSYI का संगठन क्या है, कांग्रेस की ताकत क्या है, कन्हैया कुमार का वहाँ पर जनसंपर्क क्या है। यह सचिन पायलट को कन्हैया कुमार ने पूरा फीडबैक दिया। उसके बाद सचिन पायलट ने कहा ठीक है, मैं अपना पंजाब चुनाव देखता हूँ, और जब परिणाम आया
1: तो और जितना मुझे याद है हाल फिलहाल में दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द NSYI हैज ड्रॉन अ कंप्लीट ब्लैंक।
2: लुक, वेल यू नो आई एम कंसर्न्ड अबाउट द हेल्थ ऑफ द कांग्रेस पार्टी, इफ अ लीडर ऑफ द स्टैचर ऑफ सचिन पायलट, राइट, हुज फादर वाज इन द कांग्रेस एंड हुज बीन इन द कांग्रेस फॉर सो लॉन्ग, इफ ही हैज टू स्पीक टू कन्हैया कुमार टू बी टोल्ड that you know you don't know the politics
3: of Delhi
2: of Delhi and Delhi he knows the politics of Delhi, so let's just
1: in fact a lot of people are saying that this is the
3: by quote congress dusu ki ek former president ne mujhse kaha singa kanhaiya ne 8000 students ki politics ki hai dusu mein
4: JNU mein
3: aur dusu mein more than 60,000 to vote padte hain to jaga former president ne mujhse kaha hum log jante hain lekin hamari suni nahi gayi humne कहा क्या करना चाहिए लेकिन कन्हैया कुमार ने बिल्कुल नहीं सुनी। और पंजाब में जो हारी है कांग्रेस
1: पंजाब इलेक्शन में हारे और बाय द वे ड्यूरिंग द दूसरा इलेक्शन द ABVP's पंजाब यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट वाज राइट देयर, ही वाज देयर एट द फोरफ्रंट ऑफ कैंपेनिंग, सो दे गॉट हिम फ्रॉम हियर।
2: अगेन देयर आर टू वेज टू लुक एट दिस पदम जो वन, आई मीन इफ यू आर सेइंग दैट इज दिस अ लार्जर रिफ्लेक्शन ऑफ अ नेशनल मूड, देयर हैव बीन इनफ इंस्टेंसेस इन द पास्ट वेयर द पार्टी इन पावर एट द सेंटर, whether it was the Congress or the BJP, their student wings have gone on to lose the elections of students. In 2004 is a great example in point where the BJP lost the election. 2009 is another case where a different party at the center was winning the election in comparison to when it came to the DUSU elections. I think specifically in this election, what stands out to me is very clear. Rahul Gandhi has to stop making these experiments with the Congress. As long as he considers the Congress party to be a laboratory of carrying out these political experiments, this is what you will get.
1: But 2003,
2: why is Kanhaiya Kumar? Tell me, what is it about Kanhaiya Kumar other than that great nara which you and I both covered when he was in JNU? Awaaz do hum ek hain, right? Leke lehenge, leke rehenge, kya leke rehenge, azadi. Now, the high of that slogan to now in 2026, if Kanhaiya Kumar has been empowered in the Congress party to this degree where he can tell Sachin Pilot, as Samir is saying, I think the lesser
1: said about the 2003, the NSUI had won a majority of the seats, yes, in DUSU, and then they came to power at the center. 2013, ABVP won a majority of seats in DUSU, and they came to power. So which is why the BJP is so happy. They are seeing this as an indication of
5: things. Padmaja, agar abhi ulta result aata, ki teen NSUI, ek independent, to kya baat ho rahi hoti desh mein? Kya discourse chal raha tha? Khatam ho gaya ji.
3: Bilkul, bilkul.
5: Sab finish hai, 2029 ka result aa gaya. सब डिसाइड हो गया है 2029 में क्या होने वाला है। जिस दिन राहुल गांधी इंदौर में छात्रों की गूंज कर रहे हैं उस दिन दूसरों के वोटों की गिनती हो रही है और जमीन आसमान का अंतर दिख रहा है। खबर तो ये भी आ रही, विनोद जी बताएंगे कि राहुल गांधी ने तुरंत मंच से उतर के जानकारी ली कि क्या रिजल्ट आया, फिर फ़ोन करके अपनी नाराजगी व्यक्त की, कहा कि मुझे रिपोर्ट दीजिए, ये सब बातें भी आई हैं। लेकिन आप ये बताइए कि एक तरफ बीजेपी RSS का जो छात्र संगठन ABVP वो 3 सीटें जीत रहा है और वहां पर राहुल गांधी दूसरी तरफ ये कर रहे हैं। आप इससे क्या पता लगता है कि जो JNZ को लेकर के माहौल पूरे देश में बनाया जा रहा है कि सरकार से नाराजगी है, ये जनरेशन वो है जिसने कि बीजेपी की सरकार के अलावा कोई सरकार अभी तक देखी नहीं है, उसके पास कंपेयर करने के लिए मोदी 1.0 से मोदी
1: 3.0 की है। दिस इज ओनली अबाउट मनी पावर, ये लोग सब लंबोर्गिनी में घूमते हैं। बाय द वे आई वांटेड टू शो यू अ फ्यू विजुअल्स, लंबोर्गिनी में सब लोग लंबोर्गिनी डिफेंडर NSUI what have you, everyone was going around in Lamborghinis. I mean seriously, I have not seen an election campaign like this. Look at this, even Dipanshu Shokin, some of the cars which were campaigning for Dipanshu Shokin, this new age campaign that we saw here, some pretty big cars there for all, ek tractor bhi tha but kuch badi badi gaadiyan bhi thi.
3: Shokin ne jo nange par campaign kiya,
1: ha unhone kaha ki jab tak satya niketan ke liye usme justice nahi
5: hai, uska background bhi bahut
3: humble hai, congress mein
1: DTC conductor
3: congress mein debate chal rahi hai iske baad ki congress ye keh rahi hai ki BJP mein log outsiders aate hain lekin sangathan ki zimmedari unko nahi di jati hai, wo sarkar pe ban jayenge, mukhyamantri ban jayenge, जैसे हेमंत विश्व शर्मा चीफ मिनिस्टर बन गए बट कभी बीजेपी असम के अध्यक्ष नहीं बने, शुभेंदु अधिकारी बंगाल के अध्यक्ष नहीं बने, चीफ मिनिस्टर बन गए, संगठन वो अपने ही ओरिजिनल जो आइडियोलॉजिकल जो लोग हैं उनको देती है।

0: संदीप पाठक को दिया उन्होंने संगठन,
1: मनोज तिवारी को यहाँ पर बनाया था,
0: संदीप पाठक को बना दिया उन्होंने सेक्रेटरी,
1: अभी संदीप पाठक को उन्होंने सेक्रेटरी बनाया है,
2: लीडिंग
0: ज्यादातर
2: लीडिंग रोल की बात हो रही, जैसे अब कन्हैया को इंचार्ज बना दिया पूरा, माई बाप कर दिया, वहां कंट्रोल भी तो रहता है, मनोज तिवारी अपने मन से कुछ थोड़ी कर सकते हैं, क्या मनोज तिवारी की हैसियत थी कि पीयूष गोयल फोन करें या कोई करे और कहेंगे नहीं करेंगे, जैसे कन्हैया को सचिन पायलट को किया, ये नहीं कर सकते थे ना।
0: और वैसे भी जो वीर चतरथ की बात हो रही है, मनीष चतरथ क्या है, वो रहेंगे क्योंकि मेनी पीपल आर बेइंग फॉर हिज हेड, उनको हटाया जाए,
2: इसकी भी मिसहैंडलिंग हो रही है, लोग ये कह रहे हैं, मैं तो बहुत बात की कि अगर मनीष चतरथ को समझा दिया जाता ढंग से कि भाई देखो आपका बेटा भी नया आया है उसको अगले साल दे देंगे, इस बार शौकीन को देने दो, तो शायद वो मान जाते, उनसे किसी ने बात ही नहीं की,
0: तो इंदिरा भवन के इंचार्ज हैं, ऑफिस इंचार्ज,
2: हाँ ऑफिस इंचार्ज इंदिरा भवन के, और कहा जाता है कि प्रियंका गांधी के काफी क्लोज हैं वो, तो इसलिए भी उनका एक वेट है, लेकिन माना जाता है शरीफ आदमी, भले आदमी अगर उसको कन्विंस किया जाता पार्टी, ये कन्हैया कुमारी कन्विंस करते या केसी वेणुगोपाल कोई बात करे तो मान जाते
3: हैं। Then it would have meant, oh, it's a big vote against the BJP. My point is, well, the ABVP has done well in Punjab, right? Is Akhilesh going to say that ABVP, because ABVP has done well in Punjab, the BJP conversely will do very well in the Punjab.
1: नहीं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का मामला डिफरेंट है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को आप पंजाब से जोड़ के नहीं देख सकते, इससे बड़ा बिल्कुल क्लियरिटी, क्योंकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा बाहर के राज्यों के बच्चे पढ़ते हैं, ये नहीं कि वो वहाँ पे पंजाब के ज्यादा करके लोग आ रहे हैं, तो इसलिए उस रिजल्ट को पंजाब से जोड़ना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन उसमें एक इंडिकेशन मिला है कि अकाली दल का जो छात्र संगठन था उसने सपोर्ट कर दिया एबीवीपी का वहाँ पर इलेक्शन में, तो वो एक इंडिकेशन दे रहा है कि शायद आगे जाके इनका
0: आगे जाके अलायंस हो जाएगा।
4: चंडीगढ़ में बीजेपी सांसद जीत रही थी लेकिन पंजाब में जीत पाती, चंडीगढ़ में कॉर्पोरेशन बीजेपी बना रही
1: है, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस नहीं होता मनीष तिवारी फिर जीत पाते क्या?
2: एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है कि आसाम में अभी बीजेपी जीती है बहुत थंपिंग मेजोरिटी से, और डिब्रूगढ़ में हार गई स्टूडेंट इलेक्शन में,
3: वहाँ जो
2: अब डिब्रूगढ़ स्टूडेंट व्यू अब उसको क्या करेंगे,
3: यू बीन टू दिल्ली यूनिवर्सिटी,
2: व्हाई नो
3: हाउ दीस इलेक्शंस आर कंडक्टेड, आई वांट टू नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु आर यू नो हु आर स्टडीइंग फिजिक्स ऑनर्स केमिस्ट्री ऑनर्स इंग्लिश ऑनर्स आर एक्चुअली
1: पार्टिसिपेटिंग। इसका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का हो गया, राजस्थान के लोकल बॉडी के इलेक्शन हो गए और दूसरों को रिजल्ट आ गए, तीनों जगह आप रिजल्ट क्या बता रहे हैं आपको कि जो बात किया जा रही है कि देश में माहौल बन रहा है, जैसे नाराज है ये
0: बट वन कुड आल्सो आर्ग्यू दैट पीपल आर डूइंग फिजिक्स ऑनर्स एंड केमिस्ट्री ऑनर्स बट आल्सो नॉट सिटिंग एट जंतर मंतर, सो इफ यू आर टेकिंग जंतर मंतर एज अ बैरोमीटर ऑफ द पब्लिक मूड देन इक्वली डूसो कुड आल्सो बी अ बैरोमीटर ऑफ द पब्लिक मूड। बट स्पीकिंग ऑफ मूड, लेट्स टॉक अबाउट लाइक अखिलेश जी जस्ट मेंशनड द छात्रों की गूंज, आयरोनिकली ऑन द डे व्हेन द डूसो रिजल्ट्स केम आउट विद इन एन आवर ऑफ दैट अबाउट 5:30 the results came and around 6:30 7:00 Rahul Gandhi addressed the 5th edition of Chhatron Ki Goonj, this time it was in Indore. Now basically he made the point at that rally that this system is being run by 5 to 6 people and this system does not want students, it only wants andhbhakts. His logic was that students are inconvenient, they ask questions and that is why the system wants the unquestioning loyalty of andhbhakts. Now the political attacks were understandable but what seems to have got under the BJP skin is a little comedy routine that was woven into the program.
5: और बताइए, और बताइए थोड़ा। माँ को कुर्सी दो, माँ, माँ। और बताइए थोड़ा। माँ को कुर्सी दो, माँ, माँ।
6: बुजुर्ग माताजी को चेयर दे दीजिए भाई, ये बुजुर्ग माताजी को चेयर दीजिए। एक कुर्सी दे दीजिए माता जी को। हाँ माँ बैठिए, माँ बैठिए, आप बैठिए, बस आपका आशीर्वाद मिल गया मुझे।
7: सुर्खियों में बने रहने के लिए बुजुर्ग माँ पर एक और प्रधानमंत्री उनको कुर्सी देने की बात करते हैं, उनका ध्यान रखने की बात करते हैं, तो दूसरी ओर राहुल गांधी के मंच पर एक बुजुर्ग महिला को, एक माँ पर जिस तरह का तंज और टिप्पणी कसी जाती है वो कांग्रेस के संस्कारों को दिखाता है।
8: राहुल गांधी जी ने तो प्रधानमंत्री छोड़ दिए, किसी की माँ का जिक्र नहीं किया, और जब बड़ी बात करोगे तो फिर खोल के रख दूंगा, किसने राहुल गांधी की मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में किया था। बात चलेगी तो मैं बता दूंगा, सच तरूर की गर्लफ्रेंड 60 करोड़ की किस मोदी ने कहा था।
0: समीर जी, कांग्रेस कह रही है इसमें क्या बुरा है, ये तो पॉलिटिकल सटायर है।
4: नहीं, मुझे लगता है गलत है राहुल गांधी को इस बात को। मुझे लगता है कि प्रोग्राम होने के बाद जब राहुल गांधी को रियलाइज होना चाहिए था कि जिस तरीके से वो फूड कॉमेडी की गई थी, वो उसके लिए राहुल गांधी को माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। देखिए, इंदौर में कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, भीड़ बहुत अच्छी राहुल गांधी की आई। इंदौर में 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी का कॉरपोरेशन है, 3 दशक से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, कांग्रेस का कोई बहुत ग्राउंड मालवा में नहीं है। उसके बाद इतनी भीड़ इकट्ठी होना राहुल गांधी की, उसमें ये एक उपलब्धि मैं मानता हूँ कि वहाँ पर इतने स्टूडेंट्स आए, लेकिन उस टेम्पो को राहुल गांधी
0: तो मतलब मूड उनके फेवर में था वहाँ पे। अब हम क्या कह रहे हैं कि इंदौर में मूड था राहुल गांधी का नहीं था।
4: भी आया, यूथ बड़ी संख्या में आया, जहाँ पर आपका ग्राउंड नहीं है, जहाँ की आपकी सरकार नहीं है।
0: बीजेपी कह रही है सारे एनएसयूआई वाले लोग बुलाए हुए हैं वहाँ पे, स्टेज पे एनएसयूआई के लोग थे।
4: नहीं, मुझे इतना बड़ा भारतीय, अगर कांग्रेस का इतना बड़ा संगठन होता तो कांग्रेस इतनी बुरी मालवा के अंदर प्रदर्शन नहीं करती। मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स आए होंगे, मैं इस बात को मानता हूँ। और वैसे भी अगर देखें तो राहुल गांधी का 5वां प्रोग्राम था, पहला कोटा में हुआ, उसके बाद उन्होंने देहरादून में किया शायद, उसके बाद उन्होंने प्रयागराज में और पूना में किया। कोई भी, मुझे लगता है राहुल गांधी का प्रोग्राम ऐसा नहीं रहा जिसमें किसी ना किसी तरह की कंट्रोवर्सी ना हुई हो। राहुल गांधी या तो अपने स्पीच में कंट्रोवर्सी की या इस तरह से की। राहुल गांधी को इससे बचना चाहिए था। राहुल छात्रों से बात करने के, आप छात्रों की बात करते हैं, इस तरीके से बात करके मुझे लगता है एक अच्छा मैसेज राहुल गांधी
0: का। अखिलेश जी, सेम डे 2 थिंग्स हैपेंड, डूसू रिजल्ट्स एंड दिस। समीर जी इज सेइंग बहुत हेल्दी टर्नआउट था, आप किसको माने हम, मूड राहुल गांधी का है या डूसू का है?
1: देखिए, तमाम तरह की कोशिशें हुई, कांग्रेस कहती रही कि काफी अड़ंगे लगाए गए, एमपी की जो बीजेपी सरकार उसकी ओर से पहले परमिशन को लेकर के बवाल काटा गया, उसके बाद फिर ये कहा गया कि जो बच्चे जा रहे हैं उनको हॉस्टल से पत्र लिख दिया गया कि आप जाएं तो उनकी लिस्ट बनाइए, उनसे अंडरटेकिंग लीजिए, कीजिए वो कीजिए। तो कांग्रेस का ये कहना कि काफ़ी रोड़े अटकाए गए, इसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, तो इस लिहाज से आप देखिए तो मैं समीर जी की बात से सहमत हूँ। लेकिन आप मैसेज क्या दे रहे हैं? क्या आपका गोल ये है कि आपको सोशल मीडिया पर वायरल होना है, कि आपको एक कंटेंट क्रिएटर बनना है, या आपको देश को लीड करना है? ये दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा अंतर है। तो कंटेंट क्रिएशन तो हमारे देश में बहुत बड़ी एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, बहुत लोग उसमें काम कर रहे हैं। तो एज ए पॉलिटिशियन आपको क्या करना है, आपको एक मैसेज देना
0: है? एज ए पॉलिटिशियन ही सेइंग दैट योर फॉरेन पॉलिसी इज ओनली अबाउट दिस हग प्लॉमिसी,
1: व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? अगर आप किसी को हक कर रहे हो तो उसमें गलत क्या है? कोई गलत है क्या? किसी ने गलत बोला? सामने लोगों ने किसी ने ऑब्जेक्शन किया क्या कि हमें क्यों हक कर रहे हो? किसी ने हक करने से मना किया क्या? ये अपने अपने तरीके होते हैं, मैनरिज्म होता है पॉलिटिक्स में। कोई अपने, कोई हाथ मिलाता है, कोई गले मिलता है, कोई किस तरह से मिलता है, वो सबके अपने अपने तरीके हैं, ये उनका अपना तरीका है, और उससे कोई नुकसान हो रहा है क्या?
3: See, there are two things which are very clear. Rahul Gandhi's basis, the very edifice of Rahul Gandhi's politics today is to hit out directly against Narendra Modi at any cost. It, even when he wants to criticize, let's say he wants to criticize his foreign policy. One is that he starts getting into the academic side, that what is wrong with India's foreign policy, and you can legitimately say that there are enough questions which can be raised, but that is not what is driving Rahul Gandhi today. Just a couple of days back, I was speaking to someone very, very close to Mr. Gandhi, who's also associated, let's say, a critical part of his brain trust, so to say. He told me very, very clearly that for a person who's been lampooned for the last 12 years, for a person against whom there was an entire sort of industry that was created to convert him into a pappu, you know, nobody calls him pappu now, nobody is now dismissing him the way he was being dismissed earlier, that he has seen such lows in Indian politics that he can't go any further. Now, this is the conviction that Rahul Gandhi has, that what do I have to lose?
0: So he thinks this is working.
3: Now, in his mind, he thinks that he's rattling the BJP. Now, what is happening on the BJP side? All cabinet ministers are now responding, oh, Rahul Gandhi is saying wrong, this, that, you know. He thinks he succeeded.
0: But in the public mind, you think this is not a self-quote.
3: Will it now lead to the electoral needle moving? I think that's a separate
1: question. I was interviewing Hardeep Singh Puri, who is a senior cabinet minister. तो बोले कि मुझे ये लोग बोलते कि आप क्यों कमेंट करते हैं राहुल गांधी के ऊपर? बोले हम इसलिए करते हैं कि उससे हमें फायदा होता है, राहुल गांधी तो हमें फायदे पहुंचा रहे हैं ना, ये उनका अपना असेसमेंट है, तो आप इसका क्या करोगे?
3: Both sides are now claiming victory.
0: तो वो कह रहे हैं कि ये ऐसी हरकतें करके बीजेपी को फायदा होगा।
1: अगर आप ये बोल रहे हैं कि माँ को लेकर के आप उठा रहे हैं विदाउट गोइंग टू द कॉन्टेस्ट कि किस बारे में पीएम मोदी ने कहा, किसके बारे में कहा, आप ये मजाक बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो एक गलत मैसेज जाता है ना कि भाई आप क्या कहना चाह रहे हो। इससे पहले जो एक कॉमेडी वाला एक्ट हुआ था जिसमें संदीप दीक्षित ने, उसमें तो अगर वो तो ठीक है, मैच्योरिटी इसको हैंडल कर लिया गया,
0: मतलब ये तो मेलोनी पकड़ के,
1: ये तो मतलब समझ के बीच में रिश्ते खराब कर सकता
3: है। अब होने वाला यही है, लेट मी बी वेरी क्लियर, यू नो, इफ यू थिंकिंग दैट सडनली बिकॉज द बीजेपी में थिंक दैट राहुल गांधी मेकिंग ऑल दीज अटरेंसेज इज हेल्पिंग अस, राहुल गांधी इज बैकिंग ऑफ, नो, लेट मी अश्योर यू एंड आई एम हैप्पी टू शेयर दिस विद योर व्यूअर्स, इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स द होल प्लान इज दिस छात्रों की गूंज, द लेवल ऑफ अग्रेशन is going to be enhanced even more. Particularly when it comes to, let's say, campaigning. Abhi he'll start campaigning now in Punjab. There's a big bus yatra which is being planned. Punjab is a land of satire, is a land of song, is a land of, you know, I mean, poetry. So, you know, just brace yourself up.
0: Well, he'll have an able opponent in Bhagwan Mann. Bhagwan Mann professionally.
3: He's a chief minister. So you can well imagine.
2: Actually,
1: look. We're practicing it.
2: Rahul Gandhi, who Bhupen ne kaha, main usi baat ko endorse karta hu. Rahul Gandhi ko pappu banaya BJP aur uske pure ecosystem ne. Ab usi ko Rahul Gandhi revert kar rahe hain. Wo usi tarah ka attack Narendra Modi ji pe kar rahe hain Prime Minister pe ki wo batana chahte hain bhaiya ye hain ye. To wo bilkul counter attack hai. Aur ye bilkul sahi kar rahe hain itne low level pe jaane ke baad pappu aur ye wo reluctant politician sare jitne bhi visheshan ho sakte sab dalenge. To wo jitna nuksan hona tha Rahul Gandhi ka wo ho chuka hai. इसलिए उनको मालूम है कि अब हमें अटैक करना है अग्रेशन का तो ये उनकी स्ट्रेटजी है इसीलिए जो संदीप दीक्षित वाला प्रोग्राम हुआ था उसके बावजूद भी इंदौर में किया ना वो सेम हगिंग हग्लोमेसी को उन्होंने अटैक किया
0: सो दिस इज गोइंग टू बी द टेम्पलेट फ्रॉम वेदर इट इज अग्रेशन और सेल्फ गोल द पीपल विल अल्टीमेटली डिसाइड
2: हरदीपुरी को खराब लग सकता है हरदीपुरी खुश हो सकते हैं कांग्रेस
0: राहुल गांधी को लग रहा है कि ये काम कर रहा है
3: पंजाब में द लोकल यूनिट इज ऑलरेडी बीन टोल्ड टू आइडेंटिफाई कॉमेडियंस जिसको मस्खरा कहते हैं ना हिंदी में टू आइडेंटिफाई दीज पीपल हु विल बी गिवन अ स्टेज नाउ व्हेन अ मस्खरा इज गिवन अ स्टेज व्हाट विल द मस्खरा डू
0: वन प्लेस और वन पर्सन हु डेफिनेटली डज नॉट अप्रिशिएट टू मच ह्यूमर इज राज ठाकरे एंड इट बिकेम एब्सोल्युटली क्लियर व्हेन अ सोशल मीडिया रील दैट वाज क्रिटिसाइजिंग द एमएनएस चीफ ट्रिगर्ड अ शॉकिंग एक्ट ऑफ पब्लिक ह्यूमिलिएशन And this happened in Pune. MNS workers grabbed Marathi content creator Mahesh Mote, blackened his face, forced him to apologize. I want you to first listen in and see for yourself what happened to this gentleman.
9: Kerala ke levarti mitranno, khub chuki je video banavle. Maafi magitli parat ankin chuk zali hinla. Shubham dadala bollo. Mi khar sangto mitranno Maharashtrat rahun. Kadhi tumhi Raj Sahib asu dya kiwa aapla manse paksha asu dya. कधी यांच्याविषयी काय बोलू नका आणि मित्रांनो ह्यांनी कुठली मला गुंडगर्दी दादागिरी नाही केली उलट माझ्यासारख्या वेड्याला माणसानं असं उठायचं काय बी बोलायचं खरंच चूक झाली मित्रांनो
0: So not only was this man's face blackened, he was forced to put two slippers on his head, do uthak baithak, then lie prostrate on the ground in front of a portrait of Raj Thackeray. Samir ji, yahan par Marathi Asmita ko koi chot nahi pahunch rahi hai. Jo log freedom of expression ki baat karte hain, ab unko gussa nahi aa raha hai. Kunal Kamra ke ek show pe galat hua. Jo attack hua for comedy, jo hua wahan Mumbai mein galat hua. Is aadmi ne reel banayi aur iske muh pe kalik pot di jati hai.
2: देखिए पद में जाए तो महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे की पॉलिटिक्स तो ऐसी है मतलब राज ठाकरे ऐसी ही राजनीति करते हैं और राज ठाकरे पॉलिटिकली कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है महाराष्ट्र नरेंद्र सिन्हा के पास एक एमएलए नहीं है एक कॉरपोरेटर नहीं है आपके पास लेकिन राज ठाकरे के पास उसके अंधभक्त जिसे कहते हैं ना मतलब उसके बहुत लॉयल लोगों की बहुत बड़ी फौज है वो हर शहर में मिलेगी
0: भले ही व्हाई इज़न्ट द स्टेट गवर्नमेंट एक्टिंग अगेंस्ट दीस पीपल आर देन गिविंग बाइट सेइंग थिंग्स लाइक यही है मारा एमएनएस स्टाइल है ये क्या एमएनएस स्टाइल है व्हाई दीस पीपल
2: कोई कार्रवाई नहीं होगी मैं आपको बता रहा हूँ ये पहली बार नहीं हुआ है अब अगर आप देखेंगे इंसिडेंट्स तो राज ठाकरे जब से शिवसेना में युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे तब से लेकर अभी तक आप देखेंगे तो ऐसे कम से कम 500 इंसिडेंट्स महाराष्ट्र के अंदर हुए होंगे लेकिन राज ठाकरे पर चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे देवेंद्र फडणवीस की सरकार रही हो कोई सरकार राज ठाकरे पर कभी कार्रवाई नहीं करेगी राज ठाकरे तो रेलवे के एग्जामिनर जब उत्तर भारतीय लोग आते थे महाराष्ट्र नरेंद्र सिन्हा ने कितना उनको पीटा क्या कभी राज ठाकरे को अरेस्ट किया गया
0: आप हमेशा कहते हैं कि हम मराठियों का मुद्दा उठाते हैं पर मराठी अस्मिता के ऊपर राज ठाकरे यानी कि राज ठाकरे पर अगर कोई मराठी बोलेगा
2: personal,
0: तो उसको इस तरीके से ह्यूमिलेट किया जाएगा
2: पर्सनल अस्मिता ऊपर है मराठी अस्मिता से
0: हाँ, अगर, सबसे पहले एमएनएस अस्मिता हाँ, फिर मराठी अस्मिता
1: अगर राज्य सरकार एक्शन नहीं लेती है तो माना जाएगा कि मौन सहमति आपकी एक तरह से आप उसको एनकरेज कर रहे हो एंडोर्स कर रहे हो ये आपको एक्शन लेना ही चाहिए इस तरह के मामले में ये तो आपने देखा कि जो मराठी वाले मुद्दे पे हुआ था कि टैक्सी ड्राइवर को मराठी आनी चाहिए उस मुद्दे को लेकर कितना ज्यादा तूल दिया गया था बाकी जबकि जानते हैं सब कि मुंबई में सब तरह के बाहर के सब तरह के लोग आते हैं सबको रहने का अधिकार वहां पर है इस तरह से आप अगर अपनी हुकूमत चलाने की कोशिश करेंगे
0: बीएमसी इलेक्शन के पहले उद्धव ठाकरे एंड राज ठाकरे हैड शेयर्ड अ स्टेज उद्धव ठाकरे इज साइलेंट टुडे कांग्रेस इज साइलेंट टुडे बीजेपी इज साइलेंट टुडे व्हाई
3: आई विल टेल यू व्हाई यू सी इन द प्रीवियस सेगमेंट यू आर आस्किंग अबाउट राहुल गांधी रेजिंग दिस क्वेश्चन समबडी सेड दैट इज ही अ कंटेंट क्रिएटर नाउ प्लीज अप्रिशिएट in Indian politics for you to remain relevant for you to have this aura that you're relevant and people are going to take you seriously you have to consistently be top of the real charts what
1: nobody
3: Rahul Gandhi is doing in Indore with the stand-up comedian And what Raj Thackeray supporters are doing here is exactly that.
1: It doesn't just translate into votes.
3: It's no,
1: the see, election that's a very clearly. Don't, people don't support such kind of antics.
3: See,
0: but they are allowed to go free. I mean, there must be some support somewhere, right? That even the government is scared of taking action.
3: I'm trying to explain to you that the way Indian politics

0: जंगलों में पकड़ करके जो है
1: ये जंगल राज है, कैंगरू कोर्ट आपने चला रखा है।
2: प्रेसिडेंट का बयान है कि अभी गणपति बैठे हुए इसलिए हमने उसको बहुत छोटा प्रसाद दिया है। अगर गणपति नहीं होते तो वो कल्पना नहीं कर सकता उसके साथ क्या करते हैं।
1: एंड इमेजिन इफ पीपल लाइक दिस आर अलाउड टू रोम फ्री without the fear of consequences, what does it say about the rule of law? Let's turn our focus now to Uttar Pradesh, which is bristling for the mother of all battles. Of course, the rule of law, law and order is going to be a very big issue there as well. Today, BJP President Nitin Naveen started a two-day visit to Western UP to take stock of the election preparation. Dozens of bulldozers lined up at a toll plaza in Meerut to welcome the BJP chief. Meanwhile, is the opposition now close to stitching an alliance in UP, and could the AIMIM be the sutradhar for it? On Sunday, Asaduddin Owaisi asked all like-minded parties in UP to join hands to prevent a third term for the BJP, a sentiment that was then echoed by Congress's Imran Masood.
3: देखिए अखिलेश जी कितने एक्टिव नजर आ रहे हैं, उसके कोई मायने नहीं है। अगर गठबंधन करना है तो उसे फाइनल करने, और नहीं करना है तो फिर हम भी अपनी तैयारी के अंदर जा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के बिना अब माहौल नहीं है कहीं भी, पूरे देश में नहीं है। तो कांग्रेस के बिना चलने की भी मैं सोचेंगे चल सकते हैं, क्योंकि अगर आप कांग्रेस के बिना जा रहे हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कहीं ना कहीं भाजपा को हराना नहीं है। इनसे लड़ाई कांग्रेस के साथ ही हो सकती है, और कांग्रेस ही लड़ सकती है। राहुल गांधी का नेतृत्व ही इनसे पार पा सकता है।
4: हम लोग सूची बनाएंगे और सूची आपके सामने जारी करेंगे और इलेक्शन कमीशन को भी शिकायत करेंगे। ये ढूंढ ढूंढ करके एक भी पीडीए समाज का अधिकारी ना बैठ जाए चुनाव को देखने के लिए, चुनावी संबंधित कार्रवाई कराने के लिए, प्रशासनिक कार्रवाई के लिए ढूंढ ढूंढ करके पीडीए समाज के लोग हटाए जा रहा है। और ये बात अगर गलत हो तो आप बता दीजिए।
5: हम भी चाहते हैं कि तीसरी मर्तबा उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ना बने, और अगर कोई नहीं चाहता है बीजेपी ना बने, नहीं चाहता माने जो पॉलिटिकल पार्टी हो, जो नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी हो, तो ठीक है आप हमसे बात करिए, हम भी आपके साथ सत्ता में बीजेपी को रोकने से तैयार हैं, हम साथ देंगे आपका।
1: कुछ पार्टी से आप बात
5: नहीं, आप जो बातचीत हो रही है अगर कामयाब हो गई तो फिर आपके सामने रखेंगे, मगर ये समझने की जरूरत है कि बीजेपी को आप अकेले नहीं रोक पाएंगे।
6: 2 अक्टूबर तक आपने समय दिया है, 2 अक्टूबर तक बताएंगे आपको।
1: ओके, सो भूपेन, व्हाट्स हैपनिंग इन उत्तर प्रदेश विद द सीट शेयरिंग? इमरान मसूद इज गनिंग फॉर 150।
7: वेल, इमरान मसूद मे बी थिंकिंग दैट यू नो द कांग्रेस पार्टी इज राइट अप देयर और व्हाटएवर, बट आई थिंक द वे द एप्पल कार्ट एग्जिस्ट्स एज ऑफ नाउ, from what I gather both from Akhilesh's camp and the Congress camp, there is a realization that this time there is a genuine chance of a very good fight against Yogi Adityanath. So therefore, between the Congress and the Samajwadi Party, prospect of an alliance very, very bright. But as both of us know, there are enough people in the Congress party who will keep, you know, hedging it, who will keep saying, oh, we become now too big, look at what had happened in Lok Sabha elections. And you remember, I myself had made a statement a few weeks back on one of your shows where I said that if the Congress was really serious, they had to think in terms of something out of box. I anticipate an alliance between the Samajwadi Party and the Congress could certainly take place. When? I do not know, but I think it's certainly work in progress.
1: Could the Congress go with the AIMIM instead?
7: I don't think so. You know, I mean, Congress plus AIMIM in the rest of the country. Can you imagine if Rahul Gandhi, everywhere he goes, he has to stand in defense of what Akbaruddin Owaisi may have said somewhere, you know, 10 years back. Now, that's a view which is being expressed by Imran Masood, and I'm really surprised that Mr. Masood is you know, maybe speaking as part of some collaborative arrangement against Asaduddin Owaisi. But quick number for you. You know, I checked in 2017 assembly elections and in 2022 assembly elections, Mr. Owaisi's party in UP got a sum total of 0.02% votes in 17, got a sum total of 0.04% votes in 2022. But in at least four constituencies, in Deoband, in Behraich area, the votes which were polled by Mr. Owaisi certainly ended up becoming a factor. Now, is the Congress party and the Samajwadi party going into such finer details to bring him on board and then carry the baggage the rest of the country? I'm not so sure.
1: Sameer ji?
2: Look, Owaisi saab ne 2 October ki date diye. To Gandhi ji ke birth anniversary hai, 2 October ki date diye. तो कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी को 31 अक्टूबर की इंदिरा गांधी की डेथ एनिवर्सरी की डेट दे दे कि 31 तक की आप सिर्फ डिसाइड कर लीजिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मुझे लगता है ओबीसी के कारण, मुझे लगता है
8: 23 नवंबर दे देगी नेताजी की जो बर्थडे है।
2: बिल्कुल।

0: 14 नवंबर दे देगी जवाहरलाल नेहरू जी की बर्थडे
1: ओबीसी के लिए बहुत मुश्किल है, अखिलेश यादव के लिए बहुत मुश्किल है इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव। देखिए एक तरफ कांग्रेस से आपका सीट शेयरिंग के लेके बातचीत नहीं हो पा रही है, वहां पर ओबीसी जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव अगर देखेंगे 2024 का तो ओबीसी ने 95 सीटों पे उम्मीदवार ओवरऑल मतलब उम्मीदवार उतारे थे लेकिन सब उसके हार गए थे, वोट 4.5 लाख वोट ओबीसी को मिले थे अगर आप देखेंगे तो। ओबीसी इस बार तैयारी बहुत बेहतर कर रहे हैं और बिहार में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया था, 5 सीटें जीती थी। तो अखिलेश यादव ओबीसी के साथ गठबंधन करेंगे मुझे इसकी संभावना कहीं नजर नहीं आती, अखिलेश यादव पूरा मुस्लिम वोट अपने पास रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या कांग्रेस गठबंधन किस स्तर पर कह रही, 6 लोकसभा सीटें कितने सीटें अखिलेश यादव कांग्रेस को देंगे, कांग्रेस कह रही कि मिनिमम 3 डिजिट में हमको सीटें चाहिए, 100-105 सीटें, क्या अखिलेश यादव उतना देने को तैयार होंगे?
0: व्हाट्स हैपनिंग इन द बीजेपी, द फैक्ट दैट नितिन नबीन आल्सो डिसाइडेड टू गो टू वेस्टर्न यूपी, बुलडोजर वहां पर आ रहे हैं उनके स्वागत में, ऑल्सो मोहम्मद शमी हैड अ मीटिंग विद जयंत चौधरी,
2: हो सकता है कि कुछ हो, कुछ खिचड़ी पक रही हो, लेकिन ये तय है कि वेस्टर्न यूपी में बीजेपी का अलायंस आरएलडी के साथ होगा। पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ था आरएलडी का,
0: नहीं मोहम्मद शमी चुनाव लड़ रहे हैं क्या अमरोहा,
2: हो सकता है, मतलब मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर कुछ होता है इसके बीच में, कुछ खिचड़ी पकती हो। लेकिन जो आज ये दौरा हुआ है शुरू वेस्टर्न यूपी का नितिन नवीन का, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बीजेपी वेस्टर्न यूपी को काफ़ी अपने लिए लकी मानती है, 2014 में, इसके बाद 17 में, उसके बाद 19 में, 22 में, हर बार शुरुआत जो बीजेपी कैंपेन की वहीं से हुई है।
0: अदिति सिंह क्या आ रही है कांग्रेस में?
2: मेरे ख्याल से मान गई हैं,
0: कांग्रेस मानी
2: नहीं बीजेपी से, बीजेपी जो नाराजगी थी
0: बीजेपी ने मना लिया,
2: मेरे ख्याल से हो गई है, मना लिया गया उनको। बीजेपी अब इस पर भी काम कर रही है, विनोद तावड़ को जब से प्रभारी बनाया गया है, महासचिव प्रभारी, तो वो इस पर काम करें कि जो जो लोग नाराज दिख रहे हैं जिसमें कि राजभर भी थे, सबसे बातचीत हो रही है 1-to-1।
0: और कौन नाराज है?
2: काफी लंबी लिस्ट है।
0: जैसे
3: नाराजगी के दो पहलू होते हैं, एक ये कि आपका टिकट कट रहा है क्या, अगर आपका टिकट कट रहा है तो आप नाराज हो सकते हैं, एक ये कि आपके जो समर्थक हैं उनको टिकट दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, आप नाराज हो सकते
4: हैं। अभी तो अपने टिकट की बात है,
3: मैं आपको बता दूं, यू आर टॉकिंग अबाउट जयंत चौधरी एंड आई हैव बीन लिसनिंग टू सम स्टेटमेंट ऑफ जयंत चौधरी, चिराग पासवान एंड जयंत चौधरी आर टू ऑफ दीज ग्रेट लीडर्स इन अ कंट्री हु बिफोर एवरी इलेक्शन एंड अप फाइंडिंग सम फॉल्ट ऑर द अदर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? And it's nothing else but just an attempt to ensure that they get the maximum possible support, maximum possible what they can get, whatever they can extract. So I think the alliance is there for sure. The BJP's biggest challenge is going to be, it's now a party which has been in power since 2014 at the center and 2017 at the assembly
4: state
3: level. So it's a very, very long spell. How are you going to get rid of the so-called anti-incumbency against MLAs?
2: दो तीन बातें जोड़ना चाहूंगा, इमरान मसूद का जो बयान आया है ये खुद से दिया है या दिलवाया गया है, इस पर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि कांग्रेस देखिए अलायंस तो होगा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस तो होना ये बात तय है, आपने जब लोकसभा चुनाव लड़ा सफलता हासिल की तो इसमें क्यों ना हो। ये हो सकता है कि अपने कुछ कैंडिडेट समाजवादी पार्टी उधार दे दे, सीटों की संख्या बढ़ा दे, ये एक संभव है। दूसरा ओबीसी का आपने सुना, ओबीसी भी अलायंस करके चुनाव में जाएंगे, अब वो चंद्रशेखर की पार्टी के साथ होता है या जो सोनेलाल पटेल की दूसरा फैक्शन है
4: रुपया
2: के आला पल्ली वाला उसके साथ होता है, ये भी एक है, लेकिन वो ऑप्शन है, वो लड़ेंगे और निश्चित तौर पर कांग्रेस के साथ सवाल ही पैदा नहीं होता। ओबीसी के साथ कांग्रेस कभी अलायंस नहीं करेगी, किसी को क्यों पनपने का मौका देना, अपना वोट क्यों ट्रांसफर करवाने है देना, वो तो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी।
0: ओके okay,
4: अब यूपी में थोड़ा हमसे भी बात कर लीजिए
0: जी
4: कि मैं उसी राज्य का हूँ,
2: हम भी रहते हैं वहाँ पर,
4: आप रहते हैं, हम उसी राज्य में पैदा हुए हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की स्थिति बड़ी विचित्र है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इन्होंने 2014 से कहा 1991 से बीजेपी के लिए लाभदायक रहा, पहली सरकार जो उत्तर प्रदेश की बनी थी कल्याण सिंह की वो वेस्टर्न यूपी से ही बनी थी, सबसे ज़्यादा विधायक यहीं जीत के आए थे। जयंत चौधरी और बीजेपी का अलायंस इस बार इंटैक्ट रहेगा, हाँ। क्योंकि जयंत चौधरी ऐड ऑन कर रहे हैं बीजेपी को, जो पिछली बार 2022 में माइनस हुआ था बीजेपी का वोट, वो इस बार ऐड ऑन होगा, इसलिए जयंत चौधरी और वो चवन्नी वाला जो बयान वगैरह है वो भी हेल्प कर रहा है, बीजेपी भी उसको काफ़ी वो कर रही
2: है। केसी त्यागी पहुँच गए,
4: केसी त्यागी पहुँच गए और भी कई लोग पहुँच गए, तो उसमें तो इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे चिराग पासवान का अलायंस बिहार में बीजेपी के साथ, प्रॉब्लम है ओवैसी साहब के लेके, ओवैसी साहब अगर बीजेपी अगर ओवैसी साहब चंद्रशेखर से अलायंस करके या बीएसपी से अलायंस करके सब सीटों पर लड़ते हैं तो दिक्कत है इंडिया गठबंधन के लिए, अगर वो इसमें आ जाते हैं तो बीजेपी के लिए और फेवरेबल पोजीशन हो जाएगी, फिर वो अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान चला चला करके पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स है उसको बिल्कुल एक्सट्रीम पर पहुँचा देगी, और योगी जी उसमें सामने है,
2: बुलडोजर
0: दिखेगी,
2: आज तो बुलडोजर दिखेगी,
4: वो तो हनुमानगढ़ी से शुरू होंगे किसी नियो में नवाज से लेकर के, तो ये कैच 22 सिचुएशन है। दूसरी लास्ट में कांग्रेस और एसपी का अलायंस उसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों को मालूम है कि अलग अलग लड़ेंगे अगर तो दोनों ही धराशायी।
3: थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा
0: क्वेश्चन आई थिंक नाउ ऑफ हु इज गोइंग टू ब्लिंक फर्स्ट। वी आर कंप्लीटली आउट ऑफ टाइम फॉर टुडे, बट इट्स ओनली हीटिंग अप एंड एज ऑलवेज लाइक आई सेड ऑन एनडीटीवी हियर फॉर अस इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉलिटिक्स जिंदाबाद। थैंक्स वेरी मच जेंटलमैन फॉर हैविंग जॉइन्ड अस विद योर विजडम एंड थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।

0: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
1: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
2: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.
3: Launch control, 0 to 100.
4: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
5: This car makes no sense, yet it makes every sense.
6: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
4: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
7: A generation with questions.
8: The starry and the whole glamorous side of it.
9: As I said, like, I can't empathize with it.
7: Unconventional.
10: I feel blessed. As long as the work is going on, I'm happy.
7: Unapologetic. Unafraid of change. Ready to challenge.
11: Aspirational.
7: The ideas. The issues.
12: You really are.
7: The young view.
12: Public perception.
7: NDTV Yuva. 28 September 2026. Only on the NDTV network.
13: It takes years to build your competitive edge.
14: On the golf course, it can disappear in a single stroke.
15: Because the course plays no favorites.
13: It only cares about your last shot.
7: After the grand success of the first edition, India's premier golf pro-am is back. Where the best in golf meet the finest names in business. The NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am. Tee off, 3rd October, Kutub Golf Course, Delhi.
16: Across the country.
7: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Yeah. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
17: By noon, the world has changed. The headlines tell you what happened. Breaking Ground tells you why. We break down the story. We demand answers.
18: There is a deathly silence around this makeshift mass burial ground here in Bharatpur district in Nepal.
19: I want you to reach out to the Maharashtra Chief Minister today through our channel and tell them what you've been through as a father.
20: Marne se bada kya hoga?
19: As a journalist, I can say you're not alone.
18: So you can focus on what really matters. Watch Breaking Ground with me, Vedika Sood. Weekdays 12 to 2 p.m. only on NDTV, when it really matters.
21: We are crossing a heavy ridge line now. We are going to be descending into the valley where the damage has taken place. This is the Bhotekoshi River now. It used to be Trishuli downstream. It's now the Bhotekoshi. This is the first look that we saw by helicopter of the exact spot where the floods broke through. To my left over here, they were all homes. Ashwini, you see the bank of the river over here? They were all homes. None of them exist. They've been completely washed away. There is 100% destruction over here. 100%. There are no homes, no structures at all. As we go back towards Kathmandu, there's a helicopter right there. It's got dead bodies slung underneath it, is what we're told. Well, we're now in Trishuli, and it's in fact just on the banks of the Trishuli over here that a lot of the damage has taken place. Well, we are at one of the sites where there are rescue operations which are now taking place. The Nepalese army is over here. How is every minute absolutely critical in an operation like this? Time is not in your side.
22: We are more than 90 people here.
11: So we are trying best.
21: With our reports, we hope to get and provide our viewers a bigger, better idea of the extent of the devastation and what the people of Nepal are going through. Vishnu Shom for NDTV.
7: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
20: So many attacks.
7: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
20: It's incredible.
7: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
21: Welcome to Left, Right, and Center.
7: Hard facts.
21: War-struck country.
7: Hard questions.
21: In the Ukraine.
7: 30 years of trust.
22: In the Kargil area.
21: North Ukraine.
23: In France. In Italy.
21: At Srinagar.
20: Vishnu Shom for NDTV.
7: Vishnu Shom. Only on NDTV. New rules of engagement. Ambitions crossing borders. Voices refusing to wait their turn. India is chasing gears. Faster. Bolder. More restless. It doesn't stop. Neither do we. NDTV. When it really matters.
24: Hello and welcome. You're watching NDTV with me, Tanisha Avasthi. Before we get to the big stories, here's a quick check of the headlines. A 20-minute ordeal from Bihar went unreported until and unless a viral video surfaced online. The police say that 11 suspects have been identified and 3 have been arrested after footage showed 2 Class 10 students being allegedly harassed in Jamui in Bihar. The FIR was registered under the POXO Act and other criminal provisions after the video triggered police action. And while the Bihar horror has shocked the nation, the Bihar minister has called it a chutput incident or a sporadic trivial incident. The remark has now sparked a row, with the opposition hitting back at a Jungle Raj jibe. IIT Bombay is facing continued student protest after the death of suicide of a second-year BTech student, Sahil Wakore. The IIT Bombay Faculty Forum, representing around 750 faculty members, has backed the professor, while the family alleges foul play and caste-based discrimination. 5-star restaurant but 1-star hygiene. Baby cockroach crawling across cardiologist dinner table at JW Marriott Mumbai's Romano restaurant has now triggered a food hygiene row. The doctor had later posted the incident online and had tagged the Maharashtra FDA Commissioner Tukaram Munde. Ukrainian President Volodymyr Zelensky says he and the United States President Donald Trump have agreed to meet in New York with peace as the number one priority. Zelensky says that talks could include de-escalation as well as the key security issues. Ladies and gentlemen, IIT Bombay student Sahil's death has triggered protest and a wider campus row over accountability. Professor Dhula has been suspended from his position as a dean, while he will still continue to be a faculty member at the IIT Bombay. And around 750 faculty members have expressed solidarity with Professor Dhula and marched on the campus with him in support of him. The faculty protest comes amid continuing student demonstrations over the case. The student, the victim here, and their aunt has alleged that he faced caste-based discrimination and said that the family wants complete truth to emerge. She has demanded all the CCTV footage, arguing that the case should not be limited to one professor, and that she alleged that there will be several people who may be involved in the case.
25: उस शाम को हमें सिर्फ कॉल आया प्रोफेसर का
26: जी
25: अचानक से कॉल आया सर रात 8 बजे की साहिल ने सुसाइड किया है ऐसा करके कॉल आया इतने दिन होने के बाद उस प्रोफेसर ने माफी मांगी और प्रोफेसर बता रहे कि साहिल ने कुछ गलती नहीं की फिर भी साहिल के साथ ऐसा क्यों हो गया सर मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि मेरे साहिल को न्याय मिलना चाहिए। अगर उसकी कुछ गलती नहीं थी, फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों हो गया? आज तक की ये पहली घटना नहीं है सर, और जो भी घटनाएं हुई है इस घटना के बारे में आज तक कोई इंक्वायरी नहीं बैठी गई, कुछ ही हुआ नहीं। लेकिन हमने जब ये बोला तो हमें हम पर भी वो प्रेशर डाल रहे है।
0: साहिल ने माँ बाप को बोला था कि मम्मी यहाँ पे थोड़ा बच्चों पर अन्याय करते हैं, जातिवाद करते हैं। आज वो कॉलेज में अगर साहिल के आज भी फेवर में न्याय नहीं मिल रहा होगा तो आज भी साहिल पर अन्याय ही हो रहा। हमारा पूरा भरोसा है कि ये चौकशी सीबीआई करे।
1: Meanwhile, my colleague Sujata Divedi spoke to Sahil's wingmate in IIT Bombay. Let's listen into what he had to say.
2: कि विंगमेट थे आप लोग, दूसरे को जानते थे, एग्जाम में कॉपी किया गया, इसको लेकर आपको उसने क्या बताया?
3: उसने किसी से भी कुछ बात नहीं की, यही बात है, सब स्पेक्युलेशन है। बस कॉपी करने के बाद जब उसको बाहर लेके गए उसके बाद उसने किसी से बात नहीं की, तो किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है। आई डोंट थिंक, जितना मैंने फर्स्ट ईयर में उसे देखा कि हमने से किसी में या उसके दोस्तों में से किसी ने उसके कास्ट पर कभी भी रिमार्क किया हो। IIT बॉम्बे में ऐसा कल्चर है ही नहीं कि कोई किसी के कास्ट पर रिमार्क करता है, क्योंकि हम सारे जेईई देव स्टूडेंट, हमें आइडिया है कि ये सब नहीं करना होता है, इतने एजुकेटेड हैं। एंड मुझे नहीं पता ये एंगल कहाँ से आया। डी ने कि ये सस्पेंशन था हमारा फर्स्ट पॉइंट, उसका भी रेजिग्नेशन नहीं था, क्योंकि जब तक वो गिल्टी प्रूफ नहीं हो जाते हम उनका रेजिग्नेशन नहीं मांग रहे।
5: Accountability does not necessarily mean an online apology, first of all, because everybody apologizes nowadays. It's a very, you know, trendy thing, right? We need resignations. That's what we need. We need resignation of all the people involved, because like I said, this is not one isolated event. There have been 4 suicides in the past 1 year. This is the second suicide in the past 2 months. जिसमें से 4 suicides में से 3 suicides जो थे वो दलित background के बच्चों के थे. So like I said, this is not an isolated event. Right, so we need immediate resignation, because accountability हमें वैसे ही मिलेगी. We need resignation, we need a student, independent student body यहाँ पर जो student के behalf पर बोले, you know, to give students some power as well. We need mental health conferences and all of that. We also need compensation for the family, जिन जो उनको भी काफ़ी पुलिस ने परेशान कर रखा है जब से वो यहाँ पर आए हैं. उनका एक अकेला बेटा था, वन ओनली चाइल्ड, राइट? तो वी नीड कॉम्पेंसेशन फॉर द फैमिली एज वेल.
1: Let's move on to another shocking case that has come to light, and this is from the state of Bihar, where there have been 3 people who have been arrested for molesting and assaulting a couple in Bihar's Jamui. The 2 youngsters that you see on your screens were harassed by a crowd in what the story was first published at Moral Policing, which was not to say the least. They were stopped while traveling on a scooter, following which the harassment took place. The shocking video showed men touching the girl inappropriately, and she was a minor, and even carrying her away from some distance on road before being stopped by her friend. The youngsters were seen pleading with folded hands in an effort to be left alone, and while they were doing that, the only thing that they witnessed next is being dragged back to the same place. And while all of this is happening, as usual, the politics has erupted between the government and the opposition of the state. The JDU leader, Umesh Kushwaha, has tried to downplay the incident and called it a trivial one, and that keeps happening in the state of Bihar. Rahul Gandhi, meanwhile, has slammed the government over the incident and has demanded action against mob under the POKSO Act. Meanwhile, another Bihar minister, Sunil Kumar, has condemned the incident. But while all of this is happening, the big questions remain, that why is it that the action came after the video went viral?
22: तीन नाबालिग बच्चों को निरुद्ध की गई हैं और इसमें 2 और की इन्वॉल्वमेंट भी पता चला और 2 और हो सकते हैं. तो हम लोग का अभी क्विक एक्शन हुआ था जमुई थाना कांड संख्या 428 भी सेक्शन 74-75 BNSS और 8 और 12 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज हुई हैं. साथ ही साथ जितना वीडियो वायरल हुआ है हम लोग टेक डाउन नोटिसेस जारी किया, जिसमें 13 फेसबुक और 12 इंस्टाग्राम का अकाउंट्स और 7 ट्विटर के अकाउंट्स हम लोग के द्वारा टेक डाउन कर लिए.
24: And while this incident has gotten into every Indian and every Indian is expressing outrage, there are political parties that are trying to take away credit and blame the other party. But one thing is for sure, that be it the opposition or the government, nobody for till date has been able to ensure the safety of a woman. But here are some political reactions that came in from the state of Bihar as far as this incident is concerned.
4: Crime free puri duniya nahi hai. छिटपुट घटना होती रहती है और छिटपुट घटनाओं पर सरकार की नज़र है और इस तरह के कृत्य करने वाले बिहार में बचने वाले नहीं है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई पहले भी हुई है। ऐसी घटना करने वाले किसी भी हालत में नहीं बचेंगे।
6: छिटपुट घटना घटती है तो हम लोग उस पर सरकार संवेदनशील हैं, लेकिन वह समय देखिए 2005 की पहले का कैसा बिहार था, कोई घर से बाहर निकलते थे, किस तरह का बिहार था, क्या हालात था, लोग किसी तरह अपनी जिंदगी को काट रहे थे, ऐसा बिहार था ना। आज तो लोग कम से कम ये कोई घटना घटी है तो उस पर प्रशासन कार्रवाई कर रही है, एक्शन ले रही है, प्रशासन जल्द से जल्द जो घटना का जो अंजाम दिया है, चाहे 12 से 12 कोई कितना बड़ा कोई अपराधी क्यों नहीं हो, वो जल्द ही पुलिस के कब्जे में आएंगे।
8: घटना की हम तीव्र निंदा करते हैं सरकार की ओर से, और निश्चित रूप से वहाँ के पुलिस पदाधिकारी, प्रशासन के पदाधिकारी इसमें एक उचित और कठोर कदम उठाएंगे। मैं इस जैसे आपसे मीटिंग ख़त्म हो जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहाँ के मैं पुलिस अधीक्षक से भी बात करूँगा जम्मू के, और सुनिश्चित उन्हें कहेंगे कि सुनिश्चित करें कि कोई भी इसके लिए जिम्मेवार हो, चाहे जो भी व्यक्ति हो, उसको चिन्हित करके उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करें।
24: Well, the lawlessness is not just seen in the state of Bihar, it's seen in the state of Maharashtra as well. And this time, the ones responsible are the political parties themselves. A social media reel criticizing MNS chief Raj Thackeray has triggered a shocking act of public humiliation of an influencer in Pune. The MNS workers allegedly grabbed the Marathi content creator Mahesh Mote, blackened his face and forced him to apologize. And in a video that's now going viral of the incident, the influencer is seen with a slipper placed on his head as he is made to perform sit-ups. He is then forced to bow down before a photograph of Raj Thackeray and apologize. The influencer later posted another video breaking down as he said that his comments were unintentional. He apologized to Raj Thackeray and MNS workers with folded hands and appealed to them to not harass him further. The MNS has described the action as its style of dealing with such incidents in a brazen act to justify what they did.
9: केरळला गेले होते मित्रांनो, खूप चुकीचे व्हिडिओ बनवले, माफी मागितली, परत आणखीन चूक झाली, म्हणला शुभम दादाला बोललो। मी खरं सांगतो मित्रांनो, महाराष्ट्रात राहून कधीही तुम्ही राज साहेब असू द्या किंवा आपला मनसे पक्ष असू द्या, कधी यांच्याविषयी काय बोलू नका। आणि मित्रांनो, ह्यांनी कुठली मला गुंडगर्दी दादागिरी नाही केली, उलट माझ्यासारख्या वेड्याला माणसानं असं उठायचं काय बी बोलायचं, खरंच चूक झाली मित्रांनो।
10: काल पुण्यात आल्याच्या नंतर आज तो कात्रजमध्ये येणार आहे अशी जवळपास माहिती होती। आज कात्रजच्या उद्यानामध्ये तो जसा आल्याच्या नंतर तातडीने आम्ही सर्व महाराष्ट्र सैनिक एकत्र आलो। एकत्र आल्याच्या नंतर आम्ही त्याला ऑफिसला घेऊन गेलो, आदरणीय राजसाहेब ठाकरे यांच्या फोटो पुढे त्याला आम्ही झोपवलं, त्याला तिथं साहेबांची माफी मागायला सांगितली आणि मनसेच्या स्टाईलने त्याला उत्तर दिलं, त्याला चांगली आम्ही आमच्या भाषेत महाप्रसाद दिला, त्याला त्याचबरोबर त्याला साहेबांची माफी मागायला सांगितली, त्याला काजळाची मिशी काढली, त्याला त्याच्या चप्पल त्याच्या डोक्यावरती ठेवायला सांगितल्या आणि त्याच्या उठाबशा मारायला सांगितल्या।
12: पुणे में एक लड़के का मुंह आप काला करते हैं, चप्पल सर पर उठक बैठक क्यों? क्योंकि उन्होंने एक रील बनाया। क्या ये है एमएनएस की स्टाइल, तालिबानी स्टाइल? जो आप महाराष्ट्र का नेता बनना चाहते हैं तो ये गुंडागर्दी करना बंद कीजिए। जो आपकी आलोचना करते हैं आप उनके प्रति ऐसे प्रस्तुत आते हैं कि गुंडागर्दी ही चलेगा। पुणे पुलिस को एफआईआर दर्ज करना ही चाहिए भारतीय न्याय संहिता के निमित्त, और जो व्यक्ति गुनहगार हैं उनको पकड़ना हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि हुलिगनिज्म हैज नो प्लेस इन पब्लिक सर्विस।
24: Moving on to some other stories that are making headlines down south, Vijay's London visit and TVK's political activity has drawn sharp attacks from the rival parties. Kia Annamalai has questioned Vijay's London investment outreach, arguing that the Tamil Nadu can attract investment by engaging with industrialists within India. Udayanidhi, meanwhile, has accused Vijay and TVK of blaming the DMK despite being in politics, and also alleged that TVK is attempting to bring AIADMK MLAs into its fold.
13: எனக்கு லண்டனை பத்தி நல்லா தெரியும், அங்கே எந்த பணமுமே கிடையாது. 1% வளர்ச்சி, யூகேவுடைய வளர்ச்சியே 1%. அவங்க கிட்ட போய் தமிழ்நாட்டில் பணம் கொடுங்கன்னு கேட்டால் அவங்க என்ன பணம் கொடுக்க போறாங்க? அவங்க ஊரில் போறதே அவங்க பணம். இந்தியாவிலிருந்து போய் டாடா, இந்தியாவிலிருந்து போகக்கூடிய ஜாகுவார், லேண்ட் ரோவர், மஹிந்திரா, இவங்க எல்லாம் தான் இந்த யூகேல அதிகப்படியான பணத்தை நாம இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். முதலமைச்சர் என்ன பண்ணணும்னா, சென்னையிலிருந்து எமிரேட்ஸ் விமானத்தை பிடித்து லண்டனுக்கு போவதை விட சென்னையிலிருந்து இண்டிகோ விமானத்தை பிடித்து கோயம்புத்தூருக்கு மதுரைக்கு வரணும். இங்க இருக்கக்கூடிய தொழில் அதிபர்களை உட்கார வைக்கணும். இந்த தமிழ் சமுதாயம் நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும், புரிந்து கொள்ள வேண்டும். லண்டனிலே பொருளாதாரம் இல்லைங்க, 1%, 1%. அதை விட இந்திய நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் பெருசு, நம்ம 4.1 trillion. இதெல்லாம் எப்ப லண்டனுக்கு போனாலே இந்தியா 1 trillion இருந்துச்சு. 2010 2008 லண்டன் 3 trillion இருந்துச்சு. அப்ப லண்டனுக்கு கோட் சுட்டு போடுறோம் மிடுக்கா இருக்கும். ஏன்னா நான் வந்து ஒரு ஏழை நாட்டில இருந்து வர்றேன், நீங்க பணக்கார நாடு, எனக்கு ஒரு 100 ரூபாய் கொடுத்தீங்கன்னா நாங்க குழச்சிக்குவோம்னு போயிருந்த காலம். இன்னைக்கு இந்த நாடு 4.1 trillion இருக்கிற நாடு, லண்டன் 3.4 trillion இருக்கிற நாடு. அந்த நாட்டுக்கு போய் இவங்க ஒரு பெரிய கூட்டத்தை கூட்டிட்டு போயிருக்கு. அதுல இவரை பார்த்தாரா, அவரை பார்த்தாரா, அவங்க எட்டி பார்த்தாங்களா, அவங்க உள்ள பணம்
14: அந்த ஷூட்டிங் மட்டும்தான் நடக்காம இருக்கு. முதலமைச்சர் வாயை திறக்கிறதே கிடையாது. வாயை திறந்தாருன்னா வெறும் பஞ்சு டயலாக் தான், அது எங்களை பார்த்து பேசுறது கிடையாது. கேமரா எங்க இருக்குன்னு பார்த்து, கரெக்டாக பார்த்து, ஆங்கிள்லாம் பார்த்து, சபாநாயகர்கிட்ட அனுமதி வாங்கி டேக் போலாமான்னு கேட்டுட்டு, சபாநாயகர் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் முதலமைச்சர் அவர்கள் தன்னுடைய பஞ்சு டயலாக்கு பேசுறாரு. எதை கேட்டாலும் முதல்ல இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்கள், முதலமைச்சர் உள்ளிட்ட ஆட்சியாளர்கள், அமைச்சர்கள்லாம் அவங்க ஆட்சிக்கு வந்துட்டோம் அப்படிங்கிறத அவங்களே இன்னும் நம்பலை. எந்த கேள்வி கேட்டாலும் நம்ம மேலே பழி போடுறது, திமுக ஆட்சியில் இது நடந்துச்சு, திமுக ஆட்சியில் இது நடந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம மேலே பழிய போடுற வேலையை மட்டும்தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சரும் சரி, அமைச்சர்களும் சரி, தொடர்ந்து அதை செஞ்சிட்ருக்கிறாங்க. அதனால தான் இன்றைக்கி ஒவ்வொரு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாக பார்த்து பார்த்து, அதுவும் அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களெல்லாம் விலைக்கு வாங்குகிற வேலையில் இன்றைக்கி இந்த அரசு இறங்கியிருக்கு. இப்படி விலைக்கு வாங்கின காரணத்தினால தான் உங்களுக்கு தெரியும், 2 சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல், மதுராந்தகம் தாராபுரத்தில் இடைத்தேர்தல் நடக்க இருக்கு. இந்த ரீல்ஸ் கும்பலுக்கு ஓட்டு போட்ட கொஞ்ச நஞ்ச மக்களும் ஏண்டா இவங்களுக்கு ஓட்டு போட்டோன்னு இப்போ கவலையில் இறங்கியிருக்கிறாங்க. இந்த ஆட்சியாளர்கள் அடிக்கின்ற இந்த கூத்தையெல்லாம், செய்கின்ற இந்த அட்டு ஒழுங்கு எல்லாம் மக்களுக்கு நாம் தொடர்ந்து அம்பலப்படுத்த வேண்டும். அதற்கு சரியான ஒரு தண்டனையை வருகின்ற இடைத்தேர்தல் மூலமாக நாம் இந்த ஆட்சியாளர்களுக்கு அதை நாம் தெரியப்படுத்த வேண்டும். ஆளுங்கட்சி எதிர்க்கட்சி எந்த.
24: And with that, it's time for us to slip into a quick commercial break. Don't go anywhere. After the break, we'll tell you about why the Russian oil flow is under strain.
15: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
16: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
17: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade.

0: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our product.
1: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
2: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV.
3: Welcome back. Thank you for staying with NDTV. Well, Donald Trump is yet again taking a jab at Russia after Kiev rained barrages of drones at Moscow's crucial oil hub. Those strikes have choked Russian oil industry, which is already under strain amid the ongoing war. So how badly is Russia's oil sector affected, and what could happen next as Europe sounds alarm over Russian aggression? Here's a report.
4: The Russia-Ukraine battle lines are heating up once again. And Donald Trump is having the last laugh with his subtle jab on Truth Social, where he claims that Russia has lost control of its crucial oil industry. This comes after Moscow came under massive Ukrainian drone assault on its crucial oil refinery. The Russian oil industry is under immense pressure. Refineries across Russia have been hit over 70 times, with output running at two-decade low. The oil outputs are down by 30%, leading to a massive curb on fuel exports. Meanwhile, Putin has vowed revenge. Moscow says these barbaric strikes will be avenged, as it is a violation of the ongoing peace process. NATO and Europe are also keeping a hawkeye on Ukrainian skies. The European intelligence agencies are sounding alarm over possible Russian test of NATO. According to reports, Moscow might launch barrages of missiles and drones along Russia's border with NATO. Europe has also pledged to provide over $3 billion towards Ukraine's defense. Deal to procure more Patriots missiles for Kyiv is also underway with NATO, raising over $10 billion fund for Ukraine. Previously, Zelensky demanded 300 Patriots from NATO before Russia begins its winter assault. NATO chief Mark Rutte urged allies to commit more for Ukraine's defense. So as the battlefield and the diplomatic fronts intensify, threats of immediate Russian escalation looms. Any further escalation will have a major economic pressure on both nations. All this unfolds just ahead of the crucial UNGA meeting at New York. Bureau report, NDTV World.
3: The most consequential United States-China meeting of the year is now just days away. Chinese President Xi Jinping arrives in Washington on September of 23rd for a three-day state visit, his first White House visit in more than a decade. Donald Trump will host Xi Jinping for a state arrival ceremony on September 24, followed by talks and a state dinner. But behind the ceremonial welcome lies a long list of difficult issues: trade, Taiwan, critical minerals, artificial intelligence, Iran, and others as well. And this time, both leaders have very different priorities. We leave you with this report.
4: 479 U.S. military personnel, a full military honor cordon, and a flypast featuring a B-2 Spirit and four F-22 Raptors. This is the welcome Donald Trump is preparing for Chinese President Xi Jinping at the White House on September 24. Xi arrives in Washington on Wednesday, where Trump will personally receive him at the Joint Base Andrews. The next morning, the two leaders will meet against a backdrop of extraordinary ceremony. But behind the pageantry lies a far more complicated relationship. Four issues that could define the summit between the world's two biggest powers. Xi's visit will be his first to the White House in more than a decade. After the formal arrival ceremony, Trump and Xi will hold talks, with a possible extension of the existing U.S.-China trade truce among the key issues on the table. Washington wants greater Chinese purchases of American goods, action on fentanyl precursor chemicals, and progress on rare earth supplies. Beijing, meanwhile, is seeking relief from U.S. tariffs and technology restrictions, while Taiwan remains one of the most sensitive issues between the two countries. She will also arrive with a major Chinese business delegation with executives from companies including BYD, CATL and Xiaomi potentially accompanying him. And the symbolism doesn't stop at the White House. Melania Trump and Peng Liuan are set to visit the Smithsonian National Museum of Asian Art before the leaders return for a state dinner. But beneath the ceremonial welcome is a difficult question. Can Trump and Xi stabilize a relationship defined by trade wars, technology restrictions, and strategic rivalry, without either side giving up on its core interests? September 24th could provide some answers. Xi comes to Washington as China's exports continue to surge. Reuters reports China's global trade surplus is on track to cross $1 trillion for a second consecutive year. The immediate economic question is whether Trump and Xi can extend the trade truce agreed last year, currently due to expire in November. Beijing is seeking further relief from US technology restrictions, while Washington wants greater Chinese access for US goods and increased supplies of rare earths and critical minerals. Then there is Taiwan, perhaps the most sensitive issue. Xi has previously pressed Trump over US arms sales to Taiwan. Reuters reports Beijing may seek a stronger US formulation opposing Taiwanese independence, while Washington's long-standing position has been that it does not support Taiwan independence. Any change here would have implications far beyond the summit. Artificial intelligence will also be on the table, alongside technology controls and economic security. For Trump, the challenge is to extract economic gains without giving Beijing concessions on issues Washington considers strategic. For Xi, the priority is keeping the relationship stable while resisting pressure on trade, technology, and Taiwan. Bureau Report, NDTV.
5: Launch control, 0 to 100.
0: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
6: This car makes no sense, yet it makes every sense.
7: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
0: Your friend said, yeah, Lily. We said, maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
8: A generation with questions.
9: The starring and the whole glamorous side of it.
10: As I said, like, I can't empathize with it.
8: Unconventional.
11: I feel blessed. As long as the work is going on, I'm happy.
8: Unapologetic. Unafraid of change. Ready to challenge.
12: Aspirational.
8: The ideas. The issues.
13: You really are.
8: The young view.
13: Public perception.
8: NDTV Yuva. 28th September 2026. Only on the NDTV network.
14: It takes years to build your competitive edge. On the golf course, it can disappear in a single stroke.
15: Because the course plays no favorites.
14: It only cares about your last shot.
8: After the grand success of the first edition, India's premier golf pro-am is back. Where the best in golf meet the finest names in business. The NDTV AM Green IGPL Golf Pro-Am. Tee-off, 3rd October, Kutub Golf Course, Delhi.
16: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah.
3: Hello and welcome. You're watching NDTV with me, Tanisha Avasthi. Before we get to the big stories, here's a quick check of the headlines. A 20-minute ordeal from Bihar went unreported until and unless a viral video surfaced online. The police say that 11 suspects have been identified and 3 have been arrested after footage showed 2 Class 10 students being allegedly harassed in Jamui in Bihar. The FIR was registered under the POXO Act and other criminal provisions after the video triggered police action. And while the Bihar horror has shocked the nation, the Bihar incident The Bihar minister has called it a chutput incident or a sporadic trivial incident. The remark has now sparked a row, with the opposition hitting back at a Jungle Raj jibe. IIT Bombay is facing continued student protest after the death of suicide of a second-year BTEC student, Sahil Wakore. The IIT Bombay Faculty Forum, representing around 750 faculty members, has backed the professor, while the family alleges foul play and caste-based discrimination. Five-star restaurant but one-star hygiene. Baby cockroach crawling across cardiologist dinner table at JW Marriott Mumbai's Romano restaurant has now triggered a food hygiene row. The doctor had later posted the incident online and had tagged the Maharashtra FDA Commissioner Tukaram Munde. Ukrainian President Volodymyr Zelensky says he and the United States President Donald Trump have agreed to meet in New York with peace as the number one priority. Zelensky says that talks could include de-escalation as well as the key security issues. Ladies and gentlemen, IIT Bombay student Sahil's death has triggered protest and a wider campus row over accountability. Professor Dhola has been suspended from his position as a dean, while he will still continue to be a faculty member at the IIT Bombay. And around 750 faculty members have expressed solidarity with Professor Dhola and marched on the campus with him in support of him. The faculty protest comes amid continuing student demonstrations over the case. The student, the victim here, and their aunt has alleged that he faced caste-based discrimination and said that the family wants complete truth to emerge. She has demanded all the CCTV footage, arguing that the case should not be limited to one professor, and that she alleged that there will be several people who may be involved in the case.
12: उस शाम को हमें सिर्फ कॉल आया प्रोफेसर का
17: जी
12: अचानक से कॉल आया सर रात 8 बजे की साहिल ने सुसाइड किया है ऐसा करके कॉल आया इतने दिन होने के बाद उस प्रोफेसर ने माफी मांगी वो प्रोफेसर बता रहे कि साहिल ने कुछ गलती नहीं की फिर भी साहिल के साथ ऐसा क्यों हो गया सर मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि मेरे साहिल को न्याय मिलना चाहिए अगर उसकी कुछ गलती नहीं थी फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों हो गया आज तक की ये पहली घटना नहीं है सर और जो भी घटनाएं हुई है इस घटना के बारे में आज तक कोई इंक्वायरी नहीं बैठी गई कुछ ही हुआ नहीं लेकिन हमने जब ये बोला तो हमें हम पर भी वो प्रेशर डाल रहे है
18: साहिल ने माँ बाप को बोला था कि मम्मी यहाँ पे थोड़ा बच्चों पर अन्याय करते हैं जातिवाद करते हैं आज वो कॉलेज में अगर साहिल के आज भी फेवर में न्याय नहीं मिल रहा होगा तो आज भी साहिल पर अन्याय ही हो रहा हमारा पूरा भरोसा है कि ये चौकसी सीबीआई करे
3: Meanwhile, my colleague Sujata Devedi spoke to Sahil's wingmate in IIT Bombay. Let's listen into what he had to say.
19: कि विंगमेट थे आप लोग दूसरे को जानते थे एग्जाम में कॉपी किया गया इसको लेकर आपको उसने क्या बताया
20: उसने किसी से भी कुछ बात नहीं की यही बात है सब स्पेक्यूलेशन है बस कॉपी करने के बाद जब उसको बाहर लेके गए उसके बाद उसने किसी से बात नहीं की तो किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है आई डोंट थिंक जितना मैंने फर्स्ट ईयर में उसे देखा कि हमने से किसी में या उसके दोस्तों में से किसी ने उसके कास्ट पर कभी भी रिमार्क किया हो IIT बॉम्बे में ऐसा कल्चर है ही नहीं कि कोई किसी के कास्ट पर रिमार्क करता है क्योंकि हम सारे जय देव स्टूडेंट हमें आइडिया है कि ये सब नहीं करना होता है इतने एजुकेटेड हैं एंड मुझे नहीं पता ये एंगल कहाँ से आया डी ने कि ये सस्पेंशन था हमारा फर्स्ट पॉइंट उसका भी रेजिग्नेशन नहीं था क्योंकि जब तक वो गिल्टी प्रूफ नहीं हो जाते हम उनका रेजिग्नेशन नहीं मांग रहे
21: Accountability does not necessarily mean an online apology, first of all, because everybody apologizes nowadays. It's a very, you know, trendy thing, right? We need resignations. That's what we need. We need resignation of all the people involved because, like I said, this is not one isolated event. There have been four suicides in the past 1 year. This is the second suicide in the past 2 months. This may से 4 सुसाइड्स में से 3 सुसाइड्स जो थे वो दलित बैकग्राउंड के बच्चों के थे. सो लाइक आई सेड दिस इज़ नॉट एन आइसोलेटेड इवेंट राइट. सो वी नीड इमीडिएट रेजिग्नेशन क्योंकि अकाउंटेबिलिटी हमें वैसे ही मिलेगी. वी नीड रेजिग्नेशन, वी नीड अ स्टूडेंट इंडिपेंडेंट स्टूडेंट बॉडी यहाँ पर जो स्टूडेंट के बिहाफ पर बोले, यू नो, टू गिव स्टूडेंट्स सम पावर एज वेल. वी नीड मेंटल हेल्थ कॉन्फ्रेंसेज एंड ऑल ऑफ दैट. वी ऑल्सो नीड कॉम्पनसेशन फॉर द फैमिली जिन जो उनको भी काफ़ी पुलिस ने परेशान कर रखा है जब से वो यहाँ पर आए हैं. उनका एक अकेला बेटा था, वन ओनली चाइल्ड राइट. तो वी नीड कॉम्पनसेशन फॉर द फैमिली.
3: Let's move on to another shocking case that has come to light, and this is from the state of Bihar, where there have been 3 people who have been arrested for molesting and assaulting a couple in Bihar's Jamui. The 2 youngsters that you see on your screens were harassed by a crowd in what the story was first published at Moral Policing, which was not to say the least. They were stopped while traveling on a scooter, following which the harassment took place. The shocking video showed men touching the girl inappropriately, and she was a minor, and even carrying her away from some distance on road before being stopped by her friend. The youngsters were seen pleading with folded hands in an effort to be left alone, and while they were doing that, the only thing that they witnessed next is being dragged back to the same place. And while all of this is happening, as usual, the politics has erupted between the government and the opposition of the state. The JDU leader, Umesh Kushwaha, has tried to downplay the incident and called it a trivial one, and that keeps happening in the state of Bihar. Rahul Gandhi, meanwhile, has slammed the government over the incident and has demanded action against mob under the POKSO Act. Meanwhile, another Bihar minister, Sunil Kumar, has condemned the incident. But while all of this is happening, the big questions remain that why is it that the action came after the video went viral?
1: तीन नाबालिग बच्चों को निरुद्ध की गई हैं और इसमें 2 और की इन्वॉल्वमेंट भी पता चला और 2 और हो सकता है. तो हम लोग का अभी क्विक एक्शन हुआ था. जमुई थाना कांड संख्या 428 भी सेक्शन 74-75 BNSS और 8 और 12 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज हुई हैं. साथ ही साथ जितना वीडियो वायरल हुआ है, हम लोग टेक डाउन नोटिस जारी किया, जिसमें 13 फेसबुक और 12 इंस्टाग्राम का अकाउंट्स और 7 ट्विटर के अकाउंट्स हम लोग के द्वारा टेक डाउन कर लिए.
3: And while this incident has gotten into every Indian and every Indian is expressing outrage, there are political parties that are trying to take away credit and blame the other party. But one thing is for sure, that be it the opposition or the government, nobody for till date has been able to ensure the safety of a woman. But here are some political reactions that came in from the state of Bihar as far as this incident is concerned.
2: क्राइम फ्री पूरी दुनिया नहीं है. छिटपुट घटना होती रहती है और छिटपुट घटनाओं पर सरकार की नज़र है और इस तरह के कृत्य करने वाले बिहार में बचने वाले नहीं है. उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई पहले भी हुई है. ऐसी घटना करने वाले किसी भी हालत में नहीं बचेंगे.
22: छिटपुट घटना घटती है तो हम लोग उस पर सरकार संवेदनशील हैं, लेकिन वह समय देखिए 2005 की पहले का कैसा बिहार था. कोई घर से बाहर निकलते थे? किस तरह का बिहार था? क्या हालात था? लोग किसी तरह अपनी जिंदगी को काट रहे थे, ऐसा बिहार था ना. आज तो लोग कम से कम, ये कोई घटना घटी है तो उस पर प्रशासन कार्रवाई कर रही है, एक्शन ले रही है. प्रशासन जल्द से जल्द जो घटना का जो अंजाम दिया है, चाहे 12 से 12 कोई कितना बड़ा कोई आपराधिक क्यों नहीं हो, वो जल्द ही पुलिस के कब्जे में आएंगे.
23: घटना की हम तीव्र निंदा करते हैं सरकार की ओर से, और निश्चित रूप से वहाँ के पुलिस पदाधिकारी, प्रशासन के पदाधिकारी इसमें एक उचित और कठोर कदम उठाएंगे. मैं इस जैसे आपसे मीटिंग ख़त्म हो जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहाँ के मैं पुलिस अधीक्षक से भी बात करूँगा जम्मू के, और सुनिश्चित उन्हें कहेंगे कि सुनिश्चित करें कि कोई भी इसके लिए जिम्मेवार हो, चाहे जो भी व्यक्ति हो, उसको चिन्हित करके उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करें.
3: Well, the lawlessness is not just seen in the state of Bihar, it's seen in the state of Maharashtra as well. And this time, the ones responsible are the political parties themselves. A social media reel criticizing MNS chief Raj Thackeray has triggered a shocking act of public humiliation of an influencer in Pune. The MNS workers allegedly grabbed the Marathi content creator Mahesh Mote, blackened his face and forced him to apologize. And in a video that's now going viral of the incident, the influencer is seen with a slipper placed on his head as he is made to perform sit-ups. He is then forced to bow down before a photograph of Raj Thackeray and apologize. The influencer later posted another video breaking down as he said that his comments were unintentional. He apologized to Raj Thackeray and MNS workers with folded hands and appealed to them to not harass him further. The MNS has described the action as its style of dealing with such incidents in a brazen act to justify what they did.
4: केरळला गेले होते मित्रांनो खूप चुकीचे व्हिडिओ बनवले माफी मागितली परत आणखीन चूक झाली म्हणला शुभम दादाला बोललो मी खरं सांगतो मित्रांनो महाराष्ट्रात राहून कधीही तुम्ही राजसाहेब असू द्या किंवा आपला मनसे पक्ष असू द्या कधी यांच्याविषयी काय बोलू नका आणि मित्रांनो ह्यांनी कुठली मला गुंडगर्दी दादागिरी नाही केली उलट माझ्यासारख्या वेड्याला माणसानं असं उठायचं काय बी बोलायचं खरंच चूक झाली मित्रांनो
5: काल पुण्यात आल्याच्या नंतर आज तो कात्रजमध्ये येणार आहे अशी जवळपास माहिती होती आज कात्रजच्या उद्यानामध्ये तो जसा आला आल्याच्या नंतर तातडीने आम्ही सर्व महाराष्ट्र सैनिक एकत्र आलो एकत्र आल्याच्या नंतर आम्ही त्याला ऑफिसला घेऊन गेलो आदरणीय राजसाहेब ठाकरे यांच्या फोटो पुढे त्याला आम्ही झोपवलं त्याला तिथं साहेबांची माफी मागायला सांगितली आणि मनसेच्या स्टाईलने त्याला उत्तर दिलं त्याला चांगली आम्ही आमच्या भाषेत महाप्रसाद दिला त्याला त्याचबरोबर त्याला साहेबांची माफी मागायला सांगितली त्याला काजळाची मिशी काढली त्याला त्याच्या चप्पल त्याच्या डोक्यावरती ठेवायला सांगितल्या आणि त्याच्या उठाबशा मारायला सांगितल्या
6: पुणे में एक लड़के का मुंह आप काला करते हैं चप्पल सर पर उठक बैठक क्यों क्योंकि उन्होंने एक रील बनाया क्या ये है एमएनएस की स्टाइल तालिबानी स्टाइल जो आप महाराष्ट्र का नेता बनना चाहते हैं तो ये गुंडागर्दी करना बंद कीजिए जो आपकी आलोचना करते हैं आप उनके प्रति ऐसे प्रस्तुत आते हैं कि गुंडागर्दी ही चलेगा पुणे पुलिस को एफआईआर दर्ज करना ही चाहिए भारतीय न्याय संहिता के निमित्त और जो व्यक्ति गुनेगार हैं उनको पकड़ना हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है क्योंकि हुलिगनिज्म हैज नो प्लेस इन पब्लिक सर्विस
3: Moving on to some other stories that are making headlines down south, Vijay's London visit and TVK's political activity has drawn sharp attacks from the rival parties. K. Annamalai has questioned Vijay's London investment outreach, arguing that the Tamil Nadu can attract investment by engaging with industrialists within India. Udayanidhi, meanwhile, has accused Vijay and TVK of blaming the DMK despite being in politics and also alleged that TVK is attempting to bring AIADMK MLAs into its fold.
7: எனக்கு லண்டனை பத்தி நல்லா தெரியுங்க எந்த பணமே கிடையாது ஒரு சதவீதம் வளர்ச்சி யூகேவுடைய வளர்ச்சியே ஒரு சதவீதம் அவங்ககிட்ட போய் தமிழ்நாட்டுல பணம் கொடுங்கன்னு கேட்டா அவங்க என்ன பணம் கொடுக்க போறாங்க அவங்க ஊர்ல போறதே அவங்க பணம் இந்தியால இருந்து போய் டாடா இந்தியால இருந்து போகக்கூடிய ஜாகுவார் லேண்ட் ரோவர் மஹிந்திரா இவங்க எல்லாம் தான் யூகேல அதிகப்படியான பணத்தை நாம இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் முதலமைச்சர் என்ன பண்ணணும்னா சென்னையிலிருந்து எமிரேட்ஸ் விமானத்தை பிடித்து லண்டனுக்கு போவதை விட சென்னையிலிருந்து இண்டிகோ விமானத்தை பிடித்து கோயம்புத்தூருக்கு மதுரைக்கு வரணும் தொழிலதிபர்களை சமுதாயம் நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் லண்டனிலே பொருளாதாரம் இல்லைங்க 1% 1% அதை விட இந்திய நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் பெருசு நம்ம 4.1 trillion இதெல்லாம் எப்ப லண்டனுக்கு போனாலே இந்தியா 1 trillion இருந்துச்சு 2010 2008 அப்ப லண்டன் 3 trillion இருந்துச்சு அப்ப லண்டனை கோட் சுட்டு போடுறோம் விழுக்கா இருக்கும் ஏன்னா நான் வந்து ஒரு ஏழை நாட்டில இருந்து வர்றேன் நீங்க பணக்கார நாடு எனக்கு ஒரு 100 ரூபாய் கொடுத்தீங்கன்னா நாங்க குழச்சிக்குவோம்னு போயிருந்த காலம் இந்த நாடு 4.1 trillion இருக்கிற நாடு லண்டன் 3.4 trillion இருக்கிற நாடு அந்த நாட்டுக்கிட்ட போய் இவங்க ஒரு பெரிய கூட்டத்தை கூட்டிட்டு போயிருக்கு அதுல இவரை பார்த்தாரா அவரை பார்த்தாரா அவங்க எட்டி பார்த்தாங்களோ அவங்க உள்ள பணம்
24: அந்த ஷூட்டிங் மட்டும்தான் நடக்காம இருக்கு
0: முதலமைச்சர் வாயை திறக்கிறதே கிடையாது. வாயை திறந்தாருன்னா வெறும் பஞ்சு டயலாக் தான், அது எங்களை பார்த்து பேசுறது கிடையாது. அது கேமரா எங்கே இருக்குன்னு பார்த்து கரெக்டாக பார்த்து ஆங்கிள்லாம் பார்த்து சபாநாயகர்கிட்ட அனுமதி வாங்கி டேக் போகலாமான்னு கேட்டுட்டு சபாநாயகர் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் முதலமைச்சர் அவர்கள் தன்னுடைய பஞ்சு டயலாக்கை பேசுகிறார். எதை கேட்டாலும் முதல்ல இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்கள், முதலமைச்சர் உள்ளிட்ட ஆட்சியாளர்கள் அமைச்சர்கள்லாம் அவங்க ஆட்சிக்கு வந்துட்டோம் அப்படிங்கிறத அவங்களே இன்னும் நம்பலை. எந்த கேள்வி கேட்டாலும் நம்ம மேலே பழி போடுறது, திமுக ஆட்சியில் இது நடந்துச்சு, திமுக ஆட்சியில் இது நடந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம மேலே பழிய போடுற வேலையை மட்டும்தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சரும் சரி அமைச்சர்களும் சரி தொடர்ந்து அதை செஞ்சிட்ருக்கிறாங்க. அதனால தான் இன்றைக்கி ஒவ்வொரு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாக பார்த்து பார்த்து, அதுவும் அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எல்லாம் விலைக்கு வாங்குகிற வேலையில் இன்றைக்கி இந்த அரசு இறங்கியிருக்கு. இப்படி விலைக்கு வாங்கின காரணத்தினால தான் உங்களுக்கு தெரியும், ரெண்டு சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல், மதுராந்தகம் தாராபுரத்தில் இடைத்தேர்தல் நடக்க இருக்கு. இந்த ரீல்ஸ் கும்பலுக்கு ஓட்டு போட்ட கொஞ்ச நஞ்ச மக்களும் ஏண்டா இவங்களுக்கு ஓட்டு போட்டோன்னு இப்போ கவலையில் இறங்கியிருக்கிறாங்க. இந்த ஆட்சியாளர்கள் அடிக்கின்ற இந்த கூத்தையெல்லாம் செய்கின்ற இந்த அட்டு ஒழுங்கு எல்லாம் மக்களுக்கு நாம் தொடர்ந்து அம்பலப்படுத்த வேண்டும். அதற்கு சரியான ஒரு தண்டனையை வருகின்ற இடைத்தேர்தல் மூலமாக நாம் இந்த ஆட்சியாளர்களுக்கு அதை நாம் தெரியப்படுத்த வேண்டும். ஆளுங்கட்சி எதிர்க்கட்சி எந்த
3: And with that, it's time for us to slip away a quick commercial break. Don't go anywhere. After the break, we'll tell you about why the Russian oil flow is under strain.
9: By noon, the world has changed. The headlines tell you what happened.

0: The Russian oil industry is under immense pressure. Refineries across Russia have been hit over 70 times, with output running at two-decade low. The oil outputs are down by 30%, leading to a massive curb on fuel exports. Meanwhile, Putin has vowed revenge. Moscow says these barbaric strikes will be avenged, as it is a violation of the ongoing peace process. NATO and Europe are also keeping a hawkeye on Ukrainian skies. The European intelligence agencies are sounding alarm over possible Russian test of NATO. According to reports, Moscow might launch barrages of missiles and drones along Russia's border with NATO. Europe has also pledged to provide over $3 billion towards Ukraine's defense. Deal to procure more Patriots missiles for Kyiv is also underway with NATO, raising over $10 billion fund for Ukraine. Previously, Zelensky demanded 300 Patriots from NATO before Russia begins its winter assault. NATO chief Mark Rutte urged allies to commit more for Ukraine's defense. So as the battlefield and the diplomatic fronts intensify, threats of immediate Russian escalation looms. Any further escalation will have a major economic pressure on both nations. All this unfolds just ahead of the crucial UNGA meeting at New York. Bureau Report, NDTV World.
1: The most consequential United States-China meeting of the year is now just days away. Chinese President Xi Jinping arrives in Washington on September of 23rd for a three-day state visit, his first White House visit in more than a decade. Donald Trump will host Xi Jinping for a state arrival ceremony on September 24, followed by talks and a state dinner. But behind the ceremonial welcome lies a long list of difficult issues: trade, Taiwan, critical minerals, artificial intelligence, Iran, and others as well. And this time, both leaders have very different priorities. We leave you with this report.
0: 479 US military personnel, a full military honor cordon, and a flypast featuring a B-2 Spirit and four F-22 Raptors. This is the welcome Donald Trump is preparing for Chinese President Xi Jinping at the White House on September 24. She arrives in Washington on Wednesday, where Trump will personally receive him at the Joint Base Andrews. The next morning, the two leaders will meet against a backdrop of extraordinary ceremony. But behind the pageantry lies a far more complicated relationship. Four issues that could define the summit between the world's two biggest powers. Xi's visit will be his first to the White House in more than a decade. After the formal arrival ceremony, Trump and Xi will hold talks, with a possible extension of the existing US-China trade truce among the key issues on the table. Washington wants greater Chinese purchases of American goods, action on fentanyl precursor chemicals, and progress on rare earth supplies. Beijing, meanwhile, is seeking relief from US tariffs and technology restrictions, while Taiwan remains one of the most sensitive issues between the two countries. Xi will also arrive with a major Chinese business delegation, with executives from companies including BYD, CATL, and Xiaomi potentially accompanying him. And the symbolism doesn't stop at the White House. Melania Trump and Peng Liuan are set to visit the Smithsonian National Museum of Asian Art before the leaders return for a state dinner. But beneath the ceremonial welcome is a difficult question. Can Trump and Xi stabilize a relationship defined by trade wars, technology restrictions, and strategic rivalry, without either side giving up on its core interests? September 24th could provide some answers. Xi comes to Washington as China's exports continue to surge. Reuters reports China's global trade surplus is on track to cross $1 trillion for a second consecutive year. The immediate economic question is whether Trump and Xi can extend the trade truce agreed last year, currently due to expire in November. Beijing is seeking further relief from US technology restrictions, while Washington wants greater Chinese access for US goods and increased supplies of rare earths and critical minerals. Then there is Taiwan, perhaps the most sensitive issue. Xi has previously pressed Trump over US arms sales to Taiwan, Reuters reports Beijing may seek a stronger US formulation opposing Taiwanese independence, while Washington's long-standing position has been that it does not support Taiwan independence. Any change here would have implications far beyond the summit. Artificial intelligence will also be on the table, alongside technology controls and economic security. For Trump, the challenge is to extract economic gains without giving Beijing concessions on issues Washington considers strategic. For Xi, the priority is keeping the relationship stable while resisting pressure on trade, technology, and Taiwan. Bureau Report, NDTV.
2: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
3: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
4: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.
5: Launch control, 0 to 100.
6: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
7: This car makes no sense, yet it makes every sense.
8: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
9: Your friend said, yeah, Lily. We said, maybe not.
10: Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
11: A generation with questions.
12: The starring and the whole glamorous side of it.
13: As I said, like, I can't empathize with it.
1: Hello and welcome. You're watching NDTV with me, Tanisha Avasthi. Before we get to the big stories, here's a quick check of the headlines. A 20-minute ordeal from Bihar went unreported until and unless a viral video surfaced online. The police say that 11 suspects have been identified and 3 have been arrested after footage showed 2 Class 10 students being allegedly harassed in Jamui in Bihar. The FIR was registered under the POXO Act and other criminal provisions after the video triggered police action. And while the Bihar horror has shocked the nation, the Bihar minister has called it a chutput incident or a sporadic trivial incident. The remark has now sparked a row with the opposition hitting back at a Jungle Raj jibe. IIT Bombay is facing continued student protest after the death of suicide of a second-year BTech student, Sahil Wakore. The IIT Bombay Faculty Forum, representing around 750 faculty members, has backed the professor while the family alleges foul play and caste-based discrimination. Five-star restaurant got one-star hygiene. Baby cockroach crawling across cardiologist dinner table at JW Marriott Mumbai's Romano restaurant has now triggered a food hygiene row. The doctor had later posted the incident online and had tagged the Maharashtra FDA Commissioner Tukaram Munde. Ukrainian President Volodymyr Zelensky says he and the United States President Donald Trump have agreed to meet in New York with peace as the number one priority. Zelensky says that talks could include de-escalation as well as the key security issues. Ladies and gentlemen, IIT Bombay student Sahil's death has triggered protest and a wider campus row over accountability. Professor Dhola has been suspended from his position as a dean while he will still continue to be a faculty member at the IIT Bombay. And around 750 faculty members have expressed solidarity with Professor Dhola and marched on the campus with him in support of him. The faculty protest comes amid continuing student demonstrations over the case. The victim here And their aunt has alleged that he faced caste-based discrimination and said that the family wants complete truth to emerge. She has demanded all the CCTV footage, arguing that the case should not be limited to one professor, and that she alleged that there will be several people who may be involved in the case.
14: उस शाम को हमें सिर्फ कॉल आया प्रोफेसर का
15: जी
14: अचानक से कॉल आया सर रात 8 बजे की साहिल ने सुसाइड किया है ऐसा करके कॉल आया इतने दिन होने के बाद उस प्रोफेसर ने माफी मांगी और प्रोफेसर बता रहे कि साहिल ने कुछ गलती नहीं की फिर भी साहिल के साथ ऐसा क्यों हो गया सर मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि मेरे साहिल को न्याय मिलना चाहिए अगर उसकी कुछ गलती नहीं थी फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों हो गया आज तक की ये पहली घटना नहीं है सर और जो भी घटनाएं हुई है उस घटना के बारे में आज तक कोई इंक्वायरी नहीं बैठी गई कुछ ही हुआ नहीं लेकिन हमने जब ये बोला तो हमें हम पर भी वो प्रेशर डाल रहे है
16: साहिल ने माँ बाप को बोला था कि मम्मी यहाँ पे थोड़ा बच्चों पर अन्याय करते हैं जातिवाद करते हैं आज वो कॉलेज में अगर साहिल के आज भी फेवर में न्याय नहीं मिल रहा होगा तो आज भी साहिल पर अन्याय ही हो रहा हमारा पूरा भरोसा है कि ये चौकशी सीबीआई करे
1: Meanwhile, my colleague Sujata Devedi spoke to Sahil's wingmate in IIT Bombay. Let's listen into what he had to say.
17: कि विंगमेट थे आप लोग दूसरे को जानते थे एग्जाम में कॉपी किया गया इसको लेकर आपको उसने क्या बताया
18: उसने किसी से भी कुछ बात नहीं की यही बात है सब स्पेक्यूलेशन है कॉपी करने के बाद जब उसको बाहर लेके गए उसके बाद उसने किसी से बात नहीं की तो किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है आई डोंट थिंक जितना मैंने फर्स्ट ईयर में उसे देखा कि हमने से किसी में या उसके दोस्तों में से किसी ने उसके कास्ट पर कभी भी रिमार्क किया हो IIT बॉम्बे में ऐसा कल्चर है ही नहीं कि कोई किसी के कास्ट पर रिमार्क करता है क्योंकि हम सारे जेईई देव स्टूडेंट हमें आइडिया है कि ये सब नहीं करना होता है हम एजुकेटेड हैं एंड मुझे नहीं पता ये एंगल कहाँ से आया डीन ने कि ये सस्पेंशन था हमारा फर्स्ट पॉइंट उसका भी रेजिग्नेशन नहीं था क्योंकि जब तक वो गिल्टी प्रूफ नहीं हो जाते हम उनका रेजिग्नेशन नहीं मांगते
19: Accountability does not necessarily mean an online apology, first of all, because everybody apologizes nowadays. It's a very, you know, trendy thing, right? We need resignations. That's what we need. We need resignation of all the people involved because, like I said, this is not one isolated event. There have been four suicides in the past 1 year. This is the second suicide in the past 2 months. जिसमें से चार suicides में से तीन suicides जो थे वो दलित background के बच्चों के थे. So, like I said, this is not an isolated event. Right, so we need immediate resignation because accountability हमें वैसे ही मिलेगी. We need resignation. We need a student independent student body यहाँ पर जो student के behalf पर बोले, you know, to give students some power as well. We need mental health conferences and all of that. We also need compensation for the family. जो उनको भी काफ़ी पुलिस ने परेशान कर रखा है जब से वो यहाँ पर आए हैं उनका एक अकेला बेटा था वन ओनली चाइल्ड राइट तो वी नीड कॉम्पेंसेशन फॉर द फैमिली
1: Let's move on to another shocking case that has come to light, and this is from the state of Bihar, where there have been three people who have been arrested for molesting and assaulting a couple in Bihar's Jamui. The two youngsters that you see on your screens were harassed by a crowd in what the story was first published at Moral Policing, which was not to say the least. They were stopped while traveling on a scooter, following which the harassment took place. The shocking video showed men touching the girl inappropriately, and she was a minor, and even carrying her away from some distance on road before being stopped by her friend. The youngsters were seen pleading with folded hands in an effort to be left alone, and while they were doing that, the only thing that they witnessed next is being dragged back to the same place. And while all of this is happening, as usual, the politics has erupted between the government and the opposition of the state. The JDU leader, Umesh Kushwaha, has tried to downplay the incident and called it a trivial one, and that keeps happening in the state of Bihar. Rahul Gandhi, meanwhile, has slammed the government over the incident and has demanded action against mob under the POXO Act. Meanwhile, another Bihar minister, Sunil Kumar, has condemned the incident. But while all of this is happening, the big questions remain that why is it that the action came after the video went viral?
20: तीन नाबालिग बच्चों को निरुद्ध की गई हैं और इसमें दो और की इन्वॉल्वमेंट भी पता चला और दो और हो सकते हैं तो हम लोग का अभी क्विक एक्शन हुआ था जमुई थाना कांड संख्या 428 भी सेक्शन 74-75 BNSS और 8 और 12 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज हुई हैं साथ ही साथ जितना वीडियो वायरल हुआ है हम लोग टेक डाउन नोटिसेस जारी किया जिसमें 13 फेसबुक और 12 इंस्टाग्राम का अकाउंट्स और 7 ट्विटर के अकाउंट्स हम लोग के द्वारा टेक डाउन कर लिए
1: एंड व्हाइल दिस इंसिडेंट हैज gotten into every Indian and every Indian is expressing outrage. There are political parties that are trying to take away credit and blame the other party. But one thing is for sure, that be it the opposition or the government, nobody for till date has been able to ensure the safety of a woman. But here are some political reactions that came in from the state of Bihar as far as this incident is concerned.
21: Crime free puri duniya nahi hai. छिटपुट घटना होती रहती है और छिटपुट घटनाओं पर सरकार की नज़र है और इस तरह के कृत्य करने वाले बिहार में बचने वाले नहीं है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई पहले भी हुई है ऐसी घटना करने वाले किसी भी हालत में नहीं बचेंगे
22: छिटपुट घटना घटती है तो हम लोग उस पर सरकार संवेदनशील हैं लेकिन वह समय देखिए 2005 की पहले का कैसा बिहार था कोई घर से बाहर निकलते थे किस तरह का बिहार था क्या हालात था लोग किसी तरह अपनी जिंदगी को काट रहे थे ऐसा बिहार था ना आज तो लोग कम से कम ये कोई घटना घटी है तो उस पर प्रशासन कार्रवाई कर रही है एक्शन ले रही है प्रशासन जल्द से जल्द जो घटना का जो अंजाम दिया है चाहे 12 से 12 कोई कितना बड़ा कोई अपराधी क्यों नहीं हो वो जल्द ही पुलिस के कब्जे में आएंगे
23: घटना की हम तीव्र निंदा करते हैं सरकार की ओर से और निश्चित रूप से वहाँ के पुलिस पदाधिकारी प्रशासन के पदाधिकारी इसमें एक उचित और कठोर कदम उठाएंगे मैं इस जैसे आपसे मीटिंग ख़त्म हो जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ के मैं पुलिस अधीक्षक से भी बात करूँगा जम्मू के और सुनिश्चित उन्हें कहेंगे कि सुनिश्चित करें कि कोई भी इसके लिए जिम्मेवार हो चाहे जो भी व्यक्ति हो उसको चिन्हित करके उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करें
1: Well, the lawlessness is not just seen in the state of Bihar, it's seen in the state of Maharashtra as well. And this time, the ones responsible are the political parties themselves. A social media reel criticizing MNS chief Raj Thackeray has triggered a shocking act of public humiliation of an influencer in Pune. The MNS workers allegedly grabbed the Marathi content creator Mahesh Mote, blackened his face and forced him to apologize. And in a video that's now going viral of the incident, the influencer is seen with a slipper placed on his head as he is made to perform sit-ups. He is then forced to bow down before a photograph of Raj Thackeray and apologize. The influencer later posted another video breaking down as he said that his comments were unintentional. He apologized to Raj Thackeray and MNS workers with folded hands and appealed to them to not harass him further. The MNS has described the action as its style of dealing with such incidents in a brazen act to justify what they did.
24: Kerala ke liye aur team mitrano khub chuki je video banavle maafi magitli parat ankin chuk zali hanla shubham dadala bollo mi khar sangto mitrano maharashtra thavun kadhi tumhi raj sahib asu dya kiwa aapla manse paksh asu dya kadhi yancha vishayi kay bolu naka ani मित्रांनो ह्यांनी कुठली मला गुंडगर्दी दादागिरी नाही केली उलट माझ्यासारख्या वेड्याला माणसानं असं उठायचं काय बी बोलायचं खरंच चूक झाली मित्रांनो
25: काल पुण्यात आल्याच्या नंतर आज तो कात्रज मध्ये येणार आहे अशी जवळपास माहिती होती आज कात्रजच्या उद्यानामध्ये तो जसा आला आल्याच्या नंतर तातडीने आम्ही सर्व महाराष्ट्र सैनिक एकत्र आलो एकत्र आल्याच्या नंतर आम्ही त्याला ऑफिसला घेऊन गेलो आदरणीय राजसाहेब ठाकरे यांच्या फोटो पुढे त्याला आम्ही झोपवलं त्याला तिथं साहेबांची माफी मागायला सांगितली आणि मनसेच्या स्टाईलने त्याला उत्तर दिलं त्याला चांगली आम्ही आमच्या भाषेत महाप्रसाद दिला त्याला त्याचबरोबर त्याला साहेबांची माफी मागायला सांगितली त्याला काजळाची मिशी काढली त्याला त्याच्या चप्पल त्याच्या डोक्यावरती ठेवायला सांगितलं आणि त्याच्या उठाबशा मारायला सांगितल्या
0: पुणे में एक लड़के का मुंह आप काला करते हैं चप्पल सर पर उठक बैठक, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक रील बनाया। क्या ये है एमएनएस की स्टाइल, तालिबानी स्टाइल? जो आप महाराष्ट्र का नेता बनना चाहते हैं तो ये गुंडागर्दी करना बंद कीजिए। जो आपकी आलोचना करते हैं आप उनके प्रति ऐसे प्रस्तुत आते हैं कि गुंडागर्दी ही चलेगा। पुणे पुलिस को एफआईआर दर्ज करना ही चाहिए भारतीय न्याय संहिता के निमित्त, और जो व्यक्ति गुनहगार हैं उनको पकड़ना हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि हुलिगनिज्म हैज नो प्लेस इन पब्लिक सर्विस।
1: Moving on to some other stories that are making headlines down south, Vijay's London visit and TVK's political activity has drawn sharp attacks from the rival parties. K. Annamalai has questioned Vijay's London investment outreach, arguing that the Tamil Nadu can attract investment by engaging with industrialists within India. Udayanidhi, meanwhile, has accused Vijay and TVK of blaming the DMK despite being in politics, and also alleged that TVK is attempting to bring AIADMK MLAs into its fold.
2: எனக்கு லண்டனை பத்தி நல்லா தெரியும், அங்க எந்த பணமே கிடையாது, ஒரு சதவீதம் வளர்ச்சி, யூகேவுடைய வளர்ச்சியே ஒரு சதவீதம். அவங்ககிட்ட போய் தமிழ்நாட்டில் பணம் கொடுங்கன்னு கேட்டா அவங்க என்ன பணம் கொடுக்க போறாங்க? அவங்க ஊரில் போறதே அவங்க பணம். இந்தியாவிலிருந்து போய் டாடா, இந்தியாவிலிருந்து போகக்கூடிய ஜாகுவார், லேண்ட் ரோவர், மஹிந்திரா, இவங்க எல்லாம் தான் யூகேல அதிகப்படியான பணத்தை நாம இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். முதலமைச்சர் என்ன பண்ணணும்னா, சென்னையிலிருந்து எமிரேட்ஸ் விமானத்தை பிடித்து லண்டனுக்கு போவதை விட சென்னையிலிருந்து இண்டிகோ விமானத்தை பிடித்து கோயம்புத்தூருக்கும் மதுரைக்கு வரணும். தொழிலதிபர்களை உட்கார வைக்கணும். தமிழ் சமுதாயம் நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும், புரிந்து கொள்ள வேண்டும். லண்டனிலேயே பொருளாதாரம் இல்லைங்க, ஒரு சதவீதம். அதை விட இந்திய நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் பெருசு, நம்ம 4.1 trillion. இதெல்லாம் எப்ப லண்டனுக்கு போனாலே இந்தியா 1 trillion இருந்துச்சு 2010ல், 2008ல் அப்ப லண்டன் 3 trillion இருந்துச்சு. அப்ப லண்டன் கோர்ட் சுட்டு போட்டுக்கணும், விடுக்காது. ஏன்னா நான் வந்து ஒரு ஏழை நாட்டில இருந்து வர்றேன், நீங்க பணக்கார நாடு, எனக்கு ஒரு 100 ரூபாய் கொடுத்தீங்கன்னா நாங்க பொழைச்சுக்கோன்னு போயிட்டு இருந்த காலம். இந்த நாடு 4.1 trillion இருக்கிற நாடு, லண்டன் 3.4 trillion இருக்கிற நாடு. அந்த நாட்டுக்கிட்ட போய் இவங்க ஒரு பெரிய கூட்டத்தை கூட்டிட்டு போயிட்டு, அதுல இவரை பார்த்தாரா, அவரை பார்த்தாரா, அவங்க எட்டி பார்த்தாங்களா, அவங்க உள்ள போனாங்க?
3: அந்த ஷூட்டிங் மட்டும்தான் நடக்காம இருக்கு. முதலமைச்சர் வாயை திறக்கிறதே கிடையாது. வாயை திறந்தாருன்னா வெறும் பஞ்ச் டயலாக் தான், அது எங்களை பார்த்து பேசுறது கிடையாது. கேமரா எங்க இருக்குன்னு பார்த்து, கரெக்டாக பார்த்து, ஆங்கிள்லாம் பார்த்து, சபாநாயகர்கிட்ட அனுமதி வாங்கி டேக் போலாமான்னு கேட்டுட்டு, சபாநாயகர் ஆக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் முதலமைச்சர் அவர்கள் தன்னுடைய பஞ்ச் டயலாக்கை பேசுகிறார். எதை கேட்டாலும் முதல்ல இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்கள், முதலமைச்சர் உள்ளிட்ட ஆட்சியாளர்கள், அமைச்சர்கள்லாம் அவங்க ஆட்சிக்கு வந்துட்டோம் அப்படிங்கிறத அவங்களே இன்னும் நம்பலை. எந்த கேள்வி கேட்டாலும் நம்ம மேலே பழி போடுறது, திமுக ஆட்சியில் இது நடந்துச்சு, திமுக ஆட்சியில் இது நடந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம மேலே பழிய போடுற வேலையை மட்டும்தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சரும் சரி அமைச்சர்களும் சரி தொடர்ந்து அதை செஞ்சிட்ருக்கிறாங்க. அதனால தான் இன்றைக்கி ஒவ்வொரு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாக பார்த்து பார்த்து, அதுவும் அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களெல்லாம் விலைக்கு வாங்குகிற வேலையில் இன்றைக்கி இந்த அரசு இறங்கியிருக்கு. இப்படி விலைக்கு வாங்கின காரணத்தினால தான் உங்களுக்கு தெரியும், 2 சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல், மதுராந்தகம் தாராபுரத்தில் இடைத்தேர்தல் நடக்க இருக்கு. இந்த ரீல்ஸ் கும்பலுக்கு ஓட்டு போட்ட கொஞ்ச நஞ்ச மக்களும் ஏண்டா இவங்களுக்கு ஓட்டு போட்டோன்னு இப்போ கவலையில் இறங்கியிருக்கிறாங்க. இந்த ஆட்சியாளர்கள் அடிக்கின்ற இந்த கூத்தையெல்லாம், செய்கின்ற இந்த அட்டு ஒழுங்கை எல்லாம் மக்களுக்கு நாம் தொடர்ந்து அம்பலப்படுத்த வேண்டும். அதற்கு சரியான ஒரு தண்டனையை வருகின்ற இடைத்தேர்தல் மூலமாக நாம் இந்த ஆட்சியாளர்களுக்கு அதை நம்ம தெரியப்படுத்த வேண்டும். ஆளுங்கட்சி எதிர்க்கட்சி எந்த.
1: And with that, it's time for us to slip away. Quick commercial break. Don't go anywhere. After the break, we'll tell you about why the Russian oil flow is under strain.